0: लोग कहते हैं कि पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा। मैं कहता हूं कि ईश्वर पर विश्वास रखो, बुरा वक्त कभी नहीं आएगा। ये कहना है अज्ञात का। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8 FM पर।
1: अमृत बाणी हर हर तेरी, तेरे मिठे मिठी बाणी, तेरी मिठी मिठे बोल दाता,

सुन सुन के मैनु परम गत होएगी, मेरी ये जन्म सफल होएगा। एक दिन आना है और जब कबाड़ खोल देना, मेरी ये तीसरी अख खोलो ये भी खुल जानी है, ये सहसरा चक्कर खोलो ये भी खुल जाना, ये सुषमनी नाड़ी खोलो ये भी खुल जानी है, ये भोले पाच। बड़ी सोहनी कबीर साहब ने बात कही है अपनी बाणी च, वो कहते ने रब नू ढूंढिया नहीं लभ सकते, तुसी ओदी कृपा हुंदी है वो मिलता है, वो किदां कहो कबीर भगत कर पाया भगती करनी पैंदी, भोले पाए मिले रघुराया, भोले पा च रहना पैंदा, भोले भाव च चलाकियां चतराइयां नहीं, भोलिया पा महाराज जी तुही मैनू मिलना है, मैनू तो रस्ता ही नहीं पता मैं कित्थे जावां, मैनू तो टिकाणा ही नहीं पता मैं कित्थे जावां कित्थे मिलां।

आवाज मारो मारा इन आ जाओ प्रभु, अही उड़ीक रहे हैं, तड़प रहे हैं, तेरी यादा आ रही ने, राती सोने हैं, तो ये देखो सारे आप बताओ मुझे, आप सब लोग इतना घूमते हो, इतना खाते पीते हो, सब जगह जाते हो, कभी कभी किसी खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट, कभी कहीं जाते हो, कभी किसी शहर जाते हो, कभी घूमते हो फिरते हो, जहाजों की सैर करते हो, नए नए कपड़े खरीदते हो, शादियों ब्याहों में जाते हो, फिर भी आपका मन उदास है। पूछो क्यों मन उदास है आपका? मन तो खुश होना चाहिए। क्यों उदास है मन? पति आपके साथ है, बच्चे आपके साथ हैं, फिर भी आपका मन उदास है। क्यों है उदास मन? क्यों अंदर रोने वाला मन है, रोने जैसा मन है? क्यों? ओ बिछड़िया होया, बहुत जन्म बिछड़े थे मां तो नहीं, हे प्रभु बिछड़े हो तो

करने वास्ते दाता तो ही मैंने अपने चरणों च बुला लिया, मुझे मिलने के लिए मेरी औकात क्या है मैं तुमसे मिल सकूं प्रभु, ये तेरी कृपा है वड्याई, कौन आनक सब तेरी वड्याई, मैनू कौन जानता, ये तू ही मैनू बुलाया, संगत बख्शिश की थी। कहिंदे ने संगत विच रब मिलदा, जिहड़े बंदे दी रोज संगत होण लग पैंदी है उहनू बार बार संगत मिलदी है, वह इन्ना वड्डा भागी जीव बन जांदा है।

एक दिन वो परमात्मा नूं जाके मिल लैंदा। इदां ही रब नूं सारी दुनिया मिली है। वड्डे वड्डे पैगंबर नबी अवतार पहला उन्होंने लोगों ने संगतां कीतियां, फिर एक दिन परमात्मा दे विच विचर गए। पुछो तो सही इतिहास से खोल के वेखो, कोई होर तरीका ही नहीं परमात्मा नूं मिलन दा।

कोई नहीं बिरथा जा सकता, मालो माल करके भेजना मेरे महाराज ने। तुम जो घर जाना तो घर भर जाने रहमतां नाल, क्यों तुम मेरे गुरु की शरण में बैठे हो, मेरे गुरु ने तो दृष्टि पा के मालो माल कर देना है।

सुनन नाल चार पौड़ियां गुरु नानक देव जी सच्चे पातशाह ने सुनन ते लिखिया ने जपजी साहब जी ने। क्यों? एक पौड़ी कहती है सुनिए सत संतोख ज्ञान। सुनन नाल किनू सुनन नाल? उस पार ब्रह्म परमात्मा ने उरे बारे गल करन नाल, रब परमात्मा हरी वाहिगुरु ए उस मालक दी गल करन नाल सुनिए सत संतोख ज्ञान। संतोख आवेगा, ज्ञान आवेगा, सुख आवेगा। सुनिए 68 का इशनान, 68 तीर्थ दा फल मिलेगा। सुनन नाल सुनिए पढ़ पढ़ पावे मान। जिहड़े लोग पढ़ नहीं सकते, अनपढ़ नहीं पढ़ सकते, उन्होंने पढ़न वाला मान मिलेगा। नहीं ने पढ़ते कई बार वो भी मान मिलेगा सुनन नाल। पढ़न तो भी चंगा सुनना है। सुनिए लागे सहज ध्यान, ध्यान लगन लग पे। अख बंद करोगे रब नाल जुड़ जाओगे सुनन नाल। हुण सुन ही रहे हो तुसी, जुड़े कि नहीं जुड़े? ध्यान लगन लग पे क्योंकि रब दीआं गल्लां हो रहीआं। जिथे रब दीआं गल्लां होणा ते रब आ जांदा, फिर अपने नाल जोड़ लैंदा। सुनिए लागे सहज ध्यान, नानक भगता सदा विगास। सुनिए दुख पाप का नास। सुनन नाल दुख मुकदे ने, पाप भी मुकदे ने। किन्नू सुनना? किन्नू सुनना? उस पार ब्रह्म बारे जिथे ओदी गल हो रही होवे, जिथे रब की कथा हो रही होवे, जिथे रब की गलबात हो रही होवे, उथे सुनना। मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे, मेरे हर प्रीतम की, मेरे हरी की कोई गलत करे।

वाले हैं जो तू मेरे नाल है महाराज जी ता क्या मुछंदा मुछंदे का मतलब है मेनू मोहताज मैं किसे दा क्यों बना मैं किसे कोलों क्यों मंगा जो तू मेरे कोल है मैं तेरे कोलों ही मंगना मैं तेरे अगे हाथ अड्डने ने महाराज तू ही दो मेनू है ना मोहताज नहीं मैं बनना दुनिया का इसे शब्द का बड़ा सुंदर जिक्र आता है जो महाराज नाल हुंदे ने फिर की हुंदा है।

ये जड़े शब्द ने लक्ष्मी तोट ना आवई खाए खर्च रहंदा, जिन्ना मर्जी खर्ची जाओगे जो गुरु नाल आ गया रब नाल आ गया तुहानू पैसे की कमी नहीं आनी। याद रखना ये, वेख लो फरमान है महाराज का, हुक्म है। लक्ष्मी तोट ना आवई, लक्ष्मी मतलब पैसा, लक्ष्मी दी तोट नहीं आती किन्ना नू, जिहड़े मनुख अपने गुरु दे नाल प्रभु दे चरणा च बैठे हुए। खाए खर्च रहंदा, खर्ची जांदे ने खाई जांदे ने तां वी कमी नहीं आउंदी।

ये वैरी मित्र सब कीते हैं। वैरी महाराज जी जो नाल आ जान किसे नाल भी दुश्मनी ना रखना, सब नू अपना मित्र बना लो। सारे मेरे मित्र ने, किसे ना मेरा वैर विरोध नहीं, कोई भी लड़ाई नहीं किसी ना। जे लड़ाइया हैगिया भी ने तां भी खत्म कर लो कि हुण महाराज जी दे नाल आ गए हैं, महाराज दे चरणी आ गए हैं। तो जिहड़े महाराज नू प्यारे ने तुहाडे सारे महाराज, तुहाडे ते सारी दुनिया प्यारी है, तो साढ़े भी प्यारे ने, है ना। वे कोई वैर विरोध नहीं रखना। महाराज कहिंदे वैरी मित्र सब कीते आ, ना ही मंगे मंदा। मैं मंदा भी नहीं मंगना, ये नहीं वैर नहीं तो छड़ना भी नहीं कि तरक्की क्यों कर गया, ये मेरा भरा तरक्की क्यों, मेरी भैन तरक्की क्यों कर गया, मेरा ये क्यों तरक्की कर गया, वह भाई क्यों तरक्की कर गया, वह बंदा क्यों तरक्की, मेरा पड़ोसी क्यों तरक्की, सड़ना भी नहीं। ये चीज़ा याद रखने वाली ने, जो रब नाल जा तू मेरे वल है ता क्या मूँ छंद। महाराज जो तुम मेरे नाल हो फिर मैनू की करना है, वह दस रहे ने महाराज।

ये सिमरन ही काम आना। ये जो हुण तुसीं सिमरन कर रहे हो ना सारे कट्ठे होके, जो तुहाडे औखी घड़ी आनी है, कोई मुसीबत आनी है, कोई दुख माड़े समा आना, माड़ा दिन आने ने, यह सिमरन काम आना। उदों तुहानूं इन्हें जान बचाउणी है सिमरन ने। सत

कोई ना पूछे जा हर बख्शंदा, जो हरी ने बख्श दिता, बख्शंदा मतलब हरी हरी कर लिया, गुरु दे कोल बैठ के की कीता, वाहेगुरु वाहेगुरु की है, हरी हरी करना, रब रब करना, वाहेगुरु वाहेगुरु करना, ईश्वर ईश्वर। जदों मारे कहते लेखा कोई ना पूछे, लेख पलट दिते मारे ने, लेख बदल दिते सारे मारे ने, नहीं लिखिया तो लिख के विखा दे, मैं रब तेनू ता मनना, मेरा मेरा विछड़िया गुरु मला दे, मैं रब तेनू ता मनना।

प्रभु भगवान दो जिक्र आए। इस पौड़ी के अंदर पंचम पातशाही का शब्द है। महाराज जी कहते ने आनंद पया सुख पाया। कदों आनंद आया, कदों सुख मिलिया, जां महाराज कहते मिल गुरु गोबिंदा, मैनू गुरु मिल गया तो मेरा भगवान मेरा प्रभु मिल गया, मेरा वाहिगुरु मिल गया। देखो उदो सुख मिलता है, उदो आनंद मिलता, आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। जो गुरु मिल जाता है आनंद मिल जाता है।

सब काज सवारी है। हुण इस पंक्ति दे महाराज कहिंदे ने सब काज सवर जांदे ने, जां तुद पावंदा जो तैनूं पा गया, मैं तेरा बन जा तैनूं मैं पा गया, सारे काज तू सवार के रख देने, सब कुछ ठीक कर देने। ते तुसी महाराज दे क्यों नहीं तुसी लड़न लगदे? कहो महाराज जी अह की लेना इधर उधर, जां तू मेरे वल है, तू मेरे वल है, मैनू किसी की फिक्र नहीं।

ईश्वर से कुछ मांगने पर न मिले तो उसे नाराज न होना, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वो देता है जो आपके लिए हमेशा अच्छा है। आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर शारदा सवेरा। मैं हूं गगन आपके साथ।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सुना शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: राम राम दोस्त राम सत श्री अकाल आदाब। मैं हूँ गगन आपके साथ, वो गगन जो हमेशा गगन को छूने की बातें किया करता है, दिलों को जीतने की मैं कोशिश करता हूँ। ये खास प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, हौसले की डगर। जाहिर सी बात है कि जब कोई डगर है तो निश्चित तौर पर वो डगर खुशियों के साथ भरी हुई है, कांटों के साथ भरी हुई है। जब कोई इंसान अपनी मंजिल पर पहुंचता है तो बहुत बड़े चैलेंजेस को फेस कर वो अपनी मंजिल पर पहुंच रहा होता है। मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ इस प्रोग्राम में बात करने के लिए मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ रही है जो कि टैरो कार्ड रीडर है, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप ऑथर भी हैं और आध्यात्म के क्षेत्र में बहुत अच्छी मालूमात है। आप हैं मेरे साथ शिविका शर्मा। तो शिविका शर्मा, सुनो शारदा 90.8 एफएम पर आपका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद।
1: थैंक यू सो मच।
0: कैसा फील हो रहा है?
1: बहुत अच्छा, बहुत अभी से इंट्यूशंस आ रहे हैं।
0: जी जी जी।
1: तो लेट्स सी कि आगे आप क्या चीजें मुझे बताते हैं, क्या चीजें करते हैं डिस्कस।
0: चलिए चलिए डिस्कस करते हैं, यानी कि शुरुआत करते हैं। जब शुरुआत का दौर शुरू हो ही चुका है तो यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक बनता है, यानी कि जो बातों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, लेकिन म्यूजिक एक ऐसा जरिया कि जिसकी वजह से हमारे चेहरे पर रौनक आ जाती है, खुशियां आ जाती है। और निश्चित तौर पर आपको म्यूजिक का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में यानी कि भागती दौड़ती जिंदगी में तनाव बहुत ज्यादा है। और जब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जहां आप सोचते हैं, समझते हैं और सुनते हैं, तो उसके बाद आप एनर्जी के साथ भरपूर आगे कदम बढ़ा सकते हैं। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड, ऑल यू सो शारदा 90.8 एफएम विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

0: फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया था कि टैरो कार्ड रीडर, मोटिवेशनल स्पीकर, ऑथर आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रही हैं। आप हैं शिविका शर्मा। तो शिविका शर्मा, सबसे पहले स्वागत के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं
1: जी।
0: तो शुरुआत यूं कर सकते हैं कि बता मेरे चेहरे पर क्या क्या लिखा है। तो थोड़ा सा परिचय मैं आपसे आपके बारे में जानना चाहूंगा। मैंने वही परिचय दिया है जो आपने मुझे बताया, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है गगन इसके पीछे भी बहुत कुछ है। सो प्लीज टेल अस अबाउट योरसेल्फ।
1: मैं शिविका शर्मा पेशे से टैरो कार्ड रीडर हूँ। 4 साल से मैं स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड और एक्टिव हूँ। जैसे मुझे ये डिवाइनली गाइडेड हुआ है, तो इसी तरीके से टैरो में आना मेरे लिए किसी मिरेकल से कम नहीं है। और ये एक बहुत बड़ी डिवाइन की ब्लेसिंग मैं मानती हूँ, जिसके लिए सब्र और शुक्र मुझे दोनों है।
0: क्या बात है, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आपके, सब्र और शुक्र। ये लोगों के पास नहीं होता अक्सर,
1: लेकिन स्पिरिचुअलिटी आपको सिखाती है।
0: क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब बहुत। ये जो सिखाती है आध्यात्म की जिंदगी को आप खुशी के साथ जिए, तनाव मुक्त अपने आप को रखें, तो यही चीज मैं समझना चाहता हूँ कि ये और क्या क्या सिखाती है
1: टैरो कार्ड रीडिंग। देखिए, बेसिकली स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज्यादा कोर में जाने वाली चीज है। टैरो में आना मेरे लिए बहुत ज्यादा गाइडेड था, क्योंकि मुझे एक ड्रीम के जरिए एक ऑर्डर आया। जब मैं अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा संघर्ष कर रही थी अपने सपनों को लेकर, तब मुझे एक अचानक से ड्रीम आया कि अभी तक जो किया वो करने की जरूरत नहीं है, अब तुम टैरो करो। तो मेरे केस में ये फंडा बिल्कुल फिट नहीं बैठता है कि पढ़ोगे लिखोगे तो अपने सपने पूरे करोगे, दैट आई वॉज ऑलरेडी डूइंग। लेकिन ये जो है काफी नेक्स्ट लेवल पर चला गया। जैसे ही मैंने फर्स्ट टाइम अपने टैरो कार्ड्स ऑर्डर किए, उनके कहने से मुझे पता नहीं था कि टैरो का टी क्या है, देखिए और आज ये मेरी डेस्टिनी है। ऑर्डर किया, उसके बाद कुछ प्रेडिक्शंस की, तो ये चीजें सरफेस पर आई और बहुत सारी प्रेडिक्शंस जैसे करेक्ट होती चली गई। तो आई फेल्ट समवेयर कि ये मेरी पास्ट लाइफ्स थी जिसकी वजह से लाइफ में कुछ स्ट्रगल्स थे। अभी भी जितने भी सारे लोग अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है समवेयर कि उनके जो कर्माज हैं वो हील नहीं है, जिसकी वजह से ही कई लोग ऐसे होते हैं जिनके आप समझ सकते हैं कि एंसेस्टर्स का कोई कर्स होता है या कुछ ब्लेसिंग्स रुकी हुई है, जो हम बोलते हैं ना ब्लॉकेज आ रहा है, हो नहीं रहा है काम
0: जी।
1: या एक मार्क से रह गया, 4 नंबर से रह गया एग्जाम
0: जी,
1: जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वहां पर जो ब्लॉकेज है उसको हम लोग हील करते हैं। मैं स्पिरिचुअलिटी पर लिखती भी हूँ और जो चैनलिंग मुझे होती है ड्रीम्स के जरिए, जो सबकॉन्शियस माइंड में जो थॉट्स आते हैं वो बहुत नेक्स्ट लेवल के होते हैं और बहुत हायर रिलम की एनर्जीज जो डिवाइनली गाइडेड होती है ना, उनके साथ में कनेक्टेड होते हैं।
0: चलिए इसके बारे में और डिटेल में आपसे जरूर जानेंगे। तो दोस्तों, ये जो चर्चा हो रही है, एक हौसले की डगर कार्यक्रम में बातें हो रही हैं कि ये जो हौसला आपको मिला, किसने आपको प्रेरित किया, क्या क्या चैलेंजेस आए और किस कदर आप आगे बढ़ रही हैं या क्या क्या प्लानिंग है। निश्चित तौर पर अगर आप सीखना चाहते हैं, समाज से सीख सकते हैं, अपने आप से सीख सकते हैं, एक सक्सेस स्टोरी से सीख सकते हैं कि अगर आपका जो सपना है, जो आपका अपना है, उसको साकार करना चाहते हैं तो बस कोशिश करते जाइए। कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार हुआ नहीं करती, लहरों से डरकर नौका कभी पार हुआ नहीं करती। कहते ये भी हैं कि हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर पर आपका हौसला पस्त नहीं होगा, आपका हौसला मस्त होगा, बुलंद होगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑन योर सुरशादा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ।

0: बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शाहदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। हौसले की डगर में आज हम बात कर रहे हैं, शिविका शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो कि पेशे से टैरो कार्ड रीडर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप ऑथर हैं, अच्छी अच्छी किताबें आपकी आई हैं और कुछ आने वाली हैं। तो एक बार फिर से शिविका आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू सो मच।
0: ये जो हौसले की डगर है हमारे कार्यक्रम का नाम है, आपको हौसला कहाँ से मिलता है? मम्मी से, फादर से, समाज से, या किताबों से, या जिस क्षेत्र में आप काम कर रही हैं, तो इसके बारे में प्लीज बताइए।
1: मुझे हौसला अपनी सोल से मिलता है जिसने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए हैं डे वन से। स्पिरिचुअलिटी में अगर कोई भी आ रहा है तो उसकी लाइफ निश्चित तौर पर बहुत ही संघर्षों से भरी होती है। एक संघर्ष होता है कि आप 3D रियलिटी में फेस कर रहे हो कि लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे। एक होता है एनर्जी लेवल पर, जिस पर हम कहते हैं कि पूरा आपकी साइकोलॉजी डिपेंड कर रही है। ड्रीम्स कुछ इस तरीके के होते हैं जो रियलिटी में फिर करेक्ट होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हौसला आता है मुझे खुद से ही। मैं खुद की ही इंस्पिरेशन हूँ। और आपको थोड़ा अजीब लगेगा क्योंकि पेरेंट्स का जो थॉट प्रोसेस रहा है वो इज़ लाइक कि आज के हिसाब से जो सोसाइटी बोल रही है, और मैं बिल्कुल सोसाइटी के रास्ते से बिल्कुल अलग चलती हूँ।
0: मुझे लगा कि आप ये कहने वाले हैं गगन कि मैं उस सोच से वाबस्ता होती हूँ जो आज का समय नहीं, लेकिन आपके पेरेंट्स आपको कह रहे हैं कि आज की सोच के हिसाब से चलो, लेकिन आप उससे अलग चलती हैं। ग्रेट, ये तो बिल्कुल ही कहते हैं ना कि कॉन्ट्रास्ट है, विरोधाभास है।
1: जी, एक्चुअली वो विरोधाभास क्या है कि जैसे जैसे आप स्पिरिचुअलिटी में एक्टिव हो जाते हो ना, और अपनी सोल से जब आपकी एनर्जी अलाइन होती है, आपके अंदर एक आत्मा है, भगवान ने भगवद्गीता में कहा है, उस आत्मा की जब आप कॉलिंग को पहचान जाते हैं तो आपको पता चलता है कि बाहर जो दुनिया में चीजें हो रही हैं वो किस तरीके से हो रही हैं, कहाँ क्या गलती है। पेरेंट्स सोच के चलेंगे कि आगे सब कुछ ठीक चलेगा, ऐसा करो वैसा करो, वहां पर कुछ मैनिपुलेशंस होंगे, कुछ अंदर की चीजें कुछ बाहर की। और एक स्पिरिचुअल वर्कर के लिए आप ये चीज बोल रहे हो, वो बोलेगा मेरी स्पिरिट से तो ये आवाज ही नहीं आ रही है,
0: दिल से आवाज नहीं आ रही है।
1: करेक्ट।
0: तो मैं एक बात को अगर समअप करूं, इसका सारांश निकालूं, तो यही बात निकलकर सामने आती है कि अपने दिल की जरूर सुने, जो आप करना चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं। अक्सर हमने ये देखा है कि लोग पेरेंट्स के प्रेशर में आकर अपनी उस सोच को पीछे छोड़ देते हैं जो बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं। लेकिन आज के समय में हम देख भी रहे हैं कि लोग अपने बच्चों को क्रिकेट ग्राउंड पर लेकर जाते हैं, जिसमें मैं एक पार्ट हूँ, अदरवाइज मेरा समय कुछ और था। लेकिन थैंक गॉड कि जो मैंने चाहा वो फील्ड मुझे भी मिला हुआ है बिकॉज ऑफ माय पेरेंट्स। लेकिन आपकी बात से यही समझ में आता है कि जो आप करना चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं, उसके लिए कोशिश करिए, मेहनत करिए, और वो फिल्म का डायलॉग है कि पूरी कायनात आपके साथ होती है। दोस्तों, इस सोच से हम वाबस्ता हो रहे हैं, यानी कि इस सोच से हम दो चार हो रहे हैं, और ये सोच है शिविका शर्मा की, जो कि एक टैरो कार्ड रीडर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप ऑथर भी हैं। तो वक्त है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, और भी कुछ बातें हैं हौसले की डगर में जानने के लिए, समझने के लिए, और ये हौसला हमें हिम्मत देता है कि हम भी कुछ अच्छा करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं। ये हौसला हमें कहाँ से मिलता है? जब हम चलते हैं तो चैलेंजेस भी आते हैं, इसके बारे में बातें करेंगे। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड, ऑल योर सुर शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ।

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं गगन आपके साथ, और आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो विषय है हौसले की डगर। जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं निश्चित तौर पर वो हौसला आपका बुलंद रहता है। आप कुछ करना चाहते हैं अपने लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, और हम बात कर रहे हैं शिविका शर्मा से, जो कि एक टैरो कार्ड रीडर है और मोटिवेशनल स्पीकर है। तो शिविका शर्मा, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू।
0: जिस हौसले को आप सलाम करती हैं, ये हौसला आपको खुद से मिलता है, अपने दिल की आवाज आपने सुनी, जिस रास्ते पर आप चली, या यूं कहें कि जिस हौसले की डगर पर आप चली, जाहिर सी बात है कि दिक्कतें बहुत आई होंगी, उन चैलेंजेस को आपने कैसे फेस किया?
1: सबसे पहली दिक्कत तो देखिए मुझे 2020 में ही आई, जब मेरी माँ इस संसार को छोड़कर चली गई। वो एक बहुत हार्ड पार्ट था लाइफ का, बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि वहाँ पर मेरा एक तरफ तो अपना सपना था और एक तरफ समाज खड़ा था। मुझे आज भी वो वक्त याद है कि जब 13वीं होती है
0: जी,
1: तो उस टाइम पर मुझे बैठ कर लोग समझा रहे थे कि अभी आगे चीज़ें परस्यू करने की ज़रूरत नहीं है, अपना घर संभालो, यहाँ पर तुम्हारी ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैंने डैड को बहुत रिक्वेस्ट किया कि मुझे आगे जाना है। अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया, अभी जो अंदर से सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए ना, उसकी शुरुआत हुई नहीं है। अभी जस्ट एजुकेशन मेरी कंप्लीट हो रही है, तो वो जैसे तैसे बस उस चीज़ के लिए अग्री किए, बट प्रेशर था उनके ऊपर भी। तो वहाँ पर मैं सोसाइटी के अगेंस्ट चले गई, क्योंकि मेरे दिल की जो आवाज़ थी ना, बहुत पक्की थी। मुझे अंदर से सिर्फ उस टाइम पर एक थॉट आ रहा था, ये जिंदगी एक बार मिली है और इसी में सब करके जाना
0: क्या
1: है।
0: क्या बात है, जीले सिमरन अपनी जिंदगी। ग्रेट, यानी कि हम फिल्में भी देखते हैं हिंदुस्तानी फिल्मों का, यानी कि बॉलीवुड की फिल्मों का असर है हमारे ऊपर।
1: जी,
0: वेरी गुड।
1: उस टाइम पर जब मुझे ये आया ना कि जिंदगी एक बार मिली है, तो मैंने एक चीज सोच ली कि लोग तो बोलेंगे, अगर मैं सही जा रही हूँ, मेरे कर्म अच्छे है ना, तो वो अपनी जगह बना लेंगे, किसी का गलत नहीं कर रहे। आगे जाकर आज जो क्वेश्चंस उठा रहे हैं, वो आगे जाकर खुद एग्जांपल देंगे। मैं जा रही हूँ, मुझे मेरा काम करना है।
0: वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। यानी कि आपने अपने पेरेंट्स को समझाया, वो समझ गए। इसके अलावा मैं देखता हूँ आम जिंदगी की अगर मैं बात करूँ शिविका, तो लोगों के सामने ये चैलेंजेस आते हैं, तो वो उस चैलेंजेस को कैसे फेस करे, कैसे ओवरकम करे, ताकि वो अपने सपने को, अपने सपने को जी पाए, साकार कर पाए।
1: देखिए, इसको मैं सीधा सीधा आपको बोलती हूँ, आज स्पिरिचुअलिटी में इतना एक्टिव होने के बाद में, अपने दिल की सुनो। कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी बोल रहा है, प्यार से मना के देखिए पेरेंट्स को, क्योंकि सारी चीजों में वो आपके सबसे अपने होते हैं। लेकिन अगर वो आपको छोड़कर भी ये कह रहे हैं कि वो चार लोग क्या कहेंगे, तो आप अपने आप को चूज करिए, आप अपने सपने को चूज करिए। आप पेरेंट्स की भी जिंदगी में एक ही बार मन की करेंगे और अपने भी एक ही बार करेंगे, तो आप एक इंडिविजुअल सोल हैं। किसी भी आत्मा को किसी दूसरी आत्मा के द्वारा परेशान करना भी गलत है।
0: क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूबसूरत बात आपने कह दी कि किसी आत्मा को परेशान करना भी बहुत गलत है। और जब आप ऐसा करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित तौर पर हमारे भी कहीं ना कहीं काम गड़बड़ा जाएंगे, दिक्कतें परेशानियां हमारे सामने भी आएंगी। मुझे लगता है कि इस बात को गांठ बांध दीजिएगा दोस्तों, कि अगर आपने किसी को परेशान किया तो नेचर कर्मा आपको कहीं छोड़ेगा नहीं, लेकिन जब आप अपने दिल की सुनेंगे तो निश्चित तौर पर आपका सपना साकार होगा, मेहनत वसूल जरूर होती है। वक्त है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बातों का सिलसिला लगातार जारी है सिर्फ सुरो शारदा 90.8 FM पर। प्रोग्राम का नाम है हौसले की डगर, मेरे साथ बात कर रही हैं आप हैं शिविका शर्मा, जो कि टैरो कार्ड रीडर हैं। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड, ऑल योर सुरो शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यारी गगन के साथ।

0: एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं गगन आपके साथ। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, प्रोग्राम का नाम है हौसले की डगर, और इसी संबंध में बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ी हुई हैं आप हैं शिविका शर्मा, जो कि टैरो कार्ड रीडर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और आपकी 2-3 किताबें मार्केट में आ चुकी हैं और लोगों को मोटिवेट करती हैं अपनी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो शिविका, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: अगेन थैंक यू।
0: क्या बात है। थैंक यू से हम आगे बढ़ते हैं। लोग अक्सर थैंक यू कहना भूल जाते हैं, शुक्राना करना भूल जाते हैं। आप शुक्राना करती हैं ईश्वर का, अपने पेरेंट्स का, कि उनकी बदौलत आज मैं यहाँ हूँ। चैलेंजेस आते हैं, आपने उसके बारे में भी हमें बताया, हमारे लिसनर्स को बताया। कहीं कहीं लोग घुट जाते हैं, अपने सपनों को पीछे छोड़ देते हैं, लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है कि जब मौका मिलता है तो वो अपने सपने को जीना चाहते हैं। आजकल वो ऐसी सोसाइटी में ऐसा हो भी रहा है, लोग कर भी रहे, क्या कहना चाहते हैं?
1: देखिए, मुझे वो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं कि अगर एक इंसान बनकर खड़ा हो रहा है और चार देखकर कह रहे हमें मौका मिलता तो हम भी करते।
0: यस,
1: तो आपको मौका दिया गया था, आप अपने आप को चूज नहीं कर पाए। आपको अपना चुनाव करना था तो आप भी उसी जगह होते या उससे और आगे होते। तो उसी वक्त चूज करिए जिस वक्त वो घड़ी आ चुकी है, वो समय आ गया है कि आपको अपने सपनों को पूरा करना है। अब बताइए, क्या आप अगर अच्छा नाम कमाते हैं तो उससे मिलने वाली शोहरत, उससे मिलने वाली तरक्की आपके माँ बाप को अच्छी नहीं लगेगी?
0: बेशक
1: लगेगी, बट जिस वक्त समाज बीच में खड़ा है वहां पे आप अपने आप को चूज करिए। अगर देखिए, कैरेक्टर बहुत कई बार ऐसा होता है, स्पेशली लड़की के केस में ये सबसे ज्यादा हमारे समाज के अंदर है, सोसाइटी में, कि उसको 4 एलिगेशंस और एक्स्ट्रा लगाए जाते हैं। ये कहा जाता है कि बिगड़ जाएगी, कहीं कुछ ना हो जाए, गलत हो जाए, लेकिन आप अपने कैरेक्टर को ठीक रखिए। अपने सपने को हर वक्त जीना है आपको। जो मौका आपको मिल रहा है उसको यूज करिए। जब आप अपने आप को हर बार चूज करेंगे, अपने पैशन को चूज करेंगे, तो आप ये नहीं कह पाएंगे कि मुझे मौका मिलता तो मैं ये कर लेता।
0: क्या बात है, क्या बात।
1: और इसको पूरा करने की कोई उम्र नहीं है। अगर आज आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे अच्छा लग रहा है या मुझे ये करने में खुशी मिल रही है अभी भी, आप आज से शुरू करिए।
0: क्या बात,
1: आप जब तक जिंदा है ना, तब तक आप कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। जब जागो तभी सवेरा हो।
0: बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत बात आपने कह दी, और यही प्रोग्राम की थीम है कि हौसले की डगर। और इस तरीके से जब हमें हौसला मिलता है तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि बेरोक टोक आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए। हौसले के लिए अच्छी अच्छी सक्सेस स्टोरीज को आप जानिए, पढ़िए, सुनिए, लोगों से मिलिए, बातचीत करिए, और जब भी मौका मिले गुरु चौका मार दो। डरने का नहीं, ईश्वर आपके साथ है, खुदा आपके साथ है, और मेहनत करते जाइए। और बस यही कहेंगे कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं हुआ करती। और आपके पेरेंट्स को कभी आप साबित करना चाहते हैं तो उनकी दुआओं के साथ आप आगे बढ़िए और कोशिश करते रहिए, सब अच्छा होगा। वक्त है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम बातें करेंगे, एक मैसेज लेना चाहेंगे शिविका शर्मा से, जो कि टैरो कार्ड रीडर है, मोटिवेशनल स्पीकर है। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड, ऑल योर सोर्स शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। मेरे साथ स्टूडियो में बड़े खूबसूरत मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप हैं शिविका शर्मा जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, ऑथर भी हैं। तो एक बार फिर से शिविका आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू सो मच।
0: शुरुआत हुई, अंत की ओर हम बढ़ रहे हैं, तो एक छोटा सा संदेश मैं लेना चाहूंगा अपने यूथ के लिए, क्योंकि शारदा यूनिवर्सिटी है, यहाँ स्टूडेंट्स आते हैं, पढ़ते हैं, उनकी कुछ अपनी प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रेस है, तो वो फाइनली एक क्या मैसेज आप उनको वो देना चाहेंगे?
1: देखिए, यूथ के लिए, आज के युवा के लिए ये मैसेज है कि ये फाइंड आउट करिए कि सिर्फ चीजों के प्रति आप आकर्षित तो नहीं है। आपको बहुत चीजों का शौक हो सकता है, लेकिन कोई एक ऐसा शौक जिसमें आपको घड़ी नहीं देखनी पड़ रही है और उसको आप बस करते जा रहे हैं, आपके लिए दिन के 24 घंटे भी कम है। बट अगर कोई ऐसा शौक आपको मिल रहा है तो अब उसके लिए कुछ भी करना पड़े आप उसको अचीव करिए। वो आपका गोल है, वो आपका एम्बिशन है, वही आपको इस समाज में वो मान प्रतिष्ठा दिला सकता है जो घड़ी देखकर करने वाले काम नहीं दिला सकता।
0: क्या बात है, इसी को हौसला कहते हैं, इसी को कहते हैं जज्बा। वो जज्बात, वो जज्बा मिलाकर आप आगे चलेंगे तो मुझे लगता है कि सब कुछ बेहतर होगा। दूसरी दृष्टि से एक छोटा सा संदेश मैं ये भी जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने महारत हासिल की हुई है, आप आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत कुछ जानती हैं, सीखती हैं, समझती हैं, लोगों को बताती भी हैं, जो स्पिरिचुअलिटी हम बात करते हैं आध्यात्मिक दृष्टि से, अगर एक छोटा सा संदेश कि लोग कैसे आध्यात्मिक दृष्टि से जुड़ सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं, ताकि वो अपना भला कर सकें, सोसाइटी का भला कर सकें।
1: देखिए, सोसाइटी का भला करने से पहले आपको अपना भला करना पड़ेगा।
0: बेशक
1: आप स्पिरिचुअलिटी को डीपर लेवल पर समझिए, सिर्फ शब्दों से आप आध्यात्मिक नहीं हो सकते।
0: सही कहा।
1: चार किताबें पढ़ने से आपके अंदर अगर कोई परिवर्तन नहीं आ पाया, आप अपनी आवाज को बुलंद करके अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए, तो ना तो आप कर्म जान पाए, ना आप अध्यात्म जान पाए। आपको जानना पड़ेगा कर्म योग क्या है। जो सपना आपने देखा है उसके लिए आपको कर्म करना है, और अगर आप निष्काम भाव से उसे करके चलते हैं तो फिर वो आपको सक्सेस देता है, वो चीजें आपके पीछे पड़ जाती हैं। आप अंदर से, आपकी जो सोल आपसे कह रही है उसको आप सुनिए, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि सोल में जो आपकी इंट्यूशन है ना, वो आपको कभी गलत गाइड नहीं करती, वो आपको बहुत सारी चीजों से पहले अवेयर कर देती है, आपको बता देगी हाँ ये काम तू कर ले 100% तेरे लिए है। 100% का जो एश्योरेंस है ना, वो आपको आपकी सोल से मिल जाता है।
0: क्या बात
1: जी। तो ये स्पिरिचुअलिटी का मैसेज तो आपके लिए है कि अपनी सोल से जुड़ जाओ, बाहर के शोर शराबे को बंद करके अंदर से फील करो कि आप क्या चाहते हो, और उसी चीज को मैनिफेस्ट करिए। ठीक है, जैसे जैसे आप मैनिफेस्ट करोगे उसके ऊपर काम करेंगे, अच्छे कर्म, मेहनत करेंगे पूरी तरीके से, फिर आई डोंट फील कि आपको सक्सेस कहीं छोड़कर किसी और रास्ते से निकल जाएगी, मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि आपके अंदर वो रच बस गया है। स्पिरिचुअलिटी को अपने अंदर उतारिए और अपने काम को अपना पार्टनर बना लीजिए।
0: क्या बात है, मोहब्बत कर लीजिए अपने काम से, निष्काम यानी कि मोहब्बत के साथ आप आगे बढ़ेंगे, और फल की चिंता मत करते जाइए, काम करते जाइए, तो निश्चित तौर पर एक ना एक दिन आपको वो रिजल्ट, परिणाम आपके फेवर में आएगा ही जरूर। ऐसी तमाम कहानियां हैं, वो सक्सेस स्टोरीज जिनको आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, गढ़ते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट करती हैं। और जब ऐसी शख्सियत हमारे स्टूडियो में आती है जो हमें मोटिवेट कर रही है, चूंकि आप हैं मोटिवेशनल स्पीकर, आप हैं टैरो कार्ड रीडर, आप हैं एक ऑथर शिविका शर्मा, बहुत सारी बातें हौसले की डगर कार्यक्रम में आपसे हुई, आपने हमें एक हौसला दिया, हमारे लिसनर्स को हौसला दिया कि आप अपने सपने को कैसे जी सकते हैं, कैसे उसको साकार कर सकते हैं, कैसे उसको आप आगे लेकर जा सकते हैं, क्योंकि जो डर गया वो घर गया। अरे ये तो नई लाइन मिल गई। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना कि नहीं यार दिक्कतें बहुत ज्यादा आ गई, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं अपने सपने को ड्रॉप कर रहा हूं।
1: ये इनिशियल स्टेज पे यही आता है, लेकिन जब आप अपनी सोल की आवाज को सुनते हैं ना, तब जो आता है वो इसके विपरीत होता है।
0: और देखिए शिविका, ऐसा भी होता है कि जब आप दिल की आवाज सुनते हैं, मैं काम के अलावा दूसरी तरफ बात करता हूँ कि फिल्मों में भी यही होता है, और ऐसे ही टाइटल्स भी आते हैं कि लव के लिए कुछ भी करेगा तो वो लव इंसान हासिल कर लेता है। और यही चीजें अगर सोच ले कि यार ये मुझे सपना है, ये डॉक्टर बनना है, ये क्रिकेटर बनना है, तो वो सारी चीजें या उस एनर्जी के साथ चलेगा तो निश्चित तौर पर वो उसको हासिल कर ही लेता है। तो हौसला ऐसे ही मिलता है। तो शिविका शर्मा आप हमारे साथ जुड़ी रही, बहुत अच्छी चर्चा रही, लेकिन जाते जाते मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई अगर आपसे कनेक्ट करना चाहे, कोई सोशल मीडिया पेज हो, यूट्यूब हो, जहां आपसे लोग मिल सकें, अपने मन की बात आपसे शेयर कर सकें।
1: तो टैरेट विद शर्मा शिविका मेरा यूट्यूब चैनल है, जहां पर मैं करियर, लव रिलेशनशिप्स, इस तरीके की चीजों के जरिए लोगों को गाइड करती हूँ, टैरो रीडिंग्स के जरिए, पेशे से टैरो कार्ड रीडर हूँ, तो उसके साथ साथ आपको काउंसलिंग के जरिए कुछ ऐसी गाइडेंस मैं देती हूँ जहाँ पर आपकी लाइफ में जो भी ब्लॉकेजेस आ रहे हैं वहाँ पे आपको एक रास्ता मिल जाता है, आपको चीजें समझ में आती हैं कि ये जो सब कुछ हो रहा है ना, सब कुछ बहुत फैला हुआ है आपके लाइफ में, उसको एक सही तरीके से डायरेक्शन मिल जाता है कि अब आपको एक्चुअली में क्या करना है। आपको सीधी तरह से बोलूं तो मझधार से बाहर निकालने का काम मैं करती हूं।
0: क्या बात है, क्या बात है। हम भी चाहते हैं कि ये काम बादस्तूर यूं ही चलता रहे, आप मझधार में ना फंसे, और तिनके का ही सहारा होता है, वो तिनका हमारे सामने है शिविका शर्मा। आपने हमें समय दिया, दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद शिविका।
1: थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।
0: थैंक यू। सो लिसनर्स, आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? 01204060205 अर्थात 120 शहर का एसटीडी कोड लगाना ना भूलेगा, 40205 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा 90.8 FM @sharda.ac.in पर आप हमें मेल कर सकते हैं, और शारदा विश्वविद्यालय के जो दरवाजे हैं वो आपके लिए खुले हुए हैं, कभी भी आप आइए, मुलाकात हमसे कर सकते हैं। वक्त का इशारा, मैं होता हूं 9:11, और यही कहना चाहता हूं जाते जाते कि ना टेंशन लेने का, ना टेंशन देने का, खुश रहने का, बिंदास रहने का, और सुनते रहने का ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। टाटा बाय एंड टेक केयर, नमस्कार, थैंक यू।
2: जिंदगी, म्यूजिक प्रोड्यूस्ड एंड अरेंज्ड बाय रूहान मलिक, लिरिक्स बाय साकिब नवी, ओनली ऑन सुरोशादा 90.8 FM।

0: Sharda School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट. ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग.
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन. आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है. तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in. शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश. सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी. राम राम, दोस्त राम, सत श्री अकाल, आदाब. मैं हूं गगन आपके साथ. वो गगन जो हमेशा गगन को छूने की बातें किया करता है, दिलों को जीतने की मैं कोशिश करता हूं अपने इस खास प्रोग्राम के माध्यम से. आज जिस सब्जेक्ट पर मैं बात कर रहा हूं वो इशारा करता है कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी. यानी कि हम बात करेंगे, हिंदी में कहा जाता है साइबर धोखाधड़ी और अंग्रेजी में कहा जाता है साइबर फ्रॉड. इससे कैसे हम अपने आप को बचा कर रखें? इससे अगर आपने अपने आप को बचा कर रख लिया तो यकीन मानिए कि रात को चादर तान कर आप सो सकते हैं, अदरवाइज रातों की नींद आपकी खराब हो सकती है. इसी के बारे में बातें करेंगे. डिजिटल माध्यमों, जैसे कि बात निकल कर सामने आती है कि इंटरनेट, स्मार्टफोन या कंप्यूटर का उपयोग करके की जाने वाली धोखाधड़ी है साइबर फ्रॉड, और जिसका उद्देश्य ये होता है कि पीड़ितों की निजी जानकारी को चुराना या उन्हें आर्थिक नुकसान पहुंचाना होता है. इसके बारे में डिटेल में और बातें करेंगे. सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑल यू थ्रू शारदा 90.8 FM. आज का सब्जेक्ट है साइबर फ्रॉड.
2: वैसे मुझे अमीरों से मिलने का कोई खास शौक नहीं है.
3: तो फिर मुझसे प्यार क्यों किया?
2: एक कमबख्त दिल की गलती कर बैठता है और भुगतना आपको पड़ता है.
3: तो भुगतो.

0: 45 मिनट योग करने से बीमारियां दूर रहती हैं और आप स्वस्थ रहते हैं। योग एक ऐसा विज्ञान है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत उपयोगी है।
1: आओ करें सब योग।
2: आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
4: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। सामुदायिक रेडियो स्टेशन होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि साइबर धोखाधड़ी के प्रति जन जागरूकता अभियान हम चलाते रहें, हम आपको अपडेट करते रहें। यही वजह है कि इस प्रकार के जो घोटाले, इस प्रकार का जो फ्रॉड है, उससे बचने बचाने के लिए हम आपको अपडेट कर रहे हैं। तो बात निकल कर ये सामने आती है कि धोखाधड़ी के मामले बड़े पैमाने पर हमारे सामने आ रहे हैं और भारत सरकार भी अलर्ट है। इसीलिए सामुदायिक रेडियो स्टेशन के साथ मिलकर हम आप तक ये खास बातें पहुंचा रहे हैं। इस साइबर धोखाधड़ियों की जो बढ़ती घटनाएं हैं, उनका असर नागरिकों पर पड़ता है। उनके साथ धोखा होता है, उनके साथ छल होता है, उनके साथ फरेब होता है। और इस बुरे असर से बचने के लिए एक बड़े पैमाने पर जन जागरूकता अभियान चलाने का प्रस्ताव किया गया, यानी कि अवेयरनेस एक्टिविटी सुनो शारदा 90.8 FM के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और वो बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। और चूंकि रेडियो स्टेशन का जो एक दायरा है, यानी कि आपका हमारा जो एक संबंध है, हम लोगों तक पहुंचते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के बीच में पहुंचते हैं, अर्ध शहरी आबादी के बीच में पहुंचते हैं, शहरी आबादी के बीच में पहुंचते हैं, तो यानी कि एक ब्रिज का काम हम कर रहे हैं। और यही वजह है कि सुनो शारदा 90.8 FM आपसे कहता है कि इस प्रकार की जो धोखाधड़ी है, इससे आप अपने आप को बचा कर रखें ताकि आप सुरक्षित रह पाएंगे और आपके रुपए का कोई मिसयूज नहीं कर पाएगा। ऐसी अपडेट के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
1: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
2: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी मेरियानी गगन के साथ। आज मैं बात कर रहा हूँ साइबर फ्रॉड के बारे में, साइबर धोखाधड़ी से कैसे हम अपने आप को बचा कर रखें। और इस प्रकार की जो धोखाधड़ी है, बहुत सारे इसके टाइप्स होते हैं, लेकिन उससे पहले डिटेल निकल कर ये सामने आती है कि जो धोखेबाज लोग हैं, जिस तरीके का काम करते हैं, वो आर्थिक नुकसान आपको पहुंचाते हैं। और कई प्रकार की एक ठगी होती है, जैसे फिशिंग। इसके अंतर्गत होता क्या है कि फर्जी ईमेल या मैसेज भेजकर बैंक विवरण या पासवर्ड जैसी संवेदनशील जानकारी मांगना। दूसरी बात सामने आती है विशिंग और स्मिशिंग, यानी कि फोन कॉल जिसको विशिंग और SMS, इसको स्मिशिंग के जरिए बैंक अधिकारी बनकर OTP या कार्ड की जानकारी वो लोग चुराते हैं, वो आपसे मांगते हैं। लेकिन जो भोले भाले लोग होते हैं वो उनके झांसे में आ जाते हैं। और पहचान की चोरी यानी कि आइडेंटिटी थेफ्ट, किसी की निजी जानकारी जैसे कि नाम आधार नंबर चुराकर उनके नाम पर फर्जी अकाउंट खोलना या लोन लेना। रैंसमवेयर यानी कि कंप्यूटर की फाइलों को लॉक यानी कि एनक्रिप्ट कर देना और उन्हें खोलने के बदले पैसे यानी कि फिरौती की मांग करना। इन्वेस्टमेंट स्कैम, ये भी एक प्रकार का स्कैम है, यानी कि शेयर ट्रेडिंग या पैसे दोगुने करने का लालच देकर लोगों को निवेश के लिए उकसाना। और हाल ही में इस प्रकार की घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ी हैं, तो इस प्रकार की ठगी से आप अपने आप को बचा कर रखें। सिम स्वैप यानी कि धोखे से नया सिम कार्ड निकलवाकर बैंक खातों के OTP प्राप्त करना। तो बहुत सारे टाइप्स मैंने आपको बता दिए, तो आपका फर्ज बनता है कि साइबर ठगी से, साइबर फ्रॉड से अपने आप को बचा कर रखें। और ये काम मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के साथ मिलकर ये खास बातें हम आप तक पहुंचा रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM के जरिए। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। आज हम बात कर रहे हैं साइबर फ्रॉड के बारे में, साइबर धोखाधड़ी के बारे में। इससे बचने के तमाम उपाय हैं, कौन कौन से वो टाइप्स, उसके बारे में मैं बात कर ही चुका हूं। सोशल मीडिया पर नकली विज्ञापन और वीडियो घोटालेबाज फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और दूसरे प्लेटफॉर्म पर अट्रैक्टिव एड वो लोग चलाते हैं, या यूं कहें कि आकर्षक विज्ञापन वो चलाते हैं। अक्सर मशहूर हस्तियों, सरकारी अधिकारियों, यहां तक कि प्रधानमंत्री के नकली या एडिट किए हुए वीडियो का इस्तेमाल वो लोग करते हैं और ये वीडियो शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोने में निवेश के लिए पक्के रिटर्न या गुप्त तरीकों का वादा करते हैं और कोई भी सरकारी संस्था या मशहूर हस्ती व्यक्तिगत निवेश की सलाह नहीं देती है और ना ही मुनाफे की गारंटी देती है। तो इस बात का ध्यान रखें, अलर्ट रहें और इस प्रकार की साइबर ठगी से, साइबर फ्रॉड से अपने आप को बचा कर रखें। और भी अपडेट मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा, बस यही कहूंगा कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। ऐसी अपडेट के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: जब तू इस घर में खुशियाँ बनकर आई।
1: तुम रहो स्वस्थ और सुरक्षित, हमको यही बात की चिंता सताई।
2: अरे कौन है वो जो हमको समझाए कैसे करें हम इनकी देखभाल।
0: अरे चिंता ना करो अम्मा, मुन्नी अस्पताल में हुई है, इसलिए 7 बार हम इस घर के चक्कर लगाएंगे, नहीं रहेगी कोई कसर अधूरी। मुन्नी की जांच मैं करूंगी पूरी, जांचूंगी वजन और तापमान, रखूंगी आंख नाक और त्वचा का भी ध्यान, कितनी बार कब और कैसे अपना दूध तुम पिलाओगी ये मैं तुम्हें बतलाऊंगी। मुन्नी को छूने से पहले हर बार कैसे धोना है हाथ ये भी सबको सिखलाऊंगी। छोटी सी है मुन्नी, इसे तुम 7 दिन तक बिल्कुल मत नहलाना, सीने से लगा के रखना और कपड़े खूब पहनाना। 15 है खतरों के लक्षण, रखना तुम इन सबका ध्यान, देखते ही ये लक्षण 102 एम्बुलेंस बुलाना, तुरंत मुन्नी को SNCU ले जाना।
3: करती है पते की बात, ये तो सुघर सयानी है, बच्चे के होने पर ये तुम्हारे घर आनी है।
0: 1, 3, 7, 14, 21, 28 और 42वें दिन मैं बच्चे की जांच करने आऊंगी, क्योंकि बच्चे की नियमित जांच से फर्क पड़ता है।
4: सुरक्षा गुणवत्ता के साथ पालन पोषण एवं विकास सभी नवजात शिशु का जन्मसिद्ध अधिकार है। यूनिसेफ द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है, और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
6: The world is here.
5: एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। साइबर ठगी से अपने आप को बचा कर रखिए, साइबर फ्रॉडर से अपने आप को बचा कर रखिए, यही उद्देश्य इस प्रोग्राम का। भारत सरकार के साथ मिलकर ये अवेयरनेस प्रोग्राम हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बात निकल कर अब ये सामने आती है कि व्हाट्सएप और टेलीग्राम यानी कि ट्रेंडिंग ग्रुप्स, लोगों को व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स में लोगों को जोड़ा जाता है और वादे किए जाते हैं कि मुफ्त ट्रेनिंग टिप्स, सेबी से रजिस्टर्ड एक्सपर्ट्स आपको पक्का मुनाफा देने की गारंटी देते हैं। और इन ग्रुप्स के अंदर फर्जी सदस्य बड़े मुनाफे के स्क्रीनशॉट्स वो लोग शेयर करते हैं, पीड़ितों को धीरे धीरे निवेश करने के लिए राजी किया जाता है, भरोसा बनने में कई दिन या हफ्ते वो लोग लगाते हैं, यानी कि आपके ऊपर काम करते हैं, आपके साथ जुड़े रहते हैं। और असलियत ग्रुप के ज्यादातर सदस्य भी इस घोटाले का हिस्सा होते हैं। ये जो जानकारी है भारत सरकार के जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि आप इस प्रकार की ठगी में ना फंसे, साइबर फ्रॉड से अपने आप को बचा कर रखें, साइबर फ्रॉडर से अपने आप को दूर रखिए। ऐसे अपडेट के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: ट्यूबरक्लोसिस या टीबी किसी को भी हो सकता है। मैं भी इसका शिकार हुई थी, पर मैं इससे बच निकली। मैं ऐसा इसलिए कर सकी क्योंकि मैंने अपना इलाज अधूरा नहीं छोड़ा। टीबी से लड़ने के लिए इसका पूरा इलाज करना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये बीमारी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। हो सकता है आप ड्रग रेजिस्टेंट भी बन जाए, जो एक अधिक खतरनाक प्रकार की टीबी है और इसका इलाज भी बहुत मुश्किल है। एक टीबी विजेता होने के नाते मुझे पता है कि ये आसान नहीं है। इसका इलाज लंबा चलता है और इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। जब मैं ड्रग रेजिस्टेंट टीबी से जूझ रही थी, तब मुझे इसके इलाज से जुड़ी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहली चुनौती है इसके इलाज से जुड़ी दवाइयों की संख्या। कभी कभी तो 16 दवाइयां लेनी पड़ती थी और कब कौन सी दवाई लेना ये याद रखना बहुत मुश्किल था। दूसरी चुनौती है इसके साइड इफेक्ट्स। उल्टी होना, सिर चकराना, दर्द, कमजोरी और मानसिक स्थिति बिगड़ने जैसे साइड इफेक्ट से उबरना मुश्किल होता है। इसलिए कई लोग इलाज बीच में ही छोड़ देना चाहते हैं। मैं भी यही करना चाहती थी। तो इन चुनौतियों से लड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर आप सरकार के RNDCP के द्वारा इलाज करा रहे हैं, तो उसमें एक ऐसा सिस्टम है जो आपके इलाज के ऊपर निगरानी रखता है और ये सुनिश्चित करता है कि आप आपका इलाज पूरा कराएं। ये काफी आसान है, इसको 99 डॉट्स कहते हैं। टीबी की दवाएं एक लिफाफे में होती है जिसमें आपको अलग अलग निर्देश, आकार और नंबर दिखाई देंगे। यहाँ के सलाहकार पहले डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं और मरीजों से पूछते हैं कि डॉक्टर ने उनको कितनी गोलियां लेने को कहा है। चलिए हम आज की दवाई लेते हैं। मुझे आज 3 गोलियां खानी है। गोली नंबर 1 से शुरू करके गोली नंबर 3 तक खानी है। याद रखिए, लिफाफे में जैसा दिखाया है आपको उसी संख्या क्रम में गोलियां लेनी है। अगर आप क्रम के हिसाब से 3 गोलियां ले चुके हैं, तो इन गोलियों के खुले फ्लैप के अंदर देखें। आपको इन फ्लैप्स के अंदर छिपे नंबर दिखाई देंगे। अगर आप 3 गोलियां लेते हैं तो आप 1 या 2 नंबर बता सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन के वक्त आपने जो मोबाइल नंबर दिया है, उस मोबाइल से इनमें से किसी एक नंबर पर आपको कॉल करना है। ऐसा करने की क्या जरूरत है? जब आप ये कॉल करेंगे तो आपके सुपरवाइजर को ये पता चलेगा कि आपने उस दिन की गोलियां ले ली है। अस्पताल कर्मचारी को ये पता होना जरूरी है कि आप नियमित रूप से दवाई ले रहे हैं। अगर आप नहीं चाहते कि वो बार बार आपके घर आए, तो आपको उनको कॉल करके ये बताना होगा कि आपने दवाई ले ली है। इसके लिए आपको रोजाना इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करना होगा। याद रखे, ये एक टोल फ्री नंबर है। आपके मोबाइल पे बैलेंस ना होने पर भी आप इसके ऊपर कॉल कर सकते हैं। अगर बैलेंस हो भी तो भी इससे कोई पैसे नहीं कटेंगे। ये भी याद रखे कि आपको इनमें से दिखाए गए किसी एक नंबर पे ही कॉल करना है, सभी नंबर पे कॉल करने की जरूरत नहीं है। आपको इन नंबरों के पहले कोई अतिरिक्त संख्या जोड़ना भी जरूरी नहीं। जब आप नंबर मिलाएंगे तो दूसरी तरफ से धन्यवाद सुनने मिलेगा। अगर आपको कोई साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, तो उन्हें कहीं लिखिए और अपने डॉक्टर से इसके बारे में बात कीजिए। ये याद रखना जरूरी है कि आपको बिना किसी चूक अपना इलाज समय पर लेना है। मैं जानती हूँ कि ये आसान नहीं है, लेकिन टीबी को हराने के लिए कोई दूसरा तरीका भी नहीं है। इलाज पूरा करने के लिए 99 डॉट्स का उपयोग करें। टीबी से लड़ने के लिए इसे एक साधन समझें। आइए हम सब मिलकर टीबी को हराएं।
1: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
2: एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। आज हम बात कर रहे हैं साइबर फ्रॉड से अपने आप को बचा कर रखें। ऑनलाइन दोस्ती एक इन्वेस्टमेंट ट्रैप बन जाती है दोस्तों। स्कैमर सोशल मीडिया डेटिंग एप्स पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं और वो रेगुलर आपसे चैट करते हैं। ऐसा लगता है कि आपको सामने वाला दोस्त मेरा ही सच्चा दोस्त है, लेकिन इमोशनल भरोसा वो लोग बनाते हैं, भरोसा वो जीतते हैं और कुछ समय के बाद वो इन्वेस्टमेंट के मौके बताते हैं और एक अलर्ट मैसेज यानी कि चेतावनी का संकेत ये होता है कि कोई भी ऑनलाइन अजनबी जो आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए जोर दे वो एक बड़ा रेड फ्लैग है, एक रेड अलर्ट है, वहीं आप अलर्ट हो जाइए। और बात करें तो फर्जी ऐप या फर्जी वेबसाइट यानी कि पीड़ितों से जो लोग पीड़ित हैं, विक्टिम हैं, उनको हमारी तरफ से अलर्ट मैसेज है कि ऐसे पीड़ित व्यक्ति फर्जी ऐप या फर्जी वेबसाइट प्ले स्टोर के बाहर किसी अनजान लिंक से कोई ऐप इंस्टॉल करने और किसी फर्जी वेबसाइट के जरिए पैसे लगाने के लिए अगर वो कह रहे हैं, आपसे कहा जाता है, तो ये सारे प्लेटफॉर्म फर्जी मुनाफा, फर्जी अकाउंट बैलेंस और पैसे निकालने के फर्जी विकल्प दिखाते हैं। असल में होता क्या है कि पैसा सीधे धोखेबाजों के पास चला जाता है और जब पीड़ित पैसे निकालने की कोशिश करता है तो ऐप काम करना बंद कर देती है और वेबसाइट गायब हो जाती है, टैक्स या फीस के नाम पर और पैसे मांगे जाते हैं, इस स्टेज तक आते आते पैसा पहले ही आपका डूब चुका होता है। ऐसी अपडेट के लिए सुनते रहे ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

आज जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं वो विषय है साइबर फ्रॉड। साइबर फ्रॉडर से अपने आप को बचा कर रखिए, ऐसे धोखेबाजों से अपने आप को बचा कर रखिए। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, तो ठगी से कैसे अपने आप को बचा कर रखें।

बताते हैं कि उनके खिलाफ कोई गंभीर अपराध दर्ज किया गया है, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग, नशीले पदार्थों की तस्करी या अवैध सिम कार्ड का इस्तेमाल। स्कैमर कहता है कि आपसे पूछताछ की जाएगी, जिसका मतलब है कि आप किसी और से बात नहीं कर सकते और ना ही कॉल कट कर सकते हैं, और पीड़ितों को कई घंटों या यूं कहें कि कई दिनों तक कॉल पर ही उलझाए रखते हैं ताकि उनके मन में डर और घबराहट पैदा हो जाए। कभी कभी वो वीडियो कॉल पर पुलिस की वर्दी पहनते हैं या असली दिखने के लिए नकली पहचान पत्र या यूं कहें कि आईडी कार्ड्स वो लोग दिखाते हैं। तो आपका फर्ज बनता है कि तुरंत पुलिस को सूचित करें, और जो नंबर मैंने आपको बताया 1930 पर आप कॉल कर सकते हैं, या इसके अलावा cybercrime.gov.in पर आप अपडेट कर सकते हैं। ऐसे अपडेट के लिए सुनते रहे ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय, मैं हूं रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM। सुनो
1: शारदा, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो विषय है साइबर फ्रॉड। धोखाधड़ी से अपने आप को बचा कर रखिए। इस प्रकार के जो फ्रॉडर हैं, जो धोखेबाज हैं, वो एक व्यक्ति को अगर पीड़ित करते हैं, परेशान करते हैं, या वो पीड़ित व्यक्ति इनके झांसे में आ जाता है, तो उनसे पैसे के लेन देन की जांच करवाने के लिए या मामले को चुप या रफा दफा करने के लिए पैसे की डिमांड करने लगते हैं। और आमतौर पर होता क्या है कि बैंक ट्रांसफर, UPI या क्रिप्टो करेंसी के जरिए वो रुपया मांगते हैं। पैसे मिलते ही जालसाज लोग गायब हो जाते हैं। और भारत में डिजिटल अरेस्ट यानी कि डिजिटल गिरफ्तारी जैसा कोई कानूनी प्रावधान है ही नहीं। बस आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। और पुलिस कभी भी फोन या वीडियो कॉल पर किसी को गिरफ्तार नहीं करती, ये ध्यान रखिएगा। पुलिस कभी भी किसी मामले को बंद करने के लिए पैसे नहीं मांगती। अगर आपको ऐसा कोई कॉल आता है तो तुरंत फोन काट दें। अपनी कोई भी निजी जानकारी आप साझा ना करें। अगर आप किसी साइबर धोखाधड़ी के शिकार हुए हैं तो फिर मैं दोहराता हूं, 1930 पर आप कॉल करें या cybercrime.gov.in पर जाकर इसकी शिकायत आप कर सकते हैं। उन लोगों का हथियार ये है, डर उनका हथियार है, जागरूकता ही आपकी सुरक्षा है। तो बहुत सारी अपडेट्स मैंने आप तक पहुंचा दी। बस फर्ज आपका बनता है कि आप अलर्ट रहें, सावधान रहें। और एक लाइन हमेशा याद आती है जो अक्सर हमने सुनी है, देखी है, पढ़ी है कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। सुनते रहिए ऐसी अपडेट के लिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशादा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन, और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर, लेकर हाजिर हूं आपका वही मन पसंद जाना पहचाना प्रोग्राम सेहत सही लाभ कई। अरे भाई वाह, आज तो हमारे गांव में कुछ अलग ही माहौल है। सुबह सुबह इतनी भीड़ और ये लाउड स्पीकर से आवाज, सभी लोग ध्यान दें, आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में HPV टीकाकरण शिविर। अरे ये HPV क्या होता है भाई, और इतनी भीड़ क्यों लगी है? अरे सियातिया सिंह जी इधर आइए, आप तो हमेशा सही जानकारी देते हैं, जरा बताइए ये सब क्या चल रहा है?
1: अरे आरजे बाबू परेशान मत होइए, आज बहुत अच्छा और बड़ा दिन है गांव के लिए भी और हमारी बेटियों के लिए भी। आज जो कैंप लगा है ना, ये कोई साधारण टीकाकरण नहीं है, ये आगे चलकर एक बहुत बड़ी बीमारी से बचाने वाला टीका है। पर HPV के बारे में विस्तार से बताने से पहले एक कहानी बताना चाहता हूँ
0: जी।
1: गांव का नाम था बड़की टोला। सुबह का समय था, सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था, लेकिन सावित्री देवी का दिन कब का शुरू हो चुका था। पहले चूल्हा जलाना, फिर पानी भरना, बच्चों को तैयार करना और उसके बाद खेत का काम। सावित्री देवी की एक 12 साल की बेटी थी गुड़िया, पढ़ने में तेज लेकिन थोड़ी शर्मीली। सावित्री चाहती थी कि उसकी बेटी कुछ बन जाए, उसकी जिंदगी उससे बेहतर हो जाए। एक दिन गांव में आशा दीदी आई और उन्होंने बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में HPV टीकाकरण शिविर लगने वाला है। उन्होंने समझाया कि ये टीका लड़कियों को आगे चलकर एक खतरनाक बीमारी सर्वाइकल कैंसर से बचाता है। सावित्री पहले तो थोड़ा हिचकिचाई, उन्होंने अपने पति रामलाल से बात की। रामलाल पहले तो बोले, अरे हमारी बेटी तो बिल्कुल ठीक है, उसे क्या जरूरत है टीके की? लेकिन आशा दीदी ने धैर्य से समझाया, भैया यही समय है, ये टीका बीमारी होने के बाद नहीं पहले काम करता है, अगर अभी लगवा लिया तो आगे चलकर बड़ी बीमारी से बचा जा सकता है। रामलाल कुछ सोच में पड़ गए, उन्होंने आसपास के लोगों से भी पूछा लेकिन किसी के पास पूरी जानकारी नहीं थी, बस अफवाहें थी। तभी एक दिन उन्होंने रेडियो पर एक कार्यक्रम सुना जिसमें मेरे जैसे ही एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता समझा रहे थे कि ये टीका सुरक्षित है और क्यों जरूरी है। बस उस दिन के बाद रामलाल का नजरिया ही बदल गया। उन्होंने कहा, अगर एक छोटा सा टीका मेरी बेटी की जिंदगी भर की बीमारी से बचा सकता है तो हम पीछे क्यों रहें? अगले दिन सावित्री और रामलाल अपनी बेटी गुड़िया को लेकर कैंप पहुंचे। वहां कई और लड़कियां भी आई थी। शुरुआत में गुड़िया थोड़ी डरी हुई थी लेकिन जब उसने देखा कि बाकी लड़कियां भी हिम्मत से टीका लगवा रही हैं तो उसने भी मुस्कुराते हुए कहा, अम्मा मैं भी लगवाऊंगी। टीका लगने के बाद बस थोड़ा सा दर्द हुआ लेकिन दो दिन में सब कुछ ठीक हो गया। धीरे धीरे गांव में और लोग भी प्रेरित हुए भैया ऐसे। सावित्री देवी अब खुद दूसरी महिलाओं को समझाने लगी। रामलाल भी पंचायत में इस विषय पर बात करने लगे। कुछ महीनों बाद बड़की टोला में एक बदलाव साफ दिखने लगा। ज्यादा लड़कियां टीका लगवा रही थी, लोग अफवाहों की जगह सही जानकारी पर भरोसा करने लगे थे, और सबसे बड़ी बात अब बेटियों की सेहत को लेकर गंभीरता बढ़ गई थी। सावित्री देवी अक्सर कहती थीं, पहले हम सोचते थे कि ये सब शहरों की बातें हैं, लेकिन अब समझ में आया कि हमारी बेटियों का भविष्य हमारे ही हाथ में है। ये कहानी सिर्फ सावित्री और गुड़िया की नहीं है, ये हर उस परिवार की कहानी हो सकती है जो सही समय पर सही फैसला ले।
0: सियातिया भैया कहानी तो आपने बहुत ही अच्छी सुनाई है, लेकिन ये HPV नाम तो बड़ा भारी लग रहा है, जरा खुलकर विस्तार से बताइए हमारे सुनने वालों को ताकि उनकी समझ में आसानी से ये बात बैठ जाए।
1: बिल्कुल बेशक। देखिए HPV का मतलब है ह्यूमन पेमिलोमा वायरस, नाम बड़ा लग रहा है होगा आपको
0: जी,
1: लेकिन पूरा मतलब इसका यही है, HPV का ह्यूमन पेमिलोमा वायरस। पर बात आसान है, ये एक ऐसा वायरस है जो अगर शरीर में आ जाए और समय रहते रोका न जाए तो महिलाओं में आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर यानी गर्भाशय के मुंह का कैंसर पैदा कर सकता है।
0: तो सियातिया भैया इसका मतलब तो सीधे सीधे ये हुआ कि ये जानलेवा बीमारी तक ले जा सकता है।
1: हाँ, और सबसे खतरनाक बात क्या है जानते हैं आरजे बाबू?
0: वो क्या है सेतिया भैया, अब तो आप थोड़ा डरा भी रहे हैं सबको।
1: मैं डराने के लिए नहीं, समझाने के लिए कह रहा हूँ। इस बीमारी की सबसे बड़ी चालाकी ये है कि शुरू शुरू में इसका कोई लक्षण ही नहीं होता। ना कोई दर्द, ना कोई बुखार, ना कोई ऐसी परेशानी जिससे लगे कि अंदर कुछ गड़बड़ी चल रही है।
0: मतलब आपका ये है कि इंसान को पता ही नहीं चलता है कि उसके अंदर हो क्या रहा है।
1: बिल्कुल, और यही वजह है कि जब तक लोगों को इसका पता चलता है तब तक कई बार बहुत देर हो चुकी होती है, बीमारी काफी आगे बढ़ चुकी होती है।
0: ये तो बहुत खतरनाक बात है, तो फिर इससे बचने का कोई ना कोई तरीका तो होगा या नहीं है?
1: यही तो अच्छी खबर है आरजे बाबू। जहाँ एक तरफ इसका इलाज मुश्किल हो सकता है, वहीं दूसरी तरफ इसका बचाव बहुत आसान है।
0: सच में? कैसे?
1: HPV वैक्सीन से एक छोटा सा टीका जो आगे चलकर बड़ी बीमारी से बचा सकता है।
0: तो सेतिया भैया, जरा इसे और आसान करके समझाइए ना, ताकि हमारे जो गांव के भोले भाले लोग हैं उनकी समझ में

0: भी आसानी से आ सके ये सब बातें।
1: ठीक है, एक उदाहरण से समझिए। जब हम खेत में फसल लगाते हैं तो क्या करते हैं?
0: अरे सियतिया भैया, खेत के चारों तरफ बाड़ लगाते हैं ताकि कोई जंगली जानवर है या अन्य जानवर है खेतों में घुस करके फसल को खराब ना कर दे।
1: बिल्कुल सही बात कही आपने, ताकि फसल सुरक्षित रहे। ठीक वैसे ही ये वैक्सीन हमारे शरीर के लिए एक सुरक्षा की बाड़ की तरह काम करता है। ये वायरस को अंदर आकर नुकसान करने से रोकता है।
0: ओहो, मतलब ये बीमारी को शुरू होने से पहले ही रोक देता है।
1: हाँ, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये कोई इलाज नहीं है कि बीमारी हो जाने के बाद काम आ जाए, ये तो पहले से ही सुरक्षा देता है ताकि बीमारी हो ही ना पाए।
0: तो फिर ये टीका किसे लगवाना चाहिए? कोई खास उम्र होती है क्या इसके लगवाने की?
1: हाँ, इसका सबसे ज्यादा फायदा तब होता है जब इसे सही उम्र में लगवाया जाए। आम तौर पर 9 से 14 साल की लड़कियों को ये टीका लगवाना सबसे अच्छा माना जाता है।
0: लेकिन सिहतिया भैया, मान लीजिए अगर कोई इससे बड़ी उम्र की लड़की हो, उसके लिए क्या फिर करना चाहिए?
1: देखिए भाई, तो भी चिंता की बात नहीं है, ऐसे में डॉक्टर से सलाह लेकर बाद में भी ये टीका लगवाया जा सकता है, लेकिन जितना जल्दी लग जाए उतना बेहतर रहेगा।
0: बिल्कुल, ये सब बातें सियतिया जी तो आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरे मन में एक बात और आ रही है कि ये जो टीका है वो लड़कियों का टीका है, यानी कि उनको लगवाया जाता है, तो इसमें पुरुषों की क्या भूमिका होती है?
1: सवाल बहुत अच्छा आप कर रहे हैं भाई, यही तो सबसे अहम बात है। आरजे बाबू, महिलाओं की सेहत सिर्फ महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं होती, इसमें पूरे परिवार की, खासकर पुरुषों की भी उतनी ही जिम्मेदारी होती है।
0: तो सियतिया भैया, जो आप बता रहे हैं इस बात को जरा विस्तार से बताइए।
1: चलिए विस्तार से बात करते हैं, यानी कि डिटेल में बात करते हैं। देखिए, एक पिता की जिम्मेदारी है कि वो अपनी बेटी को समय पर सही जानकारी दे और उसका टीकाकरण करवाए। एक भाई का कर्तव्य है कि वो अपनी बहन को समझाए, उसे डर या अफवाहों से दूर रखे। और एक पति का फर्ज है कि वो अपनी पत्नी की सेहत का ख्याल रखे, उसे हर जरूरी सुविधा और सहयोग दे।
0: बिल्कुल सही बातें कही हैं सेतिया भैया आपने।
1: देखिए भाई, ये एक दूसरे से सीखते हुए हम बातें रख पा रहे हैं आपके सामने और एक रिसर्च के आधार पर बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं तो बात सामने ये आती है कि अगर घर का पुरुष ही पीछे हट जाएगा तो ध्यान नहीं दे पाएगा वो अपने परिवार पर, माँ बहन पर, बेटी पर, तो आधी लड़ाई वहीं वो हार जाएगी। इसलिए पुरुषों की भी भागीदारी बहुत जरूरी है मेरे दोस्त।
0: तो सियतिया भैया, आपके कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ महिला स्वास्थ्य का मामला नहीं है?
1: बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। पूरे जोश के साथ मैं इस बात को डिनाई करता हूँ, इनकार करता हूँ। ये पूरे परिवार का मामला है। जब एक महिला स्वस्थ रहती है तो पूरा परिवार स्वस्थ रहता है, और जब परिवार स्वस्थ होता है तभी गांव मजबूत बनता है।
0: लेकिन सियतिया जी, एक बात है, गांव में तो तरह तरह की बातें चलती रहती हैं। कोई कहता है कि ये टीका लगवाने से लड़कियां कमजोर हो जाती हैं, और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि आगे चलकर वे माँ नहीं बन पाएंगी, माँ बनने में दिक्कत होगी।
1: देखिए आरजे बाबू, यही सबसे बड़ी समस्या है, अधूरी और गलत जानकारी। ये सब जो बातें आपने सुनी है ना, ये सच नहीं है बल्कि अफवाहें हैं, अफवाहें।
0: मतलब इसमें कोई सच्चाई नहीं है?
1: बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सच्चाई नहीं है। मैं आपको एक एक करके साफ कर देता हूँ। पहली बात, लोग कहते हैं कि टीका लगने से कमजोरी आ जाती है, जबकि सच्चाई ये है कि टीका लगने के बाद बस हल्का सा बुखार या हाथ में दर्द हो सकता है, जो एक दो दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं होती।
0: अच्छा, और जो लोग कहते हैं कि इससे आगे चलकर बच्चा पैदा करने में दिक्कत होती है?
1: भाई वो भी पूरी तरह गलत है। इस वैक्सीन का मां बनने की क्षमता से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ एक वायरस से बचने के लिए होता है और कुछ नहीं।
0: और एक बात जो अक्सर लोग कहते हैं, अगर लड़की बिल्कुल ठीक है तो टीका लगवाने की फिर क्या जरूरत है?
1: देखिए, यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। ये टीका बीमारी होने के बाद नहीं बल्कि बीमारी होने से पहले काम करता है। अगर लड़की अभी स्वस्थ है तो वही सबसे सही समय है टीका लगवाने का। जैसे हम बारिश आने से पहले छाता रखते हैं, वैसे ही ये पहले से सुरक्षा देता है। जरा सोचिए आरजे बाबू, अगर एक छोटा सा टीका आपकी बेटी को एक बड़ी और जानलेवा बीमारी से बचा सकता है, तो क्या हमें इंतजार करना चाहिए?
0: नहीं, बिल्कुल नहीं। जब बचाव इतना आसान है तो देर क्यों करें? सियातिया जी, एक बात और बताइए, क्या हमारे गांव में भी लोग इसे लगवा रहे हैं?
1: हाँ हाँ, धीरे धीरे लोग समझने लगे हैं भाई, और आगे भी आ रहे हैं। लेकिन अभी भी कई लोग डर और अफवाहों के कारण पीछे हट जाते हैं। यही वजह है कि आज जैसे कैंप बहुत जरूरी है दोस्तों, ताकि सही जानकारी हर घर तक पहुंचे। जहां जानकारी नहीं पहुंचती, वहां ऐसी कुछ रानी जैसे केस हो जाता है। उसी इलाके के पास एक और गांव था, छोटा पुरवा। यहां रहती थी कमला देवी और उनकी बेटी रानी। रानी भी गुड़िया की ही उम्र की थी, हंसमुख, चंचल और पढ़ाई में अच्छी। जब गांव में HPV टीकाकरण की बात आई तो आशा दीदी यहां भी आई और लोगों को समझाने लगे। उन्होंने कमला देवी से भी कहा, बहन अपनी बेटी को टीका जरूर लगवा लेना। लेकिन कमला देवी के घर का माहौल थोड़ा अलग था। उनके पति महेंद्र इन बातों पर विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने साफ मना कर दिया, ये सब नई नई बातें हैं, हमारे जमाने में कौन सा टीका लगता था, और हम तो ठीक हैं। कमला देवी भी डर गई। गांव में कुछ लोगों ने और बातें फैलाई, इससे लड़की कमजोर हो जाएगी, आगे चलकर बच्चा नहीं होगा। इन अफवाहों के बीच सच की आवाज दब गई। रानी ने एक दिन अपनी मां से पूछा, अम्मा मेरी सहेली गुड़िया टीका लगवाने गई थी, मैं क्यों नहीं जा सकती? कमला देवी के पास जब जवाब नहीं था, उन्होंने बस इतना कहा, बेटा तुम्हारे बाबूजी मना कर रहे हैं। समय बीतता गया, बात वहीं रह गई। सालों बाद जब रानी बड़ी हुई, शादी हुई और एक दिन उसे बार बार कमजोरी और असहजता महसूस होने लगी। शुरू में सबने इसे सामान्य समझा, लेकिन जब हालत बिगड़ने लगी तो उसे शहर के अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने जांच के बाद जो बताया उसने पूरे परिवार को हिला दिया। ये सर्वाइकल कैंसर का मामला है और अब ये काफी आगे बढ़ चुका है। कमला देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें वही दिन याद आया जब आशा दीदी ने समझाया था, जब रानी ने खुद पूछा था। महेंद्र भी चुप हो गए, उनकी आंखों में पछतावा साफ दिख रहा था। उन्होंने धीमे से कहा, अगर उस दिन हमने टीका लगवा लिया होता तो शायद आज ये दिन उन्हें देखना नहीं पड़ता। इलाज शुरू हुआ, लेकिन अब रास्ता मुश्किल था। बार बार अस्पताल के चक्कर भरता खर्च, परिवार की चिंता और दर्द, रानी की बीमारी ने सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं पूरे परिवार को झकझोर दिया। आज कमला देवी हर घर जाकर एक ही बात कहती है, अफवाहों पर मत जाओ, हमने अपनी गलती से बहुत कुछ बड़ा नुकसान देखा है, तुम ऐसा मत करना। उनकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन आवाज में एक विनती, अपनी बेटियों को बचा लो समय रहते हुए।
0: सियतिया भैया, ये तो आपने बहुत ही प्रेरणादायक कहानी सुनाई रानी की, लेकिन जो लोग अभी हमें सुन रहे हैं उनको क्या करना चाहिए?
1: देखिए साहब, उन्हें इंतजार नहीं करना चाहिए, आज ही अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं, आशा दीदी से बात करें और अपनी बेटियों का नाम टीकाकरण के लिए दर्ज करवाएं। और सबसे जरूरी बात, जो सही जानकारी आपने आज सुनी है उसे दूसरों तक पहुंचाएं, अफवाहों को नहीं सच्चाई को फैलाइए।
0: बिल्कुल। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि HPV क्या है, ये कैसे एक गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है, और एक छोटा सा टीका कैसे हमें बड़ी परेशानी से बचा सकता है।
1: और याद रखिए, महिलाओं की सेहत सिर्फ उनकी अपनी जिम्मेदारी नहीं है, ये पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। और सही समय पर लिया गया एक छोटा सा फैसला जिंदगी भर का बड़ा बदलाव ला सकता है।
0: छोटी सी तैयारी, बड़ी बीमारी से बचाव, बेटी का टीका, परिवार का भविष्य सुरक्षित बचाव। और दोस्तों, इसी के साथ समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, लेकिन जाने से पहले हम लेंगे सेहत की शपथ। हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
1: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
0: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
1: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
0: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
1: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें।
0: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
1: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
0: सेहत सही तो लाभ कई। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नए विषय और कुछ अलग जानकारी के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए और सुनते रहिए आपका अपना सामुदायिक रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM। फिलहाल के लिए नमस्कार। नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, आपके शहर ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन। और आज कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में हम बात करेंगे HPV वैक्सीनेशन की, इस अभियान की। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ में हैं डॉक्टर रविंद्र कुमार श्रीवा जी। आप डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर हैं, साथ ही साथ आप ACMO भी हैं गौतम बुद्ध नगर जिले के। तो सर सबसे पहले HPV को समझना चाहेंगे, ये क्या है?
2: ये एक वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी है जो कि हमारा जो यूट्रस होता है उसके शुरुआत के हिस्से पे होती है, जिसे हम सर्विक्स कहते हैं, इसलिए इसे सर्वाइकल कैंसर भी कहा जाता
1: है। अब बात आती है कि इसका जो इन्फेक्शन है, संक्रमण है, वो कैसे फैलता है?
2: इसका संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के जो हमारे सिक्रीशंस होते हैं उनके संपर्क में आने से फैलता है।
1: जो HPV वैक्सीनेशन, वो क्या अभियान है?
2: देखिए, HPV वैक्सीन ये एक नया अभियान है जिसे माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा राजस्थान अजमेर से इसकी शुरुआत की गई थी।
1: अब जैसे आपने बताया कि राजस्थान के जिला अजमेर से इस अभियान की शुरुआत हो गई, तो HPV जो वैक्सीनेशन है वो किस तरह से अपने जिले में किया जा रहा है?
2: 45 जिले ऐसे थे जहाँ पे पहले से ही MR अभियान चालू था। हमारा जिला गौतम बुद्ध नगर है, यहाँ पर भी MR अभियान चल रहा था। उसके बाद अब हम इस अभियान को अपने यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं। HPV वैक्सीनेशन की जो ट्रेनिंग्स हैं हमारे जिले में चालू हो चुकी हैं, जहाँ पर सभी ब्लॉक के चिकित्सा अधीक्षक और प्रभारी चिकित्सा अधिकारी तथा वहाँ के अन्य कर्मी जिनका अहम रोल इस अभियान में होना है तथा जो हमारे बेसलाइन वर्कर्स हैं उन्हें ट्रेनिंग दी जा चुकी है।
1: तो ये तो बात रही कि क्या कुछ इस अभियान के अंतर्गत आप तैयारी कर रहे हैं। अब हम आपसे जानना चाहेंगे सर, क्या इस अभियान के लिए कोई जागरूकता कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है?
2: हाँ बिल्कुल, जागरूकता अभियान जो है हमारे सभी अर्बन PSC और CSCs के तहत जितने हमारे बेसलाइन कर्मचारी हैं जैसे आशा, ANM, आंगनवाड़ी, इनके द्वारा चलाया जा रहा है। इनके द्वारा एक सर्वे भी किया जा रहा है क्योंकि जो टारगेट पॉपुलेशन है वो टोटल पॉपुलेशन का लगभग 1% ऐसी बच्चियां जिनकी उम्र 14 वर्ष होगी, उसका सर्वे किया जा रहा है।
1: इस HPV वैक्सीनेशन को सफल बनाने के लिए क्या कुछ रणनीति आपके द्वारा बनाई जा रही है?
2: देखिए, सबसे पहले तो हमें यही पता होना आवश्यक है कि हमारा टारगेट पॉपुलेशन कितनी हो रहेगी, कितनी उम्र के बच्चों को हम लगाएंगे, किस किस को हम लगाएंगे उसका आइडेंटिफिकेशन चल रहा है तथा किस किस को नहीं लगाया जाना है ये हमें अपनी टीम को बताना बड़ा आवश्यक है तथा कहाँ कहाँ हमें टीकाकरण कराना है ये हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ऐसी फैसिलिटीज को ट्रेनिंग दी जा रही है।
1: तो ये तो बात रही कि जो इस अभियान को सफल बनाने के लिए आपके द्वारा जो रणनीतियां तैयार की जा रही हैं उसके बारे में। अब बात आती है सर कि इस HPV वैक्सीनेशन में कौन सी वैक्सीन लगाई जाए?
2: देखिए, हमारे इस अभियान के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा गार्डेसिल 4 वैक्सीन को चुना गया है जिसके अंदर 4 क्वाड्रोवेलेंट होते हैं, 6, 11, 16 और 18। हमारे देश में यह देखा गया है कि 16 और 18 से ही इन्फेक्शन फैल रहा है, इसलिए इस वैक्सीन को चुना गया है। यह सिंगल डोज वैक्सीन है, वायल मिलेगी और एक ही डोज लगेगी। ये लाभार्थी के लेफ्ट ऊपरी हिस्से पर लगाई जाएगी और मसल्स के अंदर ये टीका लगेगा।
1: तो अपने जिले गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो HPV जो वैक्सीनेशन है वो कहाँ कहाँ पर होगा?
2: देखिए, इसके लिए ऐसी संस्थाओं को चुनना है जहाँ पर 24 घंटे स्वास्थ्य सुविधाएं हों, डॉक्टर्स अवेलेबल हों। तो ऐसी हमारी 9 जगह हमने चुनी है। सबसे पहले हमने लिया है अपना जिला अस्पताल, उसके बाद गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जिम्स और PGICH जहाँ पर 24 घंटे सेवाएं दी जाती हैं, तथा जो रूरल एरियाज हैं वहाँ हमारी 4 CSC हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उन्हें लिया है जहाँ पर 24 घंटे स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती हैं इस प्रकार से। और 2 हमारी अर्बन CSCs हैं, एक बादलपुर में और एक भंगेल में। तो इस प्रकार से हमारे पास टोटल 9 जगह चुनी गई हैं जिन पर टीकाकरण चालू होगा।
0: सर, HPV वैक्सीनेशन अभियान में जो हमारी आशा बहनें या ANM NG आंगनबाड़ी इनका भी कुछ योगदान रहेगा?
2: हाँ बिल्कुल, देखिए इन लोगों के बिना तो हमारा कोई भी अभियान सफल हो ही नहीं सकता है। देखिए एक टीम के साथ 4 सदस्य होंगे, एक पहला टीकाकर्मी, एक दूसरा जो बच्चियां आएंगी उनकी एज वेरीफाई करने के लिए, तथा एक कंसेंट को वेरीफाई करने के लिए एक वेरीफायर की आवश्यकता होगी, इसके अलावा एक मोबिलाइजर की और एक वॉलेंटियर। इसमें हमारी आशा बहन जी, आंगनवाड़ी, कुछ वॉलेंटियर्स, स्टाफ नर्स और हमारी ANM सभी का अहम योगदान रहेगा।
0: बिल्कुल सर, अब जिन लड़कियों का टीकाकरण किया जाएगा उन तक सूचना कैसे पहुंचाई जाएगी?
2: देखिए जिस प्रकार से हमारा कोविड वैक्सीनेशन हुआ था, पहले रजिस्ट्रेशन करते थे तो UIN पोर्टल है, उस पर आपको पहले से रजिस्ट्रेशन करना होगा। जब आप रजिस्टर कर देंगे तो उस पर डेट वगैरह सब आ जाएगी, आप उस नियत स्थान पर पहुंच करके टीका लगवा सकते हैं। लेकिन अगर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता या करना नहीं आता है तो भी हमारे 9 सेंटर्स में से जो भी उनके नज़दीक होगा वहां पर पहुंचकर अपना एज प्रूफ दिखाना होगा, और जिस बच्ची का 14वां बर्थडे मनाया जा चुका होगा लेकिन 15वां बर्थडे अभी उसने नहीं मनाया होगा, उसको देखते हुए उन्हें रजिस्टर कर लिया जाएगा और अपने माँ बाप के मोबाइल नंबर पर उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, जिससे कि हमें कंसेंट मिल सके कि वो अपनी बच्ची को ये HPV वैक्सीन लगाने के लिए तैयार हैं। और अगर मोबाइल नहीं होगा तो इसके लिए सरकार की तरफ से ये भी व्यवस्था रहेगी कि वो लिखित में भी अपना कंसेंट दे, लेकिन माँ या पिताजी को इस सेंटर पर आना होगा।
0: सर, कार्यक्रम के आखिर में हम आपसे जानना चाहेंगे कि रेडियो के माध्यम से आप हमारे जो सुनने वाले हैं, समुदाय के लोग हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे?
2: देखिए रेडियो ये बहुत पुराना और बहुत अच्छा साधन है, रेडियो के द्वारा सभी तक बहुत ही आसानी से सारे हमारे जितने मैसेजेस हैं वो पहुँचते हैं, और HPV वैक्सीनेशन एक अहम वैक्सीनेशन होने वाला है, क्योंकि हेपेटो पेपिलोमा वायरस के द्वारा या सर्वाइकल कैंसर से लगभग 74,000 के करीब डेथ्स हो रही हैं और इनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सभी 14 वर्ष के बच्चों को टीकाकरण कराना आवश्यक है और सभी लगवाएं।
0: बिल्कुल सर, HPV वैक्सीनेशन के बारे में, इस अभियान के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी सर आपने आज सुनो शारदा रेडियो के माध्यम से हमारे जो सुनने वाले हैं, समुदाय के लोग हैं, उन तक पहुंचाई। जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। मैंने टीवी को बहुत करीब से देखा है और हराया भी है। सही सुना आपने, बड़े धैर्य की लड़ाई थी वो। पहले मैंने टीबी के लक्षण सही पहचाने, फिर डॉक्टर की सलाह लेकर टीबी का कोर्स पूरा किया और टीबी हार गया। इलाज के दौरान थोड़ा राहत महसूस करते ही कोर्स अधूरा ना छोड़ दीजिएगा, बस इसी गलती से ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो सकता है आपको, इसीलिए टीबी का कोर्स पूरा कीजिए, यही है इसका पक्का इलाज। और सुनिए, टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। मेरी तरह आप भी पूरा इलाज कीजिए और टीबी पे जीत पाइए। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in। नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। भाई जो कहते हैं सच कहते हैं कि जान है तो जहान है, सारी मुश्किलें आसान है, इसलिए हर एक मुश्किल को आसान बनाने के लिए हम आपके साथ जुट जाते हैं, अच्छी अच्छी हेल्थ की बातें आप तक पहुँचा रहे होते हैं। कोरोना का समय हम सब ने देखा और जहाँ ऑक्सीजन की कमी की वजह से मारा मारी थी, अगर ये ऑक्सीजन हमें क्षण भर न मिले तो सच बात तो ये है कि जीवन समाप्त हो जाएगा। इस ऑक्सीजन का किस तरीके से हम ख्याल रख सकते हैं, किस तरीके से नेचर का ख्याल रख सकते हैं, कुछ ऐसी ही बातें, यानी कि शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर अगर आप 5 फल और सब्जियां खाएंगे तो शरीर को भरपूर रूप से मिलेगी आपको एनर्जी। जी हाँ, शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं, इसलिए ऑक्सीजन का स्तर बनाए रखना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं कि शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को कैसे कंट्रोल रखें। लेकिन इससे हटकर एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप पौधे लगाएंगे, किसी पौधे को सींचेंगे, तो निश्चित तौर पर वो एक बड़ा वटवृक्ष का रूप धारण कर लेगा जो कि आगे चलकर आपको ऑक्सीजन देगा ही देगा। इसलिए पर्यावरण का ख्याल रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं तो बात सामने आती है ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने वाले कुछ फूड्स के बारे में जानते हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जिस तरह पानी की जरूरत होती है, उसी तरह ऑक्सीजन भी बहुत जरूरी है। ये कोशिकाओं को बनाने के साथ साथ उनके बेहतर कार्यों में मददगार होती है। ऑक्सीजन हवा के जरिए शरीर को प्राप्त होता है। हम में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनके शरीर में ऑक्सीजन लेवल काफी कम होता है। ऐसे में ऑक्सीजन के स्तर को कंट्रोल करने के लिए आपको कुछ प्रयास की जरूरत है। शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को कंट्रोल करने के लिए आप कुछ खाद्य पदार्थों की मदद ले सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे कुछ खाद्य पदार्थों के बारे में। पालक से करें ऑक्सीजन की कमी दूर। कैसे, जानते हैं। पालक स्वास्थ्य के लिए काफी हेल्दी होता है। ये न सिर्फ शरीर में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने में आपकी मदद कर सकता है, बल्कि इससे आप शरीर में आयरन की कमी को भी दूर कर सकते हैं। जी हाँ, आयरन की मदद से शरीर में ऑक्सीजन का प्रभाव बेहतर होता है, जिससे आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी दूर होती है। इसके साथ ही ये आपके शरीर की मांसपेशियों की मजबूती को भी बढ़ावा देता है। अब बात करते हैं शकरगंध से करें ऑक्सीजन की कमी दूर। कैसे, शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर आप शकरगंध का सेवन कर सकते हैं। शकरगंध एंटीऑक्सीडेंट्स का काफी अच्छा स्रोत है। इसकी मदद से आप शरीर के अंगों को सुरक्षित रख सकते हैं। इसके अलावा ये मैग्नीशियम और पोटेशियम का भी अच्छा स्रोत होता है, जो शरीर में ऑक्सीजन की कमी से होने वाले नुकसान को कम कर सकता है। बात ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाए एवोकाडो, यानी शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने में एवोकाडो भी काफी हेल्दी माना जाता है। इससे ब्रेन में ऑक्सीजन का प्रवाह सही तरीके से होता है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन के स्तर में सुधार ला सकते हैं। बात नींबू की। नींबू है असरदार। नींबू अगर आप शिकंजी में मिलाकर पीते हैं तो जाहिर सी बात है नींबू यूं कहें कि शिकंजी के बगैर अधूरी है। नींबू अगर आप सलाद में डालते हैं तो सलाद स्वादिष्ट हो जाता है। नींबू पानी पीते हैं तो वो आपकी सेहत के लिए बड़ा ही लाभदायक है। शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर नींबू के रस का सेवन करें। नींबू के रस में मौजूद गुड़ शरीर में ऑक्सीजन लेवल को कंट्रोल करने में असरदार होता है। इसके साथ ही इसमें मौजूद पोटेशियम आपके माइंड को अलर्ट रखने में असरदार होता है। बात तरबूज की। जी हाँ, तरबूज गर्मी के सीजन में हर रोज अगर आप खाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको इसका फायदा मिलेगा, और गर्मी के मौसम में बहुत तादाद में देखा जाता है तरबूज। जी हाँ, तरबूज से ऑक्सीजन की कमी से राहत मिलती है। कैसे, जानते हैं। शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने के लिए आप तरबूज का सेवन कर सकते हैं। दरअसल तरबूज में अल्कालाइन की अधिकता होती है, जो आपके शरीर के पीएच लेवल को बनाए रखने में मददगार साबित हो सकते हैं। इसके अलावा तरबूज में बीटा कैरोटीन और लाइकोपिन मौजूद होता है, जो शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को बनाए रखने में असरदार है। तो कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही है कि अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, और हाँ, नेचर का ख्याल रखें। नेचर का ख्याल रखेंगे तो भरपूर मात्रा में आपको ऑक्सीजन मिलती रहेगी। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।
1: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
1: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
4: जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
5: इस अभियान का आह्वान, यदि है आपको टीबी के लक्षण तो जल्द जांच से ही होगा सबसे तेज समाधान। टीबी होने पर जल्द जांच से उपचार में आती है तेजी और गंभीर बीमारी का खतरा होता है कम। सुरक्षित होता है आपका परिवार और अन्य करीबी जन। कुछ समूहों में टीबी का खतरा अधिक होता है, जैसे वे लोग जिन्हें पिछले 5 वर्ष में टीबी हुआ हो, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु, धूम्रपान और शराब का सेवन करने वाले, कुपोषित, टीबी रोगी के साथ रहते हों, मधुमेह रोगी, HIV से पीड़ित लोग, तो टीबी के लक्षण होने पर अपने नजदीकी सरकारी या निजी अस्पताल या आयुष्मान आरोग्य मंदिर में निःशुल्क जाँच और उपचार पाएं। आइए हम सब साथ मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं।
6: टीबी फ्री इंडिया बनाने में सक्रिय भूमिका निभाएं।
5: डाउनलोड करें टीबी आरोग्य साथी ऐप, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
7: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है।

0: कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: अरे सुनीता कैसे बा मुनिया?
2: नमस्ते आशा दीदी,
1: सब ठीक बा?
2: साफ सफाई के ध्यान रखत आरू ना?
1: जी दीदी,
2: जैसे रहुआ कहल रहनी हर द्वार के साफ सफाई की जिम्मेदारी लेनी हम। जहाँ कहीं भी पानी जमा देखे नी ओकेरा के तुरंत साफ करें, जैसे कि पानी के ड्रम, कूलर, फ्रिज, ब्रेक
3: और आसपास कहूं भी टायर।

इन गुंडा मलेरिया दिमागी बुखार से बचे तो बेटा। बस अमली हर इतवार के साफ सफाई की जिम्मेदारी, मिलके पड़क जा मच्छर वन पर भारी।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। मैं आज हम बात करने जा रहे हैं हल्दी, मेथी और सौंठ का एक साथ अगर आप सेवन करते हैं तो शरीर की 5 समस्याओं से तुरंत आपको छुटकारा मिल जाएगा। जी हाँ, हल्दी, मेथी और अदरक के पाउडर का मिश्रण शरीर के लिए फायदेमंद हो सकता है। कैसे, आइए जानते हैं इसके कुछ लाभ के बारे में विस्तार से बात करते हैं। तो बात सामने आती है कि हल्दी, मेथी और अदरक के पाउडर का मिश्रण के क्या क्या फायदे हैं। तो एक्सपर्ट बताते हैं कि हमारे देश में मसालों का भंडार है। घर की रसोई हो या फिर किसी ढाबे और रेस्टोरेंट की रसोई, हर जगह आपको मसालों की खुशबू आसानी से मिल जाएगी। मसालों का कई मिश्रण ऐसा होता है जो आपके शरीर की बीमारियों को दूर कर सकते हैं। इन मिश्रण में मेथी, हल्दी और अदरक यानी सौंठ का मिश्रण है। मेथी, अदरक और हल्दी के मिश्रण से कई परेशानियों को दूर किया जा सकता है। अब जानते हैं कि अदरक, मेथी और हल्दी से सेहत को होने वाले फायदे क्या क्या हैं। बात सामने आती है कि उल्टी और दस्त में किस तरीके से आराम करता है। अगर आपको उल्टी या फिर जी मिचलाने जैसा अनुभव हो रहा है तो ऐसी स्थिति में अदरक, मेथी और हल्दी का मिश्रण फायदेमंद हो सकता है। साथ ही इससे दस्त की परेशानी को कम करने में मदद मिल सकती है। अब बात करते हैं कि हड्डियों को मजबूत कैसे बनाएं। अदरक, मेथी और हल्दी का मिश्रण प्रोटीन, कैल्शियम, जिंक और कई विटामिन का संयोजन होता है जो आपकी हड्डियों की मजबूती को बढ़ावा दे सकता है। नियमित रूप से इस मिश्रण के सेवन से हड्डियों को विकास और मजबूती में मदद मिल सकती है। बात जोड़ों के दर्द में किस तरीके से आराम मिलता है, तो हल्दी, मेथी और अदरक में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होता है जो शरीर की सूजन को कम कर सकता है, साथ ही जोड़ों में होने वाले दर्द से आराम दिला सकता है। इन मसालों की तासीर भी गर्म होती है जिससे मांसपेशियों को रिलैक्स महसूस होता है। अगर आप अपने जोड़ों के दर्द से परेशान हैं, तो हल्दी, अदरक और मेथी के मिश्रण का सेवन जरूर करें। बात इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट करें। शरीर की कमजोर इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हल्दी, अदरक और मेथी के मिश्रण का सेवन कर सकते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर रूप से मौजूद होते हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। इससे संक्रमण और वायरल बीमारियों से दूर करने में मदद मिल सकती है। बात कफ की परेशानी को कैसे कम करें। तो जिन लोगों को कफ की परेशानी होती है उन लोगों के लिए अदरक, हल्दी और मेथी का मिश्रण फायदेमंद होता है। दरअसल इन मसालों का मिश्रण फायदेमंद होता है जिससे वात कफ की परेशानी कम हो सकती है, साथ ही अन्य बीमारियां भी दूर होती हैं। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।
2: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
3: The world is here.

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की में। आज हम बात करने वाले हैं कि विटामिन B12 की कमी से क्या क्या दिक्कतें परेशानियां हमारे सामने आ सकती हैं। बात करते हैं विटामिन B12 की कमी से शरीर और ब्रेन हो सकता है कमजोर। ये 5 फूड्स खाकर इस कमी को आप पूरा कर सकते हैं। विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने की जरूरत पड़ती है जो विटामिन B12 से भरपूर हों। जाहिर सी बात है कि इसके बारे में कुछ रोज पहले हमने बातें की थी, लेकिन अब हम इससे कुछ आगे बढ़ते हैं तो बात निकल कर ये सामने आती है कि विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए कुछ फूड्स बताए गए, वो अगर आप खाते हैं तो निश्चित तौर पर इसका फायदा आपको आपकी सेहत में देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और विस्तार से बात करते हैं। विटामिन B12 की कमी की समस्या काफी कॉमन है, हालांकि कई बार लोग इसे अधिक गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विटामिन B12 की कमी हो जाने के बाद मसल्स में कमजोरी और जोड़ों में दर्द जैसी परेशानियां हो सकती हैं? विटामिन B12 DNA बनाने का काम करता है, जो ये नर्वस सिस्टम को काम करने में भी सहायता करता है। हमारा शरीर विटामिन B12 का उत्पादन खुद नहीं कर सकता, इसीलिए इसकी कमी होने की संभावना भी बढ़ जाती है। विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने की जरूरत पड़ती है जो विटामिन B12 से भरपूर हों। हम जानेंगे ऐसी फूड्स के बारे में जिनके सेवन से पर्याप्त मात्रा में विटामिन B12 पाया जा सकता है। बात करते हैं विटामिन B की कमी क्यों होती है, ये भी जानना समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर प्रिया पालन के अनुसार उम्र बढ़ने के साथ लोगों के शरीर में विटामिन B12 की कमी होने की आशंका भी बढ़ जाती है। मसल्स में कमजोरी, हाथ पैर सुन्न हो जाना, एनीमिया और कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। विटामिन B12 की पर्याप्त मात्रा के लिए डॉक्टर पायल कुछ विशेष फूड्स के सेवन की सलाह देते हैं। चलिए जानते हैं, सालमन मछली की बात करते हैं। नॉन वेजिटेरियन फूड्स में विटामिन B12 पाया जाता है, इसके लिए आप सालमन और टूना मछली का सेवन कर सकते हैं। बात करते हैं हरी पत्तेदार सब्जियों के विषय में। विटामिन B12 से भरपूर फूड्स में हरी पत्तेदार सब्जियां और कई फलों का नाम भी शामिल है। केला, पालक और चौलाई जैसी सब्जियों का सेवन करने से आपको विटामिन B12 प्राप्त हो सकता है। वहीं सीजनल फ्रूट्स का सेवन भी करने से विटामिन B12 मिल सकता है। लो फैट पनीर के विषय में जानते हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दही, पनीर, चीज और दूध का सेवन करने से विटामिन B12 की अच्छी मात्रा प्राप्त हो सकती है। डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन उन लोगों के लिए और भी महत्वपूर्ण है जो नॉन वेज नहीं खाते। दूध उन शाकाहारी फूड्स में से एक है जो विटामिन B12 से समृद्ध होते हैं, साथ ही इससे प्रोटीन और कैल्शियम भी प्राप्त हो सकता है। बात करते हैं मशरूम की। कैल्शियम और विटामिन डी के अलावा विटामिन B12 की अच्छी मात्रा मशरूम्स में पाई जाती है। वहीं मशरूम में प्रोटीन और कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। आशा करता हूं ये जानकारी का आपने लाभ उठाया होगा। ऐसी खास जानकारी सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

किसान मित्रों नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर, लेकर हाजिर हूं आपका वही मनपसंद कार्यक्रम खेत खलियान लोक संगीत के साथ। किसान मित्रों, इस दुनिया में इंसान ही इंसान के काम आता है, ये आप बखूबी जानते हैं और ये अनुभव भी आपने किया होगा, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। आपसी संबंधों, प्रेम और सद्भाव का मानव जीवन में काफी महत्व है। आप दूसरों से जैसा व्यवहार करेंगे वैसी ही छवि सामने वाले के मन में आपके प्रति बनेगी, इसीलिए दूसरों से प्रेम और सद्भावपूर्ण व्यवहार करें, जिससे कि आपकी छवि सुशील और संस्कारी मनुष्य की बने। हम किसी से जब भी मिलें तो मुस्कुराकर ही सामने वाले का स्वागत करें। मुस्कुराहट से सामने वाले पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और वो हमारी तरफ आकर्षित होता है और वो हमसे बात करना चाहता है। आपस में बातचीत करने के दौरान व्यक्ति की वाणी में मिठास होना चाहिए। मधुर और शिष्ट आवाज से सामने वाला भी प्रभावित होता है। जरा सोचिए कि हम इस संसार में आए हैं तो क्या साथ लेकर आए थे और क्या साथ लेकर जाएंगे। सब का सब यहीं पर रह जाएगा। अतीत से अब तक हमने देखा है कि कई राजा और रंक आए और सब के सब धूल में मिल गए। कोई कुछ लेकर गया है क्या? और दूसरी तरफ एक और बात है, किसान मित्रों के जिन जिन का नाम जीवित है तो वो उनके श्रेष्ठ कर्मों के कारण ही जीवित है, ना कि उनकी धन दौलत के कारण। समाज घर परिवार में सुख दुख का आना जाना लगा रहता है। सुख यानी जन्मदिन, शादी ब्याह और खुशी के किसी भी पल में तो सभी चले आते जाते रहते हैं। किसान मित्रों, समाज और घर परिवार में सुख दुख का आना जाना लगा रहता है। सुख यानी जन्मदिन, शादी ब्याह और खुशी का कोई भी अवसर, तो इन सब में तो सभी आते जाते रहते हैं, पर व्यक्ति के दुख में सम्मिलित होना भी एक अच्छे व्यक्ति की पहचान है और सामाजिकता के नाते हमें व्यक्ति का दुख बांटना चाहिए। किसी के दुख में सम्मिलित होकर दुखी परिवार को सांत्वना देना ये कहना है कि चिंता ना करें, ईश्वर और हम आपके साथ हैं। तो जो दुखी परिवार होता है ना, उसको बहुत अपनेपन का एहसास होता है और उसका जो दुख है वो बहुत कम हो जाता है। इस प्रकार हम आपसी प्रेम और सद्भाव से हर किसी के दिल में अपनी जगह बना सकते हैं। और आइए अब कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं एक उपदेश। कलाकार हैं योगेंद्र निमचाना।

किसान मित्रों, अभी आप योगेंद्र निमचाना से ये उपदेश सुन रहे थे। किसान मित्रों, अक्सर आपके सामने एक समस्या जरूर आती होगी। कोई भी फसल आप करते हैं तो उसके कहीं ना कहीं अवशेष बच जाते हैं। अब उसका प्रबंधन है वो कैसे किया जाए। कम फसल होती है तो उसका तो ऐसा होता है कि हमारे किसान भाई बड़ी आसानी के साथ तो उसका प्रबंधन कर देते हैं, खाद के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं, और भी कई तरीके हैं उस तरह से उसका प्रबंधन कर देते हैं। लेकिन आपके पास जमीन ज्यादा है, यानी कि आप फसल ज्यादा जमीन पर करते हैं, और उसके जब फसल अवशेष होते हैं तो उनका प्रबंधन करना एक सिरदर्द आपके लिए बन जाता है कि आपको उस फसल का निपटारा भी करना है, प्रबंधन भी करना है, और साथ ही साथ अगली जो फसल है उसकी तैयारी भी करनी है, तो एक बड़ी समस्या बन जाती है। तो ऐसे में आप आधुनिक तकनीकों का सहारा लेकर के फसलों के जो अवशेष हैं उनका प्रबंधन आसानी से कर सकते हैं। तो उन्हीं कुछ तकनीकों के बारे में हम आज आपको बताएंगे कि जो तकनीकी हैं उनका इस्तेमाल करके आप किस तरह से अपनी फसलों के अवशेष का प्रबंधन कर सकते हैं। किसान मित्रों, इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी कृषि अवशेष प्रबंधन के लिए कई समाधान प्रदान करती है, जिसमें रोटरी डिस्क ड्रिल जैसी मशीनों का उपयोग शामिल है, जो फसल अवशेषों को जलाने के बजाय सीधे बीज बोने में मदद करती है, जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है और प्रदूषण कम होता है। इसके अलावा मल्चिंग डिकम्पोजर का उपयोग और जैव ऊर्जा रूपांतरण प्रौद्योगिकियां जैसे गैसीकरण और ब्रिकेटिंग भी अवशेषों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने में मदद करती हैं। अब बात आती है कि जो फसल अवशेषों के प्रबंधन के लिए, निस्तारण के लिए जो आधुनिक तकनीकियां हैं, मशीनें हैं, वो कहां पर मिलती हैं, कैसे आप इनको ले सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये निकल के आती है कि जो मशीनें वो तो बहुत सारी महंगी हो गई, और हर किसी किसान भाई के बस में ये बात नहीं है कि वो उन मशीनों को खरीद पाए। अगर हाँ, किसान भाई खरीदना चाहते हैं तो उनके लिए सरकार की तरफ से सब्सिडी की योजना भी चलाई जा रही है, जिसका वो लाभ ले सकते हैं। और पराली प्रबंधन है या आपकी जो फसलों के अवशेषों का प्रबंधन करने के लिए जो भी मशीनें आ रही हैं उनकी पहले ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद आप इनको खरीद सकते हैं। अब जानकारी कहाँ पे मिले कि इनकी ट्रेनिंग कैसे होती है, कहाँ पे होती है, और कैसे इन मशीनों को खरीदा जाए, तो सबसे अच्छा इसका उपाय यही है कि आपके पास जो भी कृषि विज्ञान केंद्र है वहां पर जाकर के आप संपर्क करिए। अब बात आती है वो हमारे किसान बहन भाई जिनके पास इतना पैसा नहीं है, तो वो कैसे इन आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल अपने फसलों के अवशेष प्रबंधन में करें। तो उसके लिए सरकार ने कस्टम हायर सेंटर बनाए हुए हैं, जहां पर आप कोई भी कृषि उपकरण जाकर के ले सकते हैं, और उसका इस्तेमाल करने के बाद आप वहां पर उसको जमा कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कृषि कार्य कर सकते हैं और अपनी फसलों के अवशेषों का प्रबंधन कर सकते हैं। किसान मित्रों, आगे आपको ये भी बताएंगे कि फसलों के अवशेष प्रबंधन से क्या फायदे हैं, क्यों करना चाहिए, तो इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं एक रागनी कलाकार हैं, प्रियंका चौधरी, और किस्सा रहेगा गोपी चंद का।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे प्रियंका चौधरी से ये रागनी और किस्सा था गोपी चंद का। और इस रागनी से पहले हम बात कर रहे थे कि फसलों के अवशेष का प्रबंधन क्यों करना चाहिए और इससे हमें क्या लाभ है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम फसलों के अवशेष का प्रबंधन नहीं करते हैं, अगली फसल की जल्दबाजी में हम उनको जला देते हैं, तो उससे हमारा जो वातावरण है वो प्रदूषित होता है और उसका प्रभाव फिर हमारी फसलों पर, हमारे स्वास्थ्य पर और पता नहीं कितनी जगह पर फैलता है। तो तकनीकी तरीके से हम अपनी फसलों के अवशेषों का प्रबंधन करते हैं तो हम पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचा लेते हैं। दूसरी बात यह है कि मान लीजिए धान की पराली है, उसका प्रबंधन आप कर रहे हैं तो उसको आप चारे के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे आजकल चीजें बनाई जा रही हैं धान की पराली से, तो वहां पर बेच करके आप पैसा भी कमा सकते हैं, तो आपका ये भी फायदा हो जाएगा। और फसल अवशेषों का खाद के रूप में इस्तेमाल हम जब करते हैं तो हमारे जो खेत की मिट्टी है उसकी उपजाऊ क्षमता बढ़ती है। और इसके अलावा कृषि अवशेषों को जैव ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो किसान मित्रों, कहने का मतलब यही है कि जब आप आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल अपने फसल के अवशेषों के प्रबंधन में करते हैं तो आपको लाभ ही लाभ है। और इस तकनीक में जो भी मशीनें हैं या कृषि यंत्र हैं जो उपयोग में लाए जाते हैं फसलों के अवशेष प्रबंधन में, तो उनकी सारी की सारी जानकारी आप अपने नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर के ले सकते हैं। तो किसान मित्रों, ये तो बात रही आधुनिक तकनीकों के माध्यम से फसलों के अवशेष प्रबंधन की। और आइए अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं एक रागनी। कलाकार हैं ज्ञानेंद्र सरधाना और टीना पटौदी। किस्सा रहेगा जानी चोर का।

किसान मित्रों, इसी रागनी के साथ आज का खेत खलियान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सभी किसान मित्रों को नमस्कार।

0: शिशु के 6 महीने के होने के बाद।
1: ठान लो ये बात,
0: 5 खाद्य समूहों का मेल
1: कर देगा सभी बीमारियों को फेल।
0: जो ना खिलाया बच्चे को पौष्टिक आहार,
1: बच्चा हो सकता है बीमार।
0: शिशु को 2 से 3 चम्मच मसला हुआ खाना खिलाएं।
1: शारीरिक और मानसिक रूप से अपने बच्चे को स्वस्थ बनाएं।
2: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स हैं, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
4: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। स्मार्ट के साथ मिलकर एक विशेष कार्यक्रम हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसका शीर्षक है हिंसा को नो। इस संबंध में बहुत सारी बातें आती हैं, मसलन भ्रूण हत्या, बचपन का हनन, बाल उम्र में शारीरिक दर्द, कानूनी सलाह, भेदभाव, समान दर्जा, शिक्षा से वंचित, घर और पास पड़ोस के दायरे, बदलती शारीरिक संरचना, इंटरनेट का जाल, दहेज प्रथा, वैवाहिक बलात्कार, शारीरिक हिंसा, मानसिक बलात्कार। तो कहने का आशय यही है कि समाज में जितनी भी कुरूतियां हैं, उन कुरूतियों को दूर करने का एक माध्यम महिला सशक्तिकरण पर आधारित ये विशेष कार्यक्रम, जिसका नाम है हिंसा को नो, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसमें अब हमें सहयोग मिला है रेडियो गुंजन 91.2 धर्मशाला का। हम उनका दिल से आभार व्यक्त करते हैं। और ऐसे विशेष कार्यक्रम हमारे स्टेशन पर जो बनाए गए हैं, दूसरे स्टेशन समय दर समय प्रसारित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं ये विशेष कार्यक्रम सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर।
5: आप सबका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी, और श्रोताओं हाजिर हो गई हूं कार्यक्रम हिंसा को नो लेकर। जी हां, और इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं उन महिलाओं की कहानी जो अपने जीवन में संघर्ष कर रही हैं और उस संघर्ष में जीत हासिल करके आगे बढ़ रही हैं। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि महिलाओं को सशक्त किया जा सके। और श्रोताओं, ये कार्यक्रम हिंसा को नो चलाया जा रहा है स्मार्ट संस्था के सहयोग से, और ये संस्था नई दिल्ली में स्थित है और महिलाओं के अधिकारों के लिए कार्य कर रही है। इसी के साथ अब वक्त हो गया है कार्यक्रम में आगे बढ़ने का, यानी आज हम सुनेंगे मधु की कहानी का दूसरा अंक। और आज इस अंक में जानेंगे कि मधु के जीवन में किस तरह नया मोड़ आएगा और वो किस तरह अपने परिवार को समझा पाएगी कि बेटा और बेटी एक समान है। और बेटा और बेटी कोई भी आए जीवन में सिर्फ खुशियां ही देते हैं, तो हमें ये नहीं सोचना है कि सिर्फ लड़का ही हो और लड़की ना हो। तो इस विषय में, इस कहानी पर आज डालते हैं पूरी तरह से रोशनी और जानते हैं कि क्या नया मोड़ आता है और किस तरह से कहानी अपने अंजाम तक पहुंचती है। अब ये अंजाम खुशी का है या गम का होगा, ये तो कहानी के अंत में ही पता चलेगा। तो ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, यानी रेडियो गुंजन के साथ। गूंज अपने पर।

0: देखिए डॉक्टर साहिबा, हम आपका भाषण सुनने नहीं आए हैं। ना जाने क्या उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा रही हो मेरे बेटे को। सीधी सीधी बताओ, बच्चे को गिराओगी या नहीं? शहर में और भी बहुत सारे डॉक्टर हैं।
1: जी हाँ बिल्कुल, बहुत सारे डॉक्टर हैं और बहुत सारे पुलिस स्टेशन भी हैं।
0: क्या क्या पुलिस स्टेशन, क्या मतलब है तुम्हारा?
1: अरे एक तो आप गैर कानूनी काम करते हो, फिर मुझसे ये भी पूछते हो कि क्या मतलब है मेरा।
0: अरे डॉक्टर साहिबा, कौन सा गैर कानूनी काम किया हमने?
1: अब इतने भी अनजान मत बनिए, क्या आपको नहीं पता बच्चे का जेंडर पता करना गैर कानूनी है?
0: हम तो ये सब केवल इसलिए कर रहे हैं कि हम दूसरा बच्चा नहीं चाहते।
1: माताजी, आप सबकी बातें रिकॉर्ड हो चुकी हैं, इसलिए बात बदलने की कोशिश मत कीजिए अब।
0: अरे तुम डॉक्टर हो या कोई षड्यंत्रकारी, ऐसे कोई बातें रिकॉर्ड करता है क्या?
1: जी नहीं, मैं तो डॉक्टर ही हूँ, पर क्या करूँ, मेरा पेशा ही कुछ ऐसा है, ये सब करना पड़ता है। और हाँ एक बात और बता दूँ, इस एरिया की DCP मेरी छोटी बहन है, तो अब आप चक्की पीसने के लिए तो तैयार हो जाइए।
0: अरे अरे डॉक्टरनी साहिबा, देखो डॉक्टरनी जी, आप मेरी बेटी की उम्र की है, मैं ऐसा तो कुछ नहीं कर रही जो दुनिया नहीं करती। ये मैं इसलिए नहीं कर रही कि मधु मेरी बहू है। सच मानो, अगर मेरी बेटी भी ऐसी परिस्थिति में होती तो मैं उसको भी यही करने को कहती। भगवान जानता है मैंने मधु को हमेशा अपनी बेटी की तरह रखा है, चाहे तुम मधु को पूछ लो।
1: माँ जी ये बात तो मैं जानती हूँ, और मधु मुझे ये बात बता भी चुकी है, और वह आपकी और राकेश जी की काफी इज्जत भी करती है। पर माँ जी अब एक और सच सुन लीजिए, मैं और मधु बचपन की सहेलियाँ हैं। सहेलियाँ क्या, बस बहने ही समझिए। किस्मत ने हमें कुछ वक्त के लिए दूर कर दिया था, पर आज अचानक हम मिल गए हैं, और सच पूछिए तो इस बात के लिए मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ।
2: तो क्या आप दोनों को सच में एक दूसरे के बारे में नहीं पता था?
1: अरे राकेश जी, क्या आपको लगता है कि अगर मधु को पता होता तो वो आपको ना बताती?
2: नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं करती वो, मुझे उस पे पूर्ण विश्वास है। अच्छा चलिए ये सब छोड़िए डॉक्टर साहिबा, अब आप ये बताइए कि अब हम सबको क्या करना चाहिए।
1: देखिए राकेश जी और माता जी, ये आपके घर का निजी मामला है, और मैं एक डॉक्टर होने के नाते और मधु की सहेली होने के नाते सिर्फ अपनी राय ही दे सकती हूँ।
0: बेटी हम तो यही चाहते हैं कि बच्चे को गिरा दिया जाए।
1: माता जी सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, मुझे थोड़ा सख्त रवैया अपनाना पड़ा, मगर ये इसलिए था ताकि आप मेरी बात सुने और समझे।
0: कोई बात नहीं, शायद आप अपनी जगह पर ठीक हैं, पर मैं तो फिर भी भलाई ही चाहती हूँ।
2: पर माँ हमें डॉक्टर जी की बात भी तो सुन लेनी चाहिए, आखिर वो भी तो हमारा भला ही चाहती हैं।
1: धन्यवाद राकेश जी। देखिए माँ जी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि सारी बात खत्म होने के बाद अगर आप फिर यही चाहेंगी तो मैं यही करूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे होते मधु को कहीं और जाना पड़े, मैं खुद उसकी देखभाल करना चाहती हूँ।
2: ठीक है डॉक्टर साहिबा, कहिए आप क्या कहना चाहती हैं।
1: चलिए राकेश जी, एक अच्छी बात तो हुई कि आप समझ गए कि लड़की या लड़का होने के लिए सिर्फ पुरुष जिम्मेदार होते हैं, स्त्री नहीं।
2: जी बिल्कुल समझ गया।
1: अच्छा इस बात को छोड़िए, ये बताइए कि बुढ़ापे में आप किसका साथ चाहेंगे?
2: निसंदेह अपनी पत्नी का।
1: तो क्या आप एक स्वस्थ साथी चाहेंगे या एक ऐसा साथी जो अस्वस्थ हो?
2: जी मैं कुछ समझा नहीं, क्या बताना चाह रही हैं
1: आप? क्या समझते हैं कि एक औरत इंसान नहीं होती? बार बार गर्भ धारण करना, बच्चा जन्ना, बच्चा गिराना, इन सब बातों से उसके स्वास्थ्य पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता?
2: हाँ हाँ जी मैं समझ रहा हूँ आपकी बातें।
1: तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आप ये बताइए कि आपको लड़का ही क्यों चाहिए?
0: वंश भी तो आगे चलाना है।
1: अच्छा तो ये बताइए कि आपके पति का नाम क्या था?
0: जी रामलाल।
1: और उनके पिता यानी आपके ससुर जी का क्या नाम?
0: जी राधेश्याम।
1: और उनके पिताजी का?
0: जी ये तो याद नहीं मुझे।
1: थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए, याद आ जाएगा।
0: जी नहीं नहीं याद आ रहा।
1: तो फिर किस वंश की बात कर रही हैं आप, जहां एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी का नाम तक याद नहीं रहता? माता जी ये सही है कि वंश औलाद से चलता है, पर लायक औलाद से, नालायक से नहीं। और साथ ही गौर से सोचिए, हमारे कितने ही महापुरुष हुए हैं जिनको हम हमेशा याद रखते हैं। लक्ष्मीबाई हो, महारानी पद्मावती हो, मंगल पांडे हो, सरोजनी नायडू हो, महाराणा प्रताप हो, या फिर महात्मा गांधी हो, इन सब को हम इसलिए याद रखते हैं क्योंकि इन्होंने जीवन में अच्छा कार्य किया है।
0: अरे ये तो आपने बड़े बड़े नाम ले दिए इतिहास के पन्नों में से। हम छोटे लोग हैं, हमारा समाज अलग है।
1: माँ जी, समाज व्यक्ति के लिए होता है। चलिए आप अपने आसपास ही देख लीजिए, ऐसी कौन सी होनहार बेटी है जिस पर उसके माँ बाप गर्व नहीं करते, और ठीक इसके उलट ऐसा कौन सा माँ बाप है जो कि अपने नालायक बेटों की हरकतों पर शर्मिंदा नहीं होते।
0: पर आप ये मानकर चल रही हैं कि बेटी लायक ही होती है और बेटा नालायक?
1: जी नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है। बेटा हो या बेटी, कोई भी लायक या नालायक हो सकता है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि वंश का नाम बेटे या बेटी के लायक या नालायक होने पर निर्भर करता है, ना कि उसके लड़के या लड़की होने पर।
2: हाँ माँ, बात तो ठीक है। आज हमारी दीदी और आपकी बेटी अपने क्षेत्र में कितना नाम कमा रही है। माँ, आपको एक बात याद है, राष्ट्रपति मेडल जब दीदी को मिला था तो वो अपने हर स्वागत समारोह में पहला नाम पिताजी का लेती थी, और पिताजी जिंदा होते आज तो उनको कितना गर्व महसूस होता। माँ सोचो जरा।
0: हाँ वह तो ठीक है, पर लड़की होती तो आखिर पराया धन ही है ना, बेटा तो हमेशा साथ रहता है।
1: माँ जी जरा गौर कीजिए, आज के समय में कितने ऐसे लड़के हैं जो शादी के बाद अपने माँ बाप के साथ रहते हैं, अक्सर शादी के बाद अलग से घर ले लेते हैं, या फिर कितने ऐसे लोग हैं जो नौकरी के चक्कर में दूसरे शहर या विदेश नहीं जाते। माँ जी मैं डॉक्टर होने के साथ साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ और कई वृद्धाश्रमों से जुड़ी भी हूँ। मैंने अक्सर देखा है कि वहाँ रहने वाले वृद्ध व्यक्तियों से मिलने उनके बेटे आए ना आए, पर बेटियाँ नियमित तौर पर आती हैं और उनकी छोटी से छोटी जरूरत का भी पूरा ध्यान रखती हैं।
2: माँ वैसे बात तो सही है, पिताजी के जब आखिरी 2 वर्ष बचे थे तब मैं तो विदेश में था। दीदी विवाहित होने के बावजूद भी महीने में कम से कम 3 से 4 चक्कर लगा जाती थी, और माँ सच पूछो तो पिताजी भी उन पर बहुत अधिक विश्वास करते थे। माँ तुम्हें कुछ याद है कि नहीं?
0: हाँ हाँ बेटा मुझे याद है।
1: जी माता जी, वैसे तो मैं अपनी निजी जिंदगी की चर्चा किसी से करना पसंद नहीं करती, पर क्योंकि ये मधु का परिवार है और आप उसके करीबी हैं, तो इस नाते मेरा भी रिश्ता जुड़ गया है, इसलिए मैं आपको अपने माता पिता के बारे में एक बात बताती हूँ। मेरा एक भाई है जो कि बहुत ही अच्छा है, जान छिड़कता है, पर अपने परिवार के साथ USA में सेटल है। कई बार वो मम्मी और पापा को अपने साथ लेकर भी गया है, वहाँ पर माँ और पिताजी का मन नहीं लगता, सो वो वापस लौट आए और अब वो मेरे साथ रहते हैं। और सच कहूँ तो मेरे पति को भी इससे कोई आपत्ति नहीं है, वो तो बहुत खुश हैं कि चलिए घर पर कोई बड़ा तो है, और उधर USA में मेरी भाभी का कोई भाई नहीं है, इसलिए उनके माता पिताजी उनके साथ रहते हैं। तो माता जी ये सब किस्मत की बातें हैं और दाना पानी की भी।
0: सीमा मुझे लगता है हमने जरूर कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो हमें मधु जैसी बहू मिली और तुम जैसी उसकी सहेली।
2: चलिए सीमा जी बात को ना यही खत्म करते हैं और हम इस बेटी को भी जन्म देंगे, पर सीमा जी मेरी 2 शर्तें हैं।
1: कहिए राकेश जी क्या शर्तें हैं?
2: पहली ये कि आपने कहा कि मधु आपकी बहन है
1: जी,
2: तो इस नाते से आगे से आप मुझे अब जीजा जी कहेंगी?
1: हाँ जरूर, 1000 बार कहूँगी।
2: हमारी दूसरी बेटी की जन्म की पार्टी पर सारी की सारी तैयारियाँ तुम करोगी, और तो और उसका नामकरण भी तुम करोगी।
1: जी बिल्कुल जीजा जी, मुझे मंजूर है। और हाँ माँ जी मैं आपको ये भी बता दूँ कि हमने कोई रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं की है।

0: नमस्कार। अक्सर बात होती है कि बदलाव हो रहा है, लेकिन जब एक बच्ची महिला अपने अस्तित्व के लिए आवाज उठाती है तो समाज की कड़वी सच्चाई सामने आती है कि बदलाव सिर्फ एक साथ काम करना या कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना नहीं है, बल्कि मानसिकता में बदलाव होना असली विकास है। उम्मीद है कि इस कार्यक्रम से हम सबको कुछ न कुछ सीख जरूर मिली होगी और आने वाले समय में हम सब इस बदलाव का हिस्सा जरूर बनेंगे। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुलाकात होगी जल्द ही। तब तक आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: आकाश खुला, धुंध छंटी और हमने बहुत देखा,
2: बादल, चांद, पर्वत और नीला आसमान,
1: पर हम में से कितनों ने देखे चोट के वो नीले निशान,
2: कितनों ने देखी एक सच बयां करती वो बेबस मुस्कान।
1: शोर हटा सन्नाटे दिन की धूप में खामोशी से लेट कर,
2: और हमने बहुत कुछ सुना,
1: चिड़ियों को, चहचहाहट को,
2: हवा को, सरसराहट को,
1: बूंदा बूंदी को, बरसात को,
2: गरजती बिजली की डांट को,
1: कितना कुछ सुना,
2: पर हम में से कितनों ने सुना
1: उस दर्द को, उस कराह को,
2: दीवारें चीर कर आती उस आह को।
1: शायद हमने सुनकर भी नहीं सुना,
2: शायद हमने देखकर भी नहीं देखा,
1: लेकिन कब तक हम घरेलू हिंसा से नजरें चुराते रहेंगे,
2: पर कब तक,
3: पर कब तक,
4: पर कब तक।
2: आओ आवाज उठाएं,
1: आओ आवाज उठाएं,
3: आओ आवाज उठाएं,
4: हिंसा के विरुद्ध आवाज उठाएं। अगर आप भी घरेलू हिंसा से परेशान हैं, तो सहायता व परामर्श के लिए संपर्क कर सकते हैं डोमेस्टिक वायलेंस हेल्पलाइन, कॉल करें 7018-12909। नंबर फिर से याद रखें 70-187-12909।
5: अभी आप सुन रहे थे महिला सशक्तिकरण पर आधारित हिंसा को नो कार्यक्रम। इसमें हमें सहयोग मिला रेडियो गुंजन 91.2 धर्मशाला का। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, स्मार्ट के सौजन्य से विशेष कार्यक्रम हम आप तक पहुंचा पा रहे हैं और हमारे रेडियो स्टेशन द्वारा जो बनाए गए हैं विशेष कार्यक्रम दूसरे स्टेशन भी समय दर समय प्रसारित कर रहे हैं। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा 0120-4060-205 पर आप हमें कॉल कर बताएगा जरूर। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। नमस्कार। शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
6: मैंने वादा किया था बहू से, मैंने वादा किया था, मुझे पूरा करना ही होगा।
7: लो माँ भी आ गई। माँ देखो, तुम्हारा पोता बिल्कुल मुझ पे गया है ना।
6: ये सब बाद में, पहले बच्चा इधर ला। ये ले बहू, लगा अपने सीने से और पिला दूध। देख किया ना मैंने वादा पूरा, पहले घंटे की सुरक्षा का।
8: हाँ माँ जी।
9: जन्म के पहले घंटे में बच्चे को मिले माँ के दूध और तन की गर्मी की सुरक्षा, देर की तो बच्चे की जान को हो सकता है लगभग डेढ़ गुना ज्यादा खतरा। याद रहे वादा पहले घंटे की सुरक्षा का।
10: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: स्मार्ट के सहयोग से अभी आप सुन रहे थे ये खास जानकारी स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम के अंतर्गत। ऐसी अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।
11: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: भाई।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
1: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
2: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
3: सुनो शारदा।
4: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करने जा रहे हैं किडनी पेशेंट के लिए बेस्ट है 5 फूड। आइए जानते हैं कि गुर्दे की बीमारी में किस तरीके से ये फायदा पहुंचाता है। जी हाँ, एक संतुलित शाकाहारी डाइट गुर्दे के स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। और गुर्दे की बीमारी के खतरे को कम कर सकता है। बात करते हैं किडनी पेशेंट के लिए डाइट क्या है। तो बात सामने आती है कि बेहतर स्वास्थ्य के लिए किडनी को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है और संतुलित आहार किडनी की बीमारियों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि आप शाकाहारी हैं, तो ऐसे कई पोषक तत्व युक्त खाद्य पदार्थ हैं जो किडनी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायता कर सकते हैं और किडनी रोग के खतरे को कम कर सकते हैं। बात करते हैं कि हम 5 शाकाहारी खाद्य पदार्थों के बारे में जानेंगे जो किडनी पेशेंट के लिए फायदेमंद हो सकते हैं और जरूरी पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं। तो बात पत्तेदार साग के विषय की। पालक, बथुआ, करीमुआ, सरसों, केल, कोलार्ड ग्रीन्स जैसी पत्तेदार हरी सब्जियां किडनी के स्वास्थ्य के लिए बेहतर विकल्प हैं। इनमें पोटेशियम की मात्रा कम होती है और आवश्यक विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। इन सागों में डाइटरी फाइबर भी अधिक होता है जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने और वजन को नियंत्रित रखने में मदद करता है। अपने आहार में पत्तेदार सब्जियां शामिल करने से किडनी की कार्य क्षमता में मदद मिल सकती है और क्रॉनिक किडनी रोग का खतरा कम हो सकता है। अब बात करते हैं बेरीज की। स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, रॉस्पबेरी और क्रेनबेरी जैसी बेरीज एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और फाइबर से भरपूर होते हैं। इनमें पोटेशियम भी कम होता है जो उन्हें किडनी के लिए अनुकूल फल बनाता है। बेरीज में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं और ये ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने में मदद कर सकता है जो किडनी के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। नाश्ते के रूप में मुट्ठी भर फ्रेश बेरीज का आनंद लें या पौष्टिकता बढ़ाने के लिए उन्हें स्मूदी, सलाद या दलिया से जोड़ें। बात फलियों की। दाल, छोले, काली बीन्स और राजमा सहित विभिन्न फलियां प्रोटीन और फाइबर के उत्कृष्ट स्रोत हैं। उनमें सोडियम की मात्रा कम होती है और मैग्नीशियम, पोटेशियम और फास्फोरस जैसे आवश्यक खनिजों की अच्छी मात्रा प्रदान करते हैं। फलियों में संतृप्त वसा और कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है जो उन्हें हृदय के लिए स्वस्थ विकल्प बनाता है। अपने आहार में फलियां शामिल करने से ब्लड प्रेशर के स्तर को बनाए रखने और गुर्दे की बीमारी के खतरे को कम करने में मदद मिल सकती है। बात साबुत अनाज की। किनोआ, ब्राउन राइस, जौ और ओट्स जैसे साबुत अनाज किडनी के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। इनमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है और ये मैग्नीशियम, आयरन और विटामिन बी जैसे आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। साबुत अनाज में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद करता है और टाइप 2 डायबिटीज के खतरे को कम करता है जो किडनी रोग का एक प्रमुख कारण है। बात फूल गोभी की। फूल गोभी एक बेहतरीन सब्जी है जो किडनी के लिए फायदेमंद हो सकती है। इसमें पोटेशियम कम होता है और विटामिन सी, फोलेट और फाइबर का अच्छा स्रोत होता है। फूल गोभी का उपयोग आलू जैसे हाई पोटेशियम खाद्य पदार्थों के विकल्प के रूप में किया जा सकता है जिससे ये किडनी की समस्या वाले लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प बन जाता है। फूल गोभी को भूनकर या भाप में पकाकर साइड डिश के रूप में खा सकते हैं। हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना, दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो। लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं, और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग, यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा, यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें, और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान, यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं, और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें, अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग, यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव, अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: पौष्टिक आहार है टीबी के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार। पौष्टिक आहार से उपचार परिणाम बेहतर होते हैं और स्वास्थ्य में तेजी से सुधार आता है। इसीलिए तो निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत इलाज के दौरान हर रोगी को मिलते हैं 1,000 रूपए प्रतिमाह पोषण सहायता के रूप में, और सभी टीबी रोगियों के लिए न्यूट्रिशन सप्लीमेंट देने का प्रावधान है। साथ ही टीबी रोगियों के इलाज के दौरान हजारों निक्षय मित्र उन्हें पोषण किट प्रदान करते हैं। आप भी निक्षय मित्र बनकर टीबी रोगियों की सहायता कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए niksha.in पर जाएं। आइए हम सब साथ मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं।
3: निक्षय मित्रों से मिली शक्ति टीबी के मरीजों को नई ऊर्जा दे रही है।
4: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
5: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है, और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
6: The world is here.

0: हैं तो काम वाली भाई या मम्मी उठा रही है। ये अंकल कचरा क्यों उठा रहे हैं?
1: क्यों मैम, टीचर ने बताया था ना,
2: सभी काम सब लोग कर सकते हैं, पुरुष या महिला।
1: सफाई करना तो हम सभी का काम है। अपा एक मिनट, मैं भी कचरा उठाने में आपकी मदद करूँगी।
3: ठीक है चलो, तो हो जाए कचरा पार्टी।

0: तो फिर हम भी करेंगे कचरा पार्टी।
1: हाँ हाँ, हमें जाने की कोई भी गलती नहीं है।
2: बर्थडे पार्टी और घर से जो भी कचरा निकला है उसका सही उपयोग और प्रबंधन करना जरूरी है। तो हो जाए कचरा पार्टी।
1: हो जाए।
3: कचरे का सही उपयोग और प्रबंधन मतलब
2: घर पे, स्कूल में या बाहर सड़क पर कचरा यूं ही नहीं फेंकना। ये कचरा हमारे वातावरण, जमीन, हवा, पानी को प्रदूषित करता है।
1: हाँ, बाहर सड़क पर यहाँ वहाँ कचरा फैलाओ तो कितनी बुरी बदबू आती है।
0: और कचरे के आसपास चूहे, छुछुंदर, मक्खी मच्छर का घर बन जाता है और कीड़े भी लग जाते हैं
4: जो हमें बीमार कर सकते हैं। इसलिए कचरे को हमेशा कूड़ेदान में डालो।
5: रुको तारा, पहले ये देख लो ये कचरा किस तरह का है।
4: कचरा भी अलग अलग तरह का होता है अब्बा।
5: हाँ तारा, ये देखो कि ये सूखा कचरा है या गीला कचरा।
6: जो आसानी से सड़ जाए वो है गीला कचरा, और जो ना सड़े या कई सालों बाद सड़े वो है सूखा कचरा।
4: ये सड़ सकता है, इसका मतलब ये गीला कचरा है।
5: बहुत अच्छे तरह। हमेशा सोचो कि कचरा दोबारा किस काम आ सकता है।
7: इस गीले कचरे को गमले में डाल के मिट्टी से ढक दें तो कुछ समय के बाद ये गीला कचरा जैविक खाद बन जाता है।
0: तो अंकल, क्या हम बचा हुआ हलवा भी गमले में डाल सकते हैं? ये भी तो गीला कचरा है।
5: नहीं चंदन, पका हुआ खाना गमले में नहीं डालना, उसे तुम जानवरों को खिला सकते हो।
4: वाह, कचरा भी आएगा तुम्हारा काम। तो ये गया गीले कचरे में।
1: और मेरे पास है सूखा कचरा।
5: वाह वाह वाह वाह, तुम सब समझ गए। तो इस तरह घर पर ही सूखे और गीले कचरे को अलग कर लिया। और अब ऐसे कचरे की बात करते हैं जो हजारों साल तक सड़ते नहीं, और कुछ कचरे तो खतरनाक भी होते हैं।
4: हजारों साल तक सड़ते नहीं
1: और खतरनाक भी होते हैं।
5: जैसे प्लास्टिक जो हजारों सालों तक ऐसे ही रहेगा, या फिर टूटा शीशा, ब्लेड वगैरह। अगर इन्हें इस कचरे में मिला दिया और कहीं जानवरों ने खा लिया तो
4: या फिर कहीं शीशे के टुकड़े काम वाले दीदी या कूड़ा इकट्ठा करने वाले भैया को चुप गए तो।
7: इसलिए कोशिश करो कि ऐसी खतरनाक चीजों को अलग से अखबार में लपेट कर बाजार जाते हुए कपड़े का थैला साथ ले लो, ताकि प्लास्टिक का इस्तेमाल न करना पड़े।
5: और अगर करना ही पड़ जाए तो उसे बार बार इसी तरह से इस्तेमाल करो, ना कि कूड़े में फेंक दो।
0: वाह, बार बार इस्तेमाल।
1: जैसे इस गिफ्ट रैपिंग पेपर को हम अपनी नोटबुक या किताबों में कवर की तरह चढ़ा सकते हैं।
4: हाँ, आइडिया।
5: अरे ये क्या खुसर खुसर चल रही है।
4: अब आप देखिए अब्बा, हमारी कचरा कला।
0: हमने कचरे को दोबारा इस्तेमाल करके अपने वातावरण को बचाया।
8: अरे वाह, इसे तो मैं अपने टेबल पर सजाऊंगा।
3: तो तुम सब कब कर रहे हो कचरा पार्टी, हा?

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: इंसान को अपनी उम्र का एहसास तब होता है जब जिंदगी में उसकी बहुत सी पहलुएं धीरे धीरे बंद होती जाती हैं या खत्म होती जाती हैं। और पंचम मेरी जिंदगी में एक ऐसा ही पहलू है। पंचम के साथ क्या रिश्ता था मैं नहीं जानती, या मैं उसे कोई नाम नहीं देना चाहती। पंचम के साथ मैंने बहुत फिल्मों में काम किया,

0: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। एचआईवी और टीबी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक एचआईवी रोगी को टीबी होने का खतरा आम आदमी से 10 गुना अधिक होता है। अगर एचआईवी संक्रमित व्यक्ति को टीबी होता है तो टीबी का रोग एचआईवी को एड्स में तेजी से बदल देता है। टीबी के इलाज का कोर्स पूरा करने पर एचआईवी रोगी टीबी से पूरी तरह मुक्त हो सकता है। मैं विनती करता हूं कि हर एचआईवी मरीज तुरंत टीबी की जांच कराएं और सभी टीबी मरीज भी एचआईवी की जांच कराएं।
1: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
3: नमस्कार, मैं हूँ अजीत। स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में।
2: सुनते हैं आज का विचार जिसे हमें भेजा है आर्य नगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार और आयुष जंघेल के साथ साथ नंदिनी जंघेल जी ने।
3: लिखते हैं, हर कठिनाई में छुपी होती है सफलता की कुंजी, बस उसे ढूंढना होता है
2: जी।
3: हर असफलता में छुपी होती है एक सीख जो हमें और अधिक बेहतर बनाती है। सपनों की उड़ान तभी सफल होती है जब हम ज्ञान के पंखों से उड़ते हैं।
2: क्या बात है, सपनों की उड़ान तभी सफल होती है जब हम ज्ञान के पंखों से उड़ते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस संदेश के लिए। और इसके साथ साथ हमें पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम है, बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन और हेमलता के साथ साथ डिम्पल देवांगन।
3: अयोध्या धाम से राजा बाबू शर्मा, राम बाबू शर्मा, राजबाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा।
2: ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे।
3: और संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव जी।
2: धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए।
3: अनंत आकाश है, कोई मील का पत्थर या ऐसा कोई चिन्ह नहीं है, और विमान उड़ता जा रहा है, उड़ता जा रहा है, और हाँ, सुरक्षित अपनी मंजिल पर ये पहुँच जाता है।
2: क्या आपने कभी ये सोचा है कि विमान को दिशा निर्देश कैसे प्राप्त होते हैं और कैसे रात हो या दिन सही दिशा में उड़ता है?
3: तो आज हम आपको इस रोचक प्रश्न का उत्तर देने जा रहे हैं। श्रोताओं, हर हवाई जहाज को जमीन पर स्थित एयर ट्रैफिक नियंत्रण कक्ष द्वारा दिशा निर्देश दिया जाता है
2: जी।
3: वे बताते हैं कि जहाज को कितनी ऊंचाई पर उड़ना है,
2: किस रास्ते से जाना है और कहां दिशा बदलनी है
3: और
2: कब उतरना है, ये सब रेडियो संपर्क के द्वारा होता है।
3: श्रोताओं, आधुनिक विज्ञान ने बहुत अधिक तरक्की कर ली है। ग्राउंड स्टेशन या नियंत्रण केंद्र अब रडार प्रणाली का इस्तेमाल करते हैं
2: जी।
3: वे लगातार देखते रहते हैं कि जहाज कहां है, उसकी गति क्या है। वे जहाज के पायलट को ये संदेश भी देते हैं कि आगे का मौसम कैसा है और जहाज की गति कितनी रखनी है।
2: इससे जहाज बिल्कुल सही मार्ग पर चलता है। तो ये थी जानकारी आज की। और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
3: तो आज का प्रश्न है, जहाज को दिशा निर्देश कौन देता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: जहाज को दिशा निर्देश कौन देता है?
3: हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर या हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर आप अपना संदेश या प्रश्नों के उत्तर हमें भेज सकते हैं।
2: फेसबुक, एक्स, लिंक्डइन और इंस्टा पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
3: तो आइए अब सुनते हैं आज के विशेष रेडियो कार्यक्रम जो शिक्षा तो देते ही हैं, लेकिन मनोरंजन से भी भरपूर हैं।
2: बिल्कुल।
3: तो आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम शेर और चूहे की दोस्ती।
2: प्रसिद्ध लोक कथा पर आधारित ये कार्यक्रम NCERT की कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसका संदेश है, कभी भी किसी को छोटा और तुच्छ नहीं समझना चाहिए, कोई भी कभी भी हमारे बहुत काम आ सकता है।
4: शेर मतवाली चाल से चला जा रहा था। अचानक उसे एक हल्की सी चीख सुनाई दी। एक चूहे की पूंछ उसके पंजे के नीचे आ गई थी।
5: आप तो जंगल के राजा हैं, मुझे छोड़ दीजिए। देखना, एक दिन मैं आपके काम जरूर आऊंगा। हाँ, छोड़ दीजिए।
6: मेरे काम आओगे? ये छोटा सा चूहा, ये भला मेरे क्या काम आएगा? ठीक है, ठीक है, जाओ, तुम्हें आजाद किया, जाओ।
5: धन्यवाद महाराज, पर एक दिन मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। हाँ, मदद करूंगा।
4: शेर ने अपना पैर हटाया, चूहा फुदक कर झाड़ियों में चला गया।

एक दिन शिकारी ने शिकार पकड़ने के लिए जाल बिछाया। उस जाल में शेर फंस गया। वो जोर जोर से दहाड़ने लगा।

0: जंगल में रहने वाले हाथी, भालू, हिरण, खरगोश, लोमड़ी, बंदर और अजगर समेत सभी पशु पक्षियों ने दहाड़ सुनी, पर कोई भी शेर की सहायता को नहीं आया।
1: ये कहां फंस गया मैं? अरे कोई तो मेरी मदद करो, मैं जाल में फंस गया हूं, निकालो मुझे यहां से।
0: हाँ, चूहा जरूर भागा भागा वहां आया।
2: अरे अरे महाराज, आप यहाँ? लेकिन आप चिंता ना करें, मैं आपको अभी इस जाल से आजाद कर देता हूँ।
0: वो अपने पहने दांतों से जल्दी जल्दी जाल कुतरने लगा। कुछ ही पल में सारा जाल कट गया और शेर आजाद हो गया।
1: धन्यवाद धन्यवाद मेरे नन्हे दोस्त, धन्यवाद
2: महाराज।
3: तो साथियों, सुना आपने, हम जिनसे आशा भी नहीं करते वे भी हमारे बहुत बड़े सहायक सिद्ध हो सकते हैं, है ना? तो इसलिए हमें सबका सम्मान करना चाहिए। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शेर और चूहे की दोस्ती। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार बाबला कोचर, मुइनुल हसन नियाजी और परवेज गौहर, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। श्रोताओ, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम शेर और चूहे की दोस्ती। आशा है कि आपको जरूर पसंद आया होगा।
4: मैं एक नन्ही बच्ची हूँ, प्री स्कूल में जाती हूँ। अलर्ट हूँ मैं, चल चल।

0: और अब इस कार्यक्रम के बाद प्रस्तुत है कार्यक्रम हेलेन केलर।
1: ये कार्यक्रम प्रसिद्ध दिव्यांग अमेरिकी लेखिका और समाज सेविका हेलेन केलर के जीवन और समाज सेवा में उनके उल्लेखनीय योगदान के बारे में बताता है। विशेषकर इस कार्यक्रम के माध्यम से दिव्यांग वर्ग को प्रेरणा दी गई है और संदेश दिया गया है कि वे अपना मनोबल बनाए रखें।

0: आज हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे व्यक्तित्व से जो पूरे संसार के लिए प्रेरणा स्रोत है, जिनका नाम है हेलन केलर।
1: हेलन केलर का जन्म 27 जून 1880 में अमेरिका में हुआ था। जब ये 2 साल की हुई तो बहुत बीमार पड़ी और
2: डॉक्टर, मेरी बच्ची ठीक तो हो जाएगी ना?
3: मिसेस केलर, मुझे बेहद अफसोस है, पर हेलन अब कभी देख, बोल और सुन नहीं पाएगी। हिम्मत रखिए मिसेस केलर, हिम्मत रखिए।
0: हेलन की शिक्षा उसकी मां के लिए अब एक चुनौती बन गई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। हेलन की देखरेख और शिक्षा के लिए उन्होंने एक अनुभवी अध्यापिका को चुना, जिनका नाम था मिस सेलिवन।
4: आओ हेलन, मेरे पास आओ। हाँ, इधर। मैं हूँ सेलिवन। आज से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। हम दोनों मिलकर खेलेंगे, बहुत सारे काम एक साथ करेंगे। धीरे धीरे तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। अच्छा देखो, मेरा हाथ पकड़ो। हाँ, ऐसे। दोस्त हूँ ना तुम्हारी। शाबाश।
1: इस तरह एनी सेलिवन ने हेलन को पढ़ाना शुरू कर दिया। जो भी शब्द हेलन को सिखाना होता वो उसके हाथ पर लिख देती थी। इस तरह पढ़ते हुए हेलन ने सबसे पहले गुड़िया शब्द सीखा।
4: हेलन, आओ, आज तुम्हें एक शब्द लिखना सिखाती हूँ। हेलन है गुड़िया जैसी, तो हम लिखते हैं तुम्हारे हाथ पर गुड़िया। लाओ हाथ दो। गुड़िया।
0: अचानक एक दिन बाग की सैर करते हुए पानी का नल देखकर मिस सेलिवन के मन में एक विचार आया।
4: अरे, ये पानी का नल? हाँ, अगर पानी का स्पर्श कराकर हेलन के दूसरे हाथ पर पानी लिखूं तो कितना अच्छा होगा। अभी देखती हूँ। ये रहा पानी का नल। हेलन, हेलन, अपना हाथ मुझे दो। हाँ, शाबाश। अच्छा, अब अपनी हथेली खोलो। ऐसे। हाँ, अच्छा, अब मैं एक शब्द लिखूंगी तुम्हारी हथेली पर। देखो, मैं लिख रही हूँ पानी। हाँ हाँ, शाबाश। पानी। पानी। एक बार फिर कोशिश करो।
1: यूं शुरू हुआ हेलन का पढ़ना। अब तो वो चीजों को छू छू कर इशारे से उनके नाम पूछने लगी।
0: जल्दी ही वो अपनी अध्यापिका के मुंह और गले को छूकर बोलना भी सीख गई, यहां तक कि वो संगीत का भी आनंद लेने लगी।
4: मिसेस केलर
2: जी,
4: हेलेन तो अब बहुत कुछ सीख गई है, संगीत का आनंद भी लेने लगी है। आप तो खुद इतना अच्छा पियानो बजाती हैं। आज हेलेन के लिए मेरे लिए पियानो बजाइए ना।
2: जरूर, मैं अभी बजाती हूँ।

0: तुम अच्छा पिया नो
1: हेलेन हेलेन शाबाश हेलेन मिस सलीमन मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं
2: अरे नहीं नहीं मिसेस
1: मेरी बच्ची अब थोड़ा सुन सकती है और बोल भी सकती है मिस सलीमन
2: मिसेस केलर
1: हेलेन बोल सकती है

0: सिर्फ इतना ही नहीं, हेलेन उभरे अक्षरों यानी ब्रेल लिपि को पढ़ने लगी। वो अंग्रेजी के अलावा लैटिन, फ्रेंच और जर्मन भाषाएं भी सीख गई।
1: यही नहीं, वो तैराकी, घुड़सवारी और नाव चलाने में भी रुचि लेती। हेलेन ने अमेरिका के प्रसिद्ध महाविद्यालय रेड क्लिफ से स्नातक परीक्षा विशेष सम्मान से उत्तीर्ण की। हेलेन ने आत्मकथा लिखी जो एक प्रसिद्ध पत्रिका में छपी। दुनिया की 50 से ज्यादा भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है।
0: बाद में उन्होंने 10 किताबें और लिखी। वो अंधेपन, बहरेपन और उनसे जन्मी समस्याओं के बारे में अखबारों में लेख लिखती रही। अमेरिका और विदेशों में अंधेपन के लिए काम करने वाली संस्थाओं से वो जुड़ गईं।
1: उन्होंने दुनिया के कई देशों की यात्राएं की। सभी जगह हेलेन केलर को भारी सम्मान मिला। सन 1955 में वो भारत आई। दिल्ली में विशाल जनसभा में उन्हें सम्मानित किया गया।
0: ।1964 में हेलेन केलर को अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया।

0: हेलेन केलर की सफलता का रहस्य था तमाम कठिनाइयों के बीच आनंद की तलाश। हेलेन अपने प्रशंसकों के लिए प्रेरणा का एक अमर स्रोत थी, हैं और हमेशा रहेंगी।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलेन केलर। अब सुनते हैं अंग्रेजी में एक बेहद मधुर गीत और इस गीत का शीर्षक है आई हैव ए ड्रीम।
2: ये गीत एक विद्यार्थी के मन की आवाज है।
1: ये गीत बताता है कि एक विद्यार्थी दुनिया से,
2: समाज से,
1: मित्रों से,
2: माता पिता और शिक्षकों से क्या उम्मीद करता है।
1: जी हाँ, तो आइए सुनते हैं ये गीत आई हैव अ ड्रीम।
3: फ्रेंड्स, द सॉन्ग ब्रिंग्स टू यू द वॉइसेस ऑफ चिल्ड्रन विद एन अपील टू बी अंडरस्टूड व्हाट दे डिजायर। वी डेडिकेट दिस सॉन्ग टू अवर एस्टीम्ड टीचर्स, रिस्पेक्टेड एल्डर्स and beloved parents.
4: Dear friends, every child is born with quests and questions. For a child, there are not only seven wonders in the world, but there are more than 7 million wonders. A child is curious, overladen with questions and queries as to why something happens.
5: Mama, why the sky is so blue?
6: Oh, four, beta. Go and find the answer in your book.
5: Mama. Papa, why the grass is green but rose is red?
7: Grass is green, rose is red. Go and ask your teacher.
5: But Papa. Papa, my car is broken. Can I open and see how it works?
7: You broke it again? You are so hopeless.
6: Why the smell of soil is so sweet when it rains?
8: Oh, fo, don't bother me, okay?
6: But mommy.
4: Dear friends, such conversations are very common in every home. When the child asks, never stop him from asking questions. By doing so, we kill their curiosity and courage. Remember, every child has a dream, and their dreams are to be understood. So we have this song to share with you. I have a dream.
9: I have a dream.
10: I have a dream.
11: I have a dream.
12: I have a dream.

0: Dear friends, do we try to understand our children patiently? We need to peep deep into their little hearts and to have faith and trust in them. By doing so, we will ensure to make them what they are indeed.
1: तो श्रोताओं, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। आशा है कि ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा, लेकिन अब समय अनुमति नहीं देता कि हम आज के कार्यक्रम में आगे चलें। तो आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है, इस आशा के साथ कि अगले कार्यक्रम में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। इस समय अजीत को और
2: विमलेश को
1: आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
3: हाय, मैं हूँ रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
4: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: टीवी न छोड़े जान।
1: अगर आपने डॉट्स का कोर्स बीच में छोड़ दिया है तो शीघ्र जांच कराएं। कहीं आपको बिगड़ी हुई टीवी यानी MDR टीवी न हो चुकी हो। इसका इलाज 24 से 27 महीने तक चलता है। ऐसी स्थिति में इलाज पूरा कराएं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: ओले ओले ओले ओ सुनत। हेलो, कौन?
2: नमस्कार, हम दस्त बोल रहे हैं और हम आ रहे हैं आपके घर। आपके बच्चे की तबीयत जो खराब करनी है
3: तो लंबा प्रोग्राम बना के आ रहे हैं,
2: जल्द मिलते हैं।
1: हेलो हेलो हेलो,
4: आ रहे हैं दस्त, दस्त देंगे बड़ा हम कष्ट कष्ट।
5: दस्त ऐसे बताकर नहीं आते, तो दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
6: भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
7: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
6: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
8: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
4: सुनो

अभिमान की दो अहमियत है। एक तो ये कि बर्मन साहब के साथ मेरी सबसे आखिरी पिक्चर है और बर्मन साहब की लाइफ की भी सबसे आखिरी पिक्चर है अभिमान, उसके बाद वो फिर रहे नहीं दुनिया में। और उसमें एक गीत था, मुझे वो गीत बस पसंदली बहुत पसंद है, न जाने आप लोगों को पसंद होगा या नहीं, कि तेरे मेरे मिलन की ये रहना नया कोई गुल खिलाएगी, तभी तो चंचल है तेरे नैना।

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को, सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नई दुल्हन तो बिल्कुल चांद जैसी है।
2: काकी, आप अपनी टीबी का इलाज तो करवा रही हैं ना?
1: हाँ बेटी, मैं टीबी की दवाइयाँ हर रोज खा रही हूँ। ये दवाई सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त मिल रही है।
2: हाँ, अब तो आप और जल्दी ठीक हो जाएंगी, क्योंकि अब सरकार टीबी के मरीजों को मुफ्त इलाज के साथ हर महीने 500 रुपए की मदद भी दे रही है, ताकि वो इलाज के दौरान पोषण से भरपूर भोजन ले सकें और ये मदद सीधे उनके बैंक खाते में आएगी।
1: दुल्हन सुंदर ही नहीं, समझदार भी है।
3: आइए मिलकर टीबी को हराएं, टीबी मुक्त भारत बनाएं।
4: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
5: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
6: हाय, मैं हूं विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। सुनो शारदा।

0: महावारी के दौरान सामान्य लक्षण, आइए इनके बारे में जानते हैं। सिर दर्द, स्तनों में दर्द, पेट फूलना, ज्यादा पसीना आना, मांसपेशियों में दर्द या पेड़ू यानी कि पेट के नीचे में दर्द, ये सब महावारी के दौरान दिखाई देते सामान्य लक्षण हैं।
1: यदि महावारी के दौरान आपको पेट में दर्द हो रहा हो तो आप पेट दर्द में राहत के लिए एक बोतल में गर्म पानी भरें और एक तौलिए में लपेटकर उसे पेट पर रखें।
0: पेट की मालिश करें, अदरक की या कोई हर्बल चाय ले सकते हैं, कम नमक वाला आहार लें, पत्तेदार सब्जियां और फल खाएं जिसमें फाइबर अधिक मात्रा में होता है, तेज चलने वाली सैर करें। अगर इन सब से कोई मदद नहीं मिलती है और कोई अनियमितता दिखती है तो नजदीकी ANM या आशा से संपर्क करें।
1: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
2: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।

मेरी धरती लीजिए प्रस्तुत है विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार और प्रसारित किए जाने वाले विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती की 25वीं कड़ी चक्रवात का चक्कर। श्रोताओं, पिछले भाग में आपने जाना कि तरल पदार्थों के गुण क्या हैं, वाकर संचरण क्या है, महासागर वायुमंडल का संचरण एक कमाल का संचरण है, एल नीनो और ला नीना प्रकृति का अपना तरीका है ऊर्जा पोषक तत्वों आदि का एक संतुलन स्थापित करने का। तो लीजिए आगे सुनते हैं धरती मेरी धरती की 25वीं कड़ी चक्रवात का चक्कर।

0: सृष्टि,
1: सृष्टि बेटी।
2: जी मम्मी।
1: बेटी ये मानव सुबह सुबह कहाँ चला गया?
2: ओहो मम्मी क्यों परेशान होती हो, आजकल अपने मानव को पतंग उड़ाने का शौक चढ़ा है ना, तो बस सुबह से पतंग उड़ाने की कोशिश शुरू।
3: अरे भाई पतंग उड़ाने के लिए हवा भी तो होनी चाहिए, और अभी तो देखो हवा लगभग रुकी हुई है।
2: तो पापा अभी आएगा ना मानव अपना मुंह फुलाकर।
4: लो आ गया। अरे शक्ल तो देखो कैसी उड़ी हुई है।
1: क्यों मानव उड़ गई पतंग?
5: क्या मम्मी जब भी पतंग उड़ाने जाओ पता नहीं हवा कहाँ भाग जाती है।
3: मानव बेटा जो सच में पतंग उड़ाने में माहिर होते हैं वो थोड़ी बहुत हवा में भी पतंग उड़ा ही लेते हैं।
2: ठीक कहा पापा, पर अपने मानव को तो हमेशा हवा कम ही लगती है, चक्रवात भी आ जाए तब भी इसकी पतंग के लिए हवा कम ही रहती है।
6: बिल्कुल ठीक कहा सृष्टि, चक्रवात में अपना मानव पतंग नहीं उड़ा पाएगा, हाँ खुद जरूर उड़ जाएगा।
1: अच्छा चलो चलो अब सुबह सुबह मानव का मजाक बहुत हो गया, चलो नाश्ता कर लो। चल मानव
3: बेटा तुम और बच्चे नाश्ता कर लो, मैं बाद में करूंगा।
2: बाद में क्यों पापा?
1: अरे सृष्टि इस्लाम भाई साहब

0: और उनकी पत्नी नीलिमा जी जो आने वाली हैं, तुम्हारे पापा उन्हीं के साथ नाश्ता करेंगे।
1: हाँ, बिल्कुल।
2: अरे वाह, तो बड़ी अच्छी बात है, नीलिमा आंटी तो पहली बार हमारे घर आ रही है।
0: हाँ विवेक बेटा, अरे तो हम सब नाश्ता उन्हीं के साथ कर लेंगे ना मम्मी। ठीक है सृष्टि बेटा, पर मुझे तो नाश्ता करा दो, मुझे बहुत भूख लगी है।
2: मम्मी इसे नाश्ता करा दो, ये चक्रवात बिना खाए शांत होगा नहीं।
3: क्या भैया, सुबह से चक्रवात चक्रवात कर रहे हो। अच्छा अब बताओ भी कि ये चक्रवात होता क्या है।
0: लो, हर साल ही तो आता है चक्रवात, तूने नाम नहीं सुना।
3: नहीं,
2: अरे मानव, हरिकेन कटरीना, हरिकेन डेनिस, हरिकेन माया, हरिकेन।
3: क्या भैया, चक्रवातों की बात करते करते आप हरिकेन पे कहाँ पहुँच गए।
0: अरे मानव, ये हरिकेन चक्रवात एक ही तो है।
3: एक है तो फिर ये नाम अलग अलग क्यों है।
1: बेटे ये तो तुम्हें तुम्हारे इस्लाम अंकल और उनकी पत्नी नीलिमा जी बता पाएंगे। पता है नीलिमा जी मौसम विज्ञानी हैं।
3: भैया ये कैटरीना, डेनिस, माया, ये सब तो लोगों के नाम है ना।
2: हाँ मानव, पर ये नाम कैसे पड़े, क्यों पड़े, ये मुझसे मत पूछो। ये नाम चक्रवातों के जैसे भी पड़े हो, ये तुम्हें नीलिमा आंटी बताएंगी। हो सकता है चक्रवात का कोई नाम नीलिमा आंटी ने ही सुझाया हो।
3: अरे वाह, फिर तो नीलिमा आंटी मेरे नाम पर भी चक्रवात का नामकरण कर सकती है।
0: शायद
3: फिर तो बहुत मजा आएगा। मम्मी फिर मैं भी इस्लाम अंकल और नीलिमा आंटी के साथ ही नाश्ता करूँगा।
0: क्या देव से? पर मानव अपने नाम पर चक्रवात का नाम क्यों रखवाना है।
3: दीदी फिर मैं भी फेमस हो जाऊंगा, कितना अच्छा लगेगा ना, मानव चक्रवात। अरे
2: मानव तू तो पहले से ही चक्रवात है, जिसके द्वारा मचाई गई तबाही हम रोज देखते हैं।
3: क्या भैया?
1: अरे अरे लगता है वो लोग आ गए। अरे आओ इस्लाम, आओ।
4: आइए आइए भाई साहब, आइए।
0: नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी।
5: हम लोग आप ही का इंतजार कर रहे थे। कैसी है नीलिमा जी?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाभी जी।
6: भाई सूर्यप्रकाश, बड़े जोर से हंसी की आवाज आ रही थी, क्या बात है, हमें भी बताओ ना।
1: अरे बस वो ऐसी कोई खास बात नहीं है। अरे
2: अंकल मैं बताता हूँ ना। कुछ खास नहीं अंकल, बस अपना मानव चाहता है कि नीलिमा आंटी किसी चक्रवात का नाम उसके नाम पर भी रखवाने में उसकी मदद करे। बस
1: बात तो यही है
0: भाई मानव, क्या ये बात सच है?
3: आंटी मैं तो बस यूं ही सोच रहा था।
6: भाई मानव किसी और चीज में नाम रोशन करना था, ये चक्रवात ही क्यों।
3: अब विवेक भैया ने इतने सारे नाम बताए तो मैंने सोचा मेरे नाम का भी चक्रवात हो जाए तो बढ़िया रहेगा।
0: वैसे मानव क्या तुम जानते हो कि चक्रवात क्या होते हैं?
3: नहीं आंटी, पूरी तरह से तो नहीं, पर हाँ ये पता है कि इसमें मेरी पतंग उड़े ना उड़े पर मैं जरूर उड़ जाऊंगा।
6: चलो अच्छा, हमारे मानव को इतना तो पता है।
0: चलो मानव ऐसा करते हैं, पहले तुम ये जान लो कि चक्रवात क्या है, फिर तुम चाहोगे तो तुम्हारे नाम पर चक्रवात का नाम भी रख देंगे।
3: अरे वाह, बहुत मजा आएगा।
5: चलो भैया सब लोग नाश्ता कर लो।
1: हाँ
6: ये भी
1: आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ।
6: तो भाभी जी ने क्या बनाया है? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है भाई, नाश्ता भी करते हैं और बातें भी करें ना।
3: हाँ तो आंटी बताइए ये चक्रवात क्या होता है।
0: मानव तुम्हारे इस्लाम अंकल ने बताया था कि वो तुम्हें पहले महासागर वायुमंडल के संचरण के बारे में बता चुके हैं थोड़ा बहुत।
3: जी आंटी,
0: और तुम ऊर्जा के हस्तांतरण के बारे में कुछ कुछ जानते हो।
3: बिल्कुल।
0: तो मानव ये चक्रवात आमतौर पर उष्ण कटिबंधी क्षेत्रों में बनते हैं, असल में ये कम दबाव वाली प्रणाली है।
6: मानव बेटा ये महासागर वायुमंडलीय संचरण प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो भूमध्य रेखा पर स्थित क्षेत्रों से ऊष्मा को ऊंचे अक्षांश वाले क्षेत्रों में पहुंचाती है।
3: अच्छा तो यहाँ भी सारा ऊर्जा का लेन देन है।
2: बिल्कुल ठीक कहा माना तुमने। मोटे तौर पर देखें तो गर्म महासागरीय पानी से जल वाष्प बनती है और इस जल वाष्प का ऊंचाई पर घनीकरण होता है, जिससे इस जल वाष्प में मौजूद ऊष्मा बाहर निकलती है।
3: हाँ भैया ये तो होगा ही, फिर
6: बस मानो बेटा यही जल वाष्प से निकली ऊर्जा इन उष्ण कटिबंधी क्षेत्रों से उठने वाली चक्रवातों का शुरुआती ऊर्जा का स्रोत होती है।
3: यानी गर्म पानी की ऊर्जा से ही ये चक्रवात का इंजन चलता है। अच्छा, एक बात और बताऊं तुम्हें। मध्य अक्षांशों वाले चक्रवात अपनी ऊर्जा वातावरण में पहले से मौजूद तापमान से ग्रहण करते हैं।
5: अंकल, ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात कुछ खास परिस्थितियों में ही बनते हैं ना?
6: हाँ सृष्टि बेटे, पहले से जारी मौसमी गड़बड़ी, गर्म उष्णकटिबंधीय सागर, नमी तथा अपेक्षाकृत हल्की हवाएं उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बनने का मुख्य कारण है।
3: और यही अनुकूल परिस्थितियां लंबे समय तक चलती रहती है तो ये सब मिलकर तूफान से जुड़ी तेज हवाएं, ऊंची लहरें, वेगवान वर्षा तथा बाढ़ पैदा करती हैं।
5: है? चक्रवात से बाढ़ आती है
3: और क्या भयानक तबाही मचती है।
2: मानव, चक्रवात महासागरों से ही उठते हैं क्योंकि उन्हें गर्म पानी की जरूरत होती है ऊर्जा के लिए। तूफान में मौजूद तेज हवाएं और कम दबाव वाष्पीकरण करते हैं, इससे चक्रवात को और ऊर्जा मिलती है और वो और प्रचंड हो जाते हैं।
5: पर भैया, जब ये सागर में बनते हैं तो लोगों को तो ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते?
3: अरे मानव, इसीलिए कहती हूँ कि रोज अखबार पढ़ा कर। हरिकेन कटरीना को भूल गया क्या? मानव, गहरे समुद्र में उठा ये चक्रवात अपनी मस्ती में ऐसा झूमता हुआ घूमता है कि कई बार वो तट से बहुत गति से टकरा जाता है। पर चक्रवात की ये झूमती मस्ती तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए तबाही का संदेश लेकर आती है।
6: असल में मानव, चक्रवात की ऊर्जा का स्रोत तो सागर का गर्म पानी होता है। भूमि पर पहुंचकर चक्रवातों की ऊर्जा का स्रोत खत्म हो जाता है तो उनकी गति भी कम हो जाती है। पर रुकते रुकते भी ये चक्रवात कई बार भयंकर तबाही मचा देते हैं।
2: और मानव, जानते हो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का वर्गीकरण 3 मुख्य समूहों में किया गया है।
5: अच्छा।
2: पहला ट्रॉपिकल डिप्रेशन यानी उष्णकटिबंधीय दबाव, दूसरा ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स यानी उष्णकटिबंधीय तूफान, और चक्रवात के तीसरे समूह का नाम चक्रवात के पैदा होने वाले क्षेत्र पर निर्भर करता है।
6: शाबाश, तुमने काफी पढ़ रखा है।
1: अरे इस्लाम, ये विवेक तो अब लोकप्रिय वैज्ञानिक लेख भी लिखने लगा है।
3: बहुत खूब विवेक, बहुत अच्छे।
2: थैंक यू आंटी। बस अभी मैं चक्रवातों पर लिखने की सोच रहा था, इसीलिए उनके बारे में आजकल पढ़ रहा हूँ।
6: वेरी गुड, बहुत अच्छे विवेक। चलो, मानव के लिए अच्छा है, विवेक साथ में रहेगा तो उससे कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। असल में मानव, ये जो विवेक ने बताया उष्णकटिबंधीय दबाव, ये बादलों और गरजने वाले तूफान की एक संगठित प्रणाली है जिसका एक तय सतही संचरण होता है तथा जिसमें हवाओं की अधिकतम गति 62 किलोमीटर प्रति घंटे से कम होती है।
3: अच्छा, और ये उष्णकटिबंधीय तूफान भी इसी के समान होता है, परंतु इसमें हवा की गति 62 से 117 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इस गति पर चक्रवात की आकृति बनने लगती है।
5: चक्रवात की आकृति?
2: हाँ मानव, चक्रवात की आकृति बनने लगती है। चक्रवात की तीव्रता जो 117 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा होती है, इस गति में उष्णकटिबंधीय चक्रवात में नेत्र यानी आंख बनने लगती है।
5: अच्छा।
2: हरिकेन की आंख पूरे चक्रवात का केंद्र होता है जो अपेक्षाकृत काफी शांत होता है। चक्रवात की आंख उपग्रह से छोटे गोलाकार बादल रहित केंद्र के रूप में दिखती है और इस आंख के आसपास के क्षेत्र को आई वॉल यानी आंख की दीवार कहते हैं, जो करीब 16 से 80 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र होता है जिसमें तूफान की सबसे ताकतवर हवाएं और गरजने वाला झंझावात मौजूद होता है जो चक्रवात के केंद्र यानी आंख के चारों तरफ गोल गोल घूमता रहता है।
6: हाँ, और इस कारण इस पूरी प्रणाली को एक विशिष्ट सर्पिल आकृति प्राप्त होती है। चक्रवात के घूमने की दिशा इस बात पर निर्भर करती है कि वो किस गोलार्ध पर स्थित है। उत्तरी गोलार्ध पर इसके घूमने की दिशा घड़ी के विपरीत होती है और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के घूमने की दिशा में।
5: क्या इन चक्रवातों को हरिकेन भी कहते हैं?
6: मानो बेटा, अलग अलग क्षेत्रों में इन चक्रवातों का नामकरण अलग अलग है। उत्तरी अटलांटिक में 117 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ज्यादा तेज वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को हरिकेन कहा जाता है।
3: प्रशांत महासागर के विभिन्न भागों में इन्हें हरिकेन, टाइफून या ट्रॉपिकल साइक्लोन कहा जाता है, जबकि उत्तरी हिंद महासागर में इन्हें तीव्र चक्रवाती और हिंद महासागर में इन्हें ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं।
5: और आंटी, इनके नाम कैसे पढ़ते हैं?
3: नीलिमा आंटी, लगता है मानव अपने नाम पर चक्रवात का नाम पढ़वा कर ही मानेगा।
6: मानव बेटा, सैकड़ों वर्षों से कैरेबिया क्षेत्रों में आने वाले चक्रवातों को संतों के दिवसों का नाम दिया गया। इन चक्रवातों को मानवीय नाम देने की परंपरा दूसरे विश्व युद्ध के दौरान पड़ी, जब अमेरिका के वायुसेना और नौसेना के मौसम वैज्ञानिकों ने अपनी पत्नियों और प्रेमिकाओं के नाम पर चक्रवातों का नामकरण किया। 1950 से अमेरिका के मौसम ब्यूरो ने औपचारिक रूप से अक्षरों के अनुसार नाम देने शुरू किए और 1953 में महिलाओं के पहले नाम से चक्रवातों का नामकरण किया गया। 1979 से पुरुषों के पहले नामों को अपनाया गया।
0: विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO के क्षेत्रीय विशिष्ट केंद्र ने हिंद महासागर से उठने वाले चक्रवातों को नाम देने का निर्णय 2003 में इस्लामाबाद में हुई क्षेत्रीय बैठक में तय किया था। नई दिल्ली स्थित WMO के क्षेत्रीय विशिष्ट केंद्र के सदस्य देशों भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ओमान, थाईलैंड, मालदीव और म्यांमार ने मिलकर चक्रवातों के लगभग 40 नाम सुझाए हैं, जो WMO ने मान लिए हैं। हिंद महासागर में उठे चक्रवात का नाम म्यांमार का दिया हुआ है। इससे पहले भारतीय तट से अक्टूबर में टकराया ओनील चक्रवात एक बांग्लादेशी नाम है। फानूस पाकिस्तान द्वारा किया गया नामकरण है।
1: पानी पियेंगे?
6: अच्छा। भाभी जी, फानूस फानूस तो शमा की हवा से हिफाजत करने के लिए होता है।
0: बिल्कुल।
6: तो सूर्य प्रकाश जी, इस फानूस ने तो हवा की हवा खराब कर दी।
0: ये बात भी सही है। फानूस के बाद आने वाला चक्रवात माला श्रीलंका द्वारा दिया गया नाम है और उसके बाद मुग्दा नाम थाईलैंड द्वारा दिया गया है। इसी सूची के कुछ भारतीय नाम भी हैं, जैसे आकाश, बिजली, जल, लहर और मेघ। भारत में नामों का उपयोग करने के लिए अभी निर्णय लेना वैसे बाकी है, परंतु भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अपने अंतर्राष्ट्रीय बुलेटिनों में इन नामों को देना शुरू कर दिया है।
1: हाँ,
0: पानी नहीं पीऊंगी, चाय पीऊंगी।
6: पता है मानव, अटलांटिक में जुलाई से 30 नवंबर तक चक्रवातों का मौसम रहता है, यानी अटलांटिक हरिकेन सीजन। हर वर्ष अमेरिका में तटीय क्षेत्रों में कई चक्रवात आते हैं, जैसे कैटरीना, आइरीन, एमिली तथा डेनिस आदि प्रमुख चक्रवात आए। डेनिस ने 2005 जुलाई के महीने में फ्लोरिडा शहर में काफी तबाही मचाई थी।
0: असल में हरिकेन काफी बलशाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात की एक श्रेणी है। उष्णकटिबंधीय गड़बड़ी, उष्णकटिबंधीय तूफान, उष्णकटिबंधीय प्रचंड तूफान और बवंडर, ये सभी विशिष्ट उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का एक वर्गीकरण है, जो उनकी ताकत, क्षमता एवं स्थान पर निर्भर करता है।
3: अच्छा।
1: नीलिमा, मानवीय नाम को रखने से चक्रवातों की पहचान तो आसान हुई, परंतु उनके अमानवीय प्रहारों को रोक पाना अभी भी असंभव बना हुआ है।
0: बिल्कुल ठीक कहा भाई साहब आपने।
3: क्या चक्रवात सच में बहुत तबाही मचाते हैं?
0: मानव, हर चक्रवात तबाही नहीं मचाता, क्योंकि हर चक्रवात भूमि से टकराता नहीं है। विभीषिका तो इस बात पर निर्भर करती है कि किस कैटेगरी का चक्रवात भूमि से टकराता है।
3: कैटेगरी यानी श्रेणी, चक्रवातों में भी कैटेगरी होती है?
6: हाँ मामा बेटा, चक्रवातों की श्रेणीबद्ध करने के लिए साफिर सिम्पसन हरिकेन स्केल का उपयोग किया जाता है। ये एक 5 अंकों की निर्धारण प्रणाली है, जिसका उपयोग चक्रवात के भूमि से टकराने पर होने वाले माली नुकसान एवं बाढ़ आने की संभावना के मूल्यांकन के लिए किया जाता है।
0: देखो, कैटेगरी एक में पवन वेग करीब 119 से 152 किलोमीटर प्रति घंटा होता है और तूफानी लहरें सामान्य से 4 से 5 फुट ऊंची होती हैं। और इस वेग में बंधन रहित चलते फिरते आवास, झाड़ियां और पेड़, कुछ तट पर लगे खंबे खतरे में होते हैं तथा कुछ तटीय इलाकों में बाढ़ भी आती है।
6: अच्छा। और कैटेगरी दो में पवन वेग करीब 152 से 177 किलोमीटर प्रति घंटा होता है और तूफानी लहरें सामान्य से 6 से 8 फुट ऊंची होती हैं।
2: और जानते हो मानव, इस वेग में कच्ची छतें, पेड़, कहीं चलते फिरते आवास, खंबे, छोटी नौकाएं खतरे में होती हैं तथा तूफान के केंद्र के पहुंचने से 2 से 4 घंटे पहले ही तटीय सड़कों और निचले इलाकों में बाढ़ आ जाती है। मानव, ये बात हुई कैटेगरी दो की। कैटेगरी तीन में पवन वेग करीब 178 से 209 किलोमीटर प्रति घंटा होता है और तूफानी लहरें सामान्य से 9 से 12 फुट ऊंची होती है।
3: बाप रे।
2: मानव, इस वेग में छोटे घर एवं भवन, बड़े पेड़, सभी चलते फिरते आवास खतरे में होते हैं। केंद्र के आने से 3 से 5 घंटे पहले ही सभी निचले इलाकों में बाढ़ आती है और बाढ़ से सभी छोटी संरचनाएं तबाह हो जाती है।
6: और मानव, कैटेगरी 4 में पवन वेग करीब 210 से 279 किलोमीटर प्रति घंटा होता है और तूफानी लहरें सामान्य से 13 से 18 फुट ऊंची और इसमें दीवारें, छतें, छोटे घर, दरवाजे, खिड़कियां और सभी साइनबोर्ड और पेड़, मतलब तट के पास लगभग पूरी तबाही मच जाती है। समुद्री तल से 10 फुट तक की ऊंचाई पर स्थित इलाकों में बाढ़ की संभावना होती है। इस श्रेणी के चक्रवातों में लगभग 10 किलोमीटर तक के अंदर के इलाकों को खाली कराया जाता है।
0: और अगली कैटेगरी है कैटेगरी 5। इसमें 279 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा का पवन वेग होता है। तूफानी लहरें सामान्य से 18 फुट से भी ज्यादा ऊंची।
3: अच्छा,
0: कैटेगरी 5 के चक्रवात में तो सभी आकार प्रकार के घर और भवन, खासकर छतें, खिड़कियां और दरवाजे खतरे में होते हैं। समुद्री तल से 15 फुट तक की ऊंचाई पर स्थित इलाकों में बाढ़ आ सकती है। और इस श्रेणी के चक्रवातों में लगभग 16 किलोमीटर तक के अंदर के इलाकों को खाली कराया जाता है।
2: पता है माना, हरिकेन कैटरीना में पवन वेग कुछ समय के लिए 300 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा था।
3: अच्छा अंकल, हरिकेन कैटरीना ने कितना नुकसान पहुंचाया था?
6: बेटे, एक अनुमान के अनुसार करीब 45 अरब रुपए का नुकसान हुआ और 10,000 से भी ज्यादा लोगों की जाने गई।
2: और जानते हो मानव, 2007 में बांग्लादेश से टकराया चक्रवात सिद्र तो करीब 20,000 लोगों को लील गया।
0: मानव, ये चक्रवात तो प्रकृति का एक ऐसा क्रूर प्रहार है जिसे रोकना असंभव है। पर हाँ, आज उपग्रह चित्रों और संचार माध्यमों के द्वारा इन चक्रवातों के बारे में लोगों को पहले से सावधान किया जा सकता है,
1: जिससे इससे होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। और कुछ नहीं तो लोगों की जान तो बचाई ही जा सकती है।
3: क्या हुआ मानव बेटा, कुछ दुखी से लग रहे हो?
7: मम्मी, मुझे अब अपने नाम का चक्रवात नहीं चाहिए।
6: शाबाश मानव बेटा, तुम्हारा नाम तो मानवीय भावनाओं, इंसानी रिश्तों, उपकार, त्याग और कर्तव्य से जुड़ा होना चाहिए, किसी त्रासदी से थोड़ा है ना।
3: हाँ अंकल, मैं भी समझ गया कि अपना नाम बड़ा करने के लिए जीवन में बड़े काम करने होंगे।
0: इंसानी रिश्तों को मजबूत करना और प्यार, एकता का संदेश, यही मानव के नाम को बड़ा बनाएगा। अब हंस दो मानव, समझ गए तुम ना?
3: जी समझ गए आंटी। अब आप भी चक्रवात को मेरा नाम मत देना।
0: नहीं,
3: मैं
0: नहीं दूंगी।
3: अच्छा बाय बाय
0: बाय।
3: अरे मानव, मानव कहाँ चला?
0: नाम बड़ा करने।
3: अरे अरे नहीं दीदी, अभी तो पतंग उड़ा।

0: धरती मेरी धरती अभी आप विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार और प्रसारित किए जाने वाले विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती की 25वीं कड़ी सुन रहे थे, चक्रवात का चक्कर।
1: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: नमस्ते क्लास, टीवी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
1: जी
0: प्लीज बताइए आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
1: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है। दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल। साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी। उपचार चल सकता है और भी लंबा।
0: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: शिशु के 6 महीने के होने के बाद
1: माँ के दूध के साथ जरूरी है बच्चे के लिए पौष्टिक आहार।
0: केवल माँ का दूध
1: नहीं बना पाएगा बच्चे को मजबूत।
0: अतिरिक्त पोषण की जरूरत,
1: दूध के साथ ऊपरी आहार की अहमियत।
2: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: ट्यूबरक्लोसिस या टीबी किसी को भी हो सकता है। मैं भी इसका शिकार हुई थी, पर मैं इससे बच निकली। मैं ऐसा इसलिए कर सकी क्योंकि मैंने अपना इलाज अधूरा नहीं छोड़ा। टीबी से लड़ने के लिए इसका पूरा इलाज करना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये बीमारी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। हो सकता है आप ड्रग रेजिस्टेंट भी बन जाए, जो एक अधिक खतरनाक प्रकार की टीबी है और इसका इलाज भी बहुत मुश्किल है। एक टीबी विजेता होने के नाते मुझे पता है कि ये आसान नहीं है। इसका इलाज लंबा चलता है और इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। जब मैं ड्रग रेजिस्टेंट टीबी से जूझ रही थी, तब मुझे इसके इलाज से जुड़ी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहली चुनौती है इसके इलाज से जुड़ी दवाइयों की संख्या। कभी कभी तो 16 दवाइयां लेनी पड़ती थी और कब कौन सी दवाई लेना ये याद रखना बहुत मुश्किल था। दूसरी चुनौती है इसके साइड इफेक्ट्स। उल्टी होना, सिर चकराना, दर्द, कमजोरी और मानसिक स्थिति बिगड़ने जैसे साइड इफेक्ट से उबरना मुश्किल होता है। इसलिए कई लोग इलाज बीच में ही छोड़ देना चाहते हैं। मैं भी यही करना चाहती थी। तो इन चुनौतियों से लड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर आप सरकार के RNDCP के द्वारा इलाज करा रहे हैं, तो उसमें एक ऐसा सिस्टम है जो आपके इलाज के ऊपर निगरानी रखता है और ये सुनिश्चित करता है कि आप आपका इलाज पूरा कराएं। ये काफी आसान है, इसको 99 डॉट्स कहते हैं। टीबी की दवाएं एक लिफाफे में होती है जिसमें आपको अलग अलग निर्देश, आकार और नंबर दिखाई देंगे। यहाँ के सलाहकार पहले डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं और मरीजों से पूछते हैं कि डॉक्टर ने उनको कितनी गोलियां लेने को कहा है। चलिए हम आज की दवाई लेते हैं। मुझे आज 3 गोलियां खानी है। गोली नंबर 1 से शुरू करके गोली नंबर 3 तक खानी है। याद रखिए, लिफाफे में जैसा दिखाया है आपको उसी संख्या क्रम में गोलियां लेनी है। अगर आप क्रम के हिसाब से 3 गोलियां ले चुके हैं, तो इन गोलियों के खुले फ्लैप के अंदर देखें। आपको इन फ्लैप्स के अंदर छिपे नंबर दिखाई देंगे। अगर आप 3 गोलियां लेते हैं तो आप 1 या 2 नंबर बता सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन के वक्त आपने जो मोबाइल नंबर दिया है, उस मोबाइल से इनमें से किसी एक नंबर पर आपको कॉल करना है। ऐसा करने की क्या जरूरत है? जब आप ये कॉल करेंगे तो आपके सुपरवाइजर को ये पता चलेगा कि आपने उस दिन की गोलियां ले ली है। अस्पताल कर्मचारी को ये पता होना जरूरी है कि आप नियमित रूप से दवाई ले रहे हैं। अगर आप नहीं चाहते कि वो बार बार आपके घर आए, तो आपको उनको कॉल करके ये बताना होगा कि आपने दवाई ले ली है। इसके लिए आपको रोजाना इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करना होगा। याद रखे, ये एक टोल फ्री नंबर है। आपके मोबाइल पे बैलेंस ना होने पर भी आप इसके ऊपर कॉल कर सकते हैं। अगर बैलेंस हो भी तो भी इससे कोई पैसे नहीं कटेंगे। ये भी याद रखें कि आपको इनमें से दिखाए गए किसी एक नंबर पे ही कॉल करना है, सभी नंबर पे कॉल करने की जरूरत नहीं है। आपको इन नंबरों के पहले कोई अतिरिक्त संख्या जोड़ना भी जरूरी नहीं। जब आप नंबर मिलाएंगे तो दूसरी तरफ से धन्यवाद सुनने मिलेगा। अगर आपको कोई साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं तो उन्हें कहीं लिखिए और अपने डॉक्टर से इसके बारे में बात कीजिए। ये याद रखना जरूरी है कि आपको बिना किसी चूक अपना इलाज समय पर लेना है। मैं जानती हूँ कि ये आसान नहीं है, लेकिन टीबी को हराने के लिए कोई दूसरा तरीका भी नहीं है। इलाज पूरा करने के लिए 99 डॉट्स का उपयोग करें। टीबी से लड़ने के लिए इसे एक साधन समझें। आइए हम सब मिलकर टीबी को हराएं।
1: हाय, नमस्कार, मैं हूँ RJ रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

इसे देखो, दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।

0: जब मैं ड्रग रेजिस्टेंट टीबी से जूझ रही थी तब मुझे इसके इलाज से जुड़ी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहली चुनौती है इसके इलाज से जुड़ी दवाइयों की संख्या। कभी कभी तो 16 दवाइयां लेने पड़ती थी और कब कौन सी दवाई लेना ये याद रखना बहुत मुश्किल था। दूसरी चुनौती है इसके साइड इफेक्ट्स, उल्टी होना, सिर चकराना, दर्द, कमजोरी और मानसिक स्थिति बिगड़ने जैसे साइड इफेक्ट से उबरना मुश्किल होता है। इसलिए कई लोग इलाज बीच में ही छोड़ देना चाहते हैं। मैं भी यही करना चाहती थी। तो इन चुनौतियों से लड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर आप सरकार के RNDCP के द्वारा इलाज करा रहे हैं तो उसमें एक ऐसा सिस्टम है जो आपके इलाज के ऊपर निगरानी रखता है और ये सुनिश्चित करता है कि आप आपका इलाज पूरा कराएं। ये काफी आसान है, इसको 99 डॉट्स कहते हैं। टीबी की दवाएं एक लिफाफे में होती है जिसमें आपको अलग अलग निर्देश, आकार और नंबर दिखाई देंगे। यहाँ के सलाहकार पहले डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं और मरीजों से पूछते हैं कि डॉक्टर ने उनको कितनी गोलियां लेने को कहा है। चलिए हम आज की दवाई लेते हैं। मुझे आज 3 गोलियां खानी है, गोली नंबर 1 से शुरू करके गोली नंबर 3 तक खानी है। याद रखिए, लिफाफे में जैसा दिखाया है आपको उसी संख्या क्रम में गोलियां लेनी है। अगर आप क्रम के हिसाब से 3 गोलियां ले चुके हैं तो इन गोलियों के खुले फ्लैप के अंदर देखें। आपको इन फ्लैप्स के अंदर छिपे नंबर दिखाई देंगे। अगर आप 3 गोलियां लेते हैं तो आप 1 या 2 नंबर बता सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन के वक्त आपने जो मोबाइल नंबर दिया है उस मोबाइल से इनमें से किसी एक नंबर पर आपको कॉल करना है। ऐसा करने की क्या जरूरत है? जब आप ये कॉल करेंगे तो आपके सुपरवाइजर को ये पता चलेगा कि आपने उस दिन की गोलियां ले ली है। अस्पताल कर्मचारी को ये पता होना जरूरी है कि आप नियमित रूप से दवाई ले रहे हैं। अगर आप नहीं चाहते कि वो बार बार आपके घर आए तो आपको उनको कॉल करके ये बताना होगा कि आपने दवाई ले ली है। इसके लिए आपको रोजाना इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करना होगा। याद रखें, ये एक टोल फ्री नंबर है। आपके मोबाइल पे बैलेंस ना होने पर भी आप इसके ऊपर कॉल कर सकते हैं। अगर बैलेंस हो भी तो भी इससे कोई पैसे नहीं कटेंगे। ये भी याद रखें कि आपको इनमें से दिखाए गए किसी एक नंबर पे ही कॉल करना है, सभी नंबर पे कॉल करने की जरूरत नहीं है। आपको इन नंबरों के पहले कोई अतिरिक्त संख्या जोड़ना भी जरूरी नहीं। जब आप नंबर मिलाएंगे तो दूसरी तरफ से धन्यवाद सुनने मिलेगा। अगर आपको कोई साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं तो उन्हें कहीं लिखिए और अपने डॉक्टर से उसके बारे में बात कीजिए। ये याद रखना जरूरी है कि आपको बिना किसी चूक अपना इलाज समय पर लेना है। मैं जानती हूँ कि ये आसान नहीं है, लेकिन टीबी को हराने के लिए कोई दूसरा तरीका भी नहीं है। इलाज पूरा करने के लिए 99 डॉट्स का उपयोग करें। टीबी से लड़ने के लिए इसे एक साधन समझें। आइए हम सब मिलकर टीबी को हराएं।
1: सॉरी नमी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे प्लीज माफ कर दो।
2: इट्स ओवर, अब सब कुछ खत्म हो चुका है शेर। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अब तुमसे शादी नहीं कर सकती।

0: वॉट इज दिस शिट? मैं 3 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ।
1: सो वॉट, मैं काम में बिजी था यार, तुम मुझसे मिलना चाहती थी, मैंने तो नहीं बोला मेरी वेट करो।
0: यू नो शेम, इट रियली हर्ट्स। एनीवे,

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मैं 15-20 वर्षों से खेती कर रहा हूँ, मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। समय 23-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान है मैं उनको समझाऊंगा बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है ऐसे अन्य लोगों को भी हो।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। मैं आज हम बात करने जा रहे हैं कि सर्दियों में ठंडे पानी से नहाने के आश्चर्यजनक फायदे। तो एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडे पानी से नहाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, परिसंचरण में सुधार होता है, मांसपेशियों की रिकवरी में मदद मिलती है, चयापचय में वृद्धि होती है, मूड में सुधार होता है और नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है। ये त्वचा और बालों के स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद हो सकते हैं। विषय है ये रक्त परिसंचरण को बढ़ाता है। किस तरीके से? तो बात सामने आती है कि कोल्ड शावर आपको गर्म रखने के लिए रक्त को आपके अंगों में जाने देता है। गर्म स्नान की बात करें तो ये ठंडे स्नान के प्रभाव को उलटते हुए रक्त को त्वचा की सतह की ओर ले जाने का कारण बनता है। ठंडे पानी से नहाने से धमनियों को मजबूत बनाने और रक्तचाप को कम करने में मदद मिल सकती है। इस प्रकार आप जीवन भर फिट और फाइन रह पाएंगे। ये आपकी त्वचा और बालों के लिए बहुत अच्छा है। ठंडे पानी से नहाने से क्यूटिकल्स और पोर्स टाइट हो जाते हैं, जिससे वो बंद होने से बच जाते हैं। ये त्वचा और स्कैल्प में छिद्रों को भी सील कर सकता है, जिससे बाहरी गंदगी शरीर के अंदर नहीं जा पाती। विषय है अब इसी के अंतर्गत बात सामने आती है कि ठंडा पानी इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। कैसे? तो बात समझते हैं। यदि आप ठंडे पानी से स्नान करते हैं तो सफेद रक्त कोशिकाओं का प्रतिशत अधिक होगा और उच्च चयापचय दर होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि ठंडे स्नान के दौरान शरीर खुद को गर्म करने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया में सफेद रक्त कोशिकाओं को छोड़ने और प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करने की प्रवृत्ति होती है। ये तेजी से मांसपेशियों को ठीक करने में सहायता करता है। तो एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडा पानी मांसपेशियों की अकड़न को दूर करने में मदद करता है। ये कोल्ड कंप्रेशन जैसा है। तो बात ये भी सामने आती है कि ठंडा पानी डिप्रेशन से निपटने में मदद करता है। इसके अंतर्गत एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडे पानी का हमारे शरीर और मन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और ये मूड को बेहतर बनाता है। इस प्रकार स्नान से बाहर निकलने के बाद आप अधिक तरोताजा महसूस करते हैं। अब इसी से हटकर थोड़ा एक विषय हम जानना चाहते हैं कि अक्सर हम सुबह सुबह गुनगुना पानी पीते हैं, क्या ये पानी पीना चाहिए या नहीं? एक अच्छा विषय। तो इसके अंतर्गत सामने आती है बात कि गुनगुना पानी पीने से शरीर डिटॉक्सिफाई होता है, जो कोलेजन के उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ साथ ये त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद करता है। सर्दियों के मौसम में मोटापे की समस्या से निजात पाने के लिए आप रोजाना गुनगुने पानी का सेवन करें। गुनगुना पानी पीने से मेटाबॉलिज्म तेज होता है, जिससे फैट को तोड़ने में मदद मिल सकती है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।
2: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
3: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को, सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: इस गांव में पहले बहुत लोग रहते थे। एक राजा के प्रकोप से एक ही रात में सबने एक साथ गांव छोड़ दिया, पर एक प्रेम कहानी यहाँ की अमर रह गई और वो है इनकी।
3: ये तो तुम जैसा।
4: हाँ नाया, ये लड़की तो फोटो में तुम जैसी है। कहीं हम दोनों सोलमेट्स तो नहीं है?
3: तुम मुझे राजस्थान घुमाने लाए हो या डराने लाए हो?
4: क्या पता हमारा रिश्ता जन्मों जन्मों पुराना हो, है ना?
3: थत।
4: अरे अरे अनाया, बात तो सुनो मेरी। थैंक यू।

एक बात बताओ, क्या हम सच्ची में सोलमेट्स हैं?

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो शारदा
1: 90.8 FM। हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को, सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: स्मार्ट के सौजन्य से प्रोजेक्ट सेहत सही लाभ गई में आपका स्वागत है। इसका उद्देश्य है आपको स्वस्थ रखना और आपकी उन्नति प्रगति और खुशहाली में योगदान देना। यह एक विशेष सामुदायिक रेडियो पहल है जिसके अंतर्गत हमारा उद्देश्य है समुदाय तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाना। तो आइए हाथ मिलाएं और सरकार द्वारा की गई इस पहल को सफल बनाएं।
1: नमस्कार श्रोताओं, हमारे साथ है डॉक्टर कालिंदी और जानते हैं हम उनसे कि इस बदलते मौसम में अपनी सेहत का बचाव कैसे कर सकते हैं।
2: हेलो, मैं हूँ डॉक्टर कालिंदी सूद, सीनियर रेसिडेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी। मैं आपको बताऊंगी कि आप क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं ड्यूरिंग चेंजिंग वेदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको थोड़ा स्मार्टली ड्रेस करना है। प्लीज वेयर लेयर्स सो दैट आपको अगर तो ठंड लगती है, यू आर इजीली एबल टू पुट ऑन अ जैकेट। देन स्टे हाइड्रेटेड टू कीप योर स्किन एज वेल एज योर इम्यून सिस्टम हेल्दी। सो प्रॉपर हाइड्रेशन इज इम्पॉर्टेंट। अपने साथ पानी हमेशा कैरी कीजिए। अपनी डाइट का ध्यान दीजिए, इंक्लूड विटामिन सी रिच फ्रूट्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बिकॉज इस टाइम पे वायरल इन्फेक्शन आर वेरी कॉमन। अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखिए, रेगुलर एक्सरसाइज जरूर कीजिए, वो भी आपकी इम्यूनिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट, टेक केयर ऑफ योर स्किन बिकॉज वेदर कभी भी ड्राई हो सकता है। आपको मॉइस्चराइजर जरूर यूज़ करना चाहिए ऐसे टाइम में। बाहर जाने से पहले हमेशा सनस्क्रीन यूज़ करें। अगर आपको कोई सीजनल एलर्जीज हो जाती हैं तो इट विल बी बेनिफिशियल कि आप एक एयर प्योरीफायर में भी इन्वेस्ट करें अपने घर में। हाइजीन हमेशा मेंटेन करें। फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। जब आप बाहर होते हैं अपने फेस पे आईज पे कहीं पे भी टच ना करें। अपने साथ एक हैंड सैनिटाइजर रखें एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली गेट एडिक्वेट स्लीप। थैंक यू।
1: तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर कालिंदी जिन्होंने हमें बताया कि बदलते मौसम में अपनी स्वास्थ्य का बचाव कैसे करें।
0: आप सुन रहे थे स्मार्ट के सौजन्य से हमारा विशेष कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई, जिसका उद्देश्य है आपको स्वस्थ रखना और आपकी उन्नति प्रगति और खुशहाली में योगदान देना। तो आइए इस मुहिम को सफल बनाएं।
3: हाय, मैं हूँ रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: शिशु के 6 महीने के होने के बाद
2: शिशु का शरीर मांगे उपयुक्त आहार।
1: खाने में 1 चम्मच घी या तेल है जरूरी,
2: जिससे आपके शिशु को मिलेगी ऊर्जा पूरी।
1: गाढ़ा मिलेगा भोजन,
2: तभी मिलेगा शिशु को संपूर्ण पोषण।
3: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 एफएम द्वारा जनहित में जारी।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: भाई, भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
0: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
2: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
1: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
3: सुनो शारदा 90.8 FM।
4: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की में। आज हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम अपने बच्चों की निगरानी कर सकते हैं, किस तरीके से बच्चों को हम संस्कार दे सकते हैं और किस तरीके से वो अगर गलत दिशा में जा रहे हैं तो हम उनको कैसे रोक सकें। जी हाँ, कुछ ऐसी बातें कहीं ना कहीं सुनने को समझने को मिल जाती है, लेकिन कुछ चुनिंदा बातों को अगर हम ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपका बच्चा आगे चलकर आपका नाम रोशन करेगा, देश का भविष्य वो तय करेगा। जी हाँ, बात करते हैं आपका बेटा या बेटी को अगर कुछ ऐसे सबक सिखाएंगे तो निश्चित तौर पर आपका बच्चा एक संस्कारी बेटा या बेटी बनकर आगे बढ़ता रहेगा। जरूरी है कि उनकी गलतियों पर हमें पर्दा नहीं डालना है, जरूरी है कि उनकी गलतियों को सुधार में लाकर आगे बढ़ते हुए चले जाना है। बात करते हैं कुछ ऐसे ही विषय के विषय में। बच्चे बड़े होकर क्या बनेंगे इसका पता किसी को नहीं, लेकिन वो अच्छे इंसान बनेंगे या नहीं ये आप पर निर्भर करता है। आप सोच रहे होंगे कि कैसे, चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होंगे। बच्चे भी वही आम की ही तरह होते हैं जिसको आपको बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। अगर आप अपने बच्चों को अच्छी आदतें नहीं सिखाएंगे तो आपके लिए बच्चों के बेहतर भविष्य को तय करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि शुरू से ही बच्चों को अच्छी आदतें सिखाई जाएं। हालांकि मौजूदा वक्त में हम बच्चों की गलतियों को नजरअंदाज कर उन पर हंसते हैं जो उन्हें आगे चलकर बिगाड़ने का काम करती हैं। आइए आपको बताते हैं कि बच्चों को सिखाई जाने वाली 5 ऐसी अच्छी आदतों के बारे में जो उन्हें अच्छा इंसान बनने में मदद करेंगी। बात करते हैं सबसे पहले ईमानदारी के विषय में। ईमानदारी एक ऐसा विषय है कि अगर आपके पास ये है तो निश्चित तौर पर आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता और इसकी जो खुशबू है वो चारों दिशाओं में फैलती है। जी हाँ, बच्चों को शुरू से ही ईमानदारी के रास्ते पर चलना सिखाना होगा और इससे आपको 2 फायदे होंगे। पहला तो ये कि बच्चा सच बोलने में कभी आपसे कतराएगा नहीं और दूसरा उसे अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। ईमानदारी बच्चों में मासूमियत बरकरार रखने का काम करती है। आप बच्चों को झूठ बोलने के परिणामों के बारे में बताएं और उन्हें गलती स्वीकार करना सिखाएं। अच्छा स्वभाव यानी कि गुड मैनर्स टू टीच टू किड्स। माता पिता को अपने बच्चों को जल्द से जल्द अच्छा स्वभाव अपनाना सिखाना चाहिए। अच्छा स्वभाव आपके बच्चे का सोशल IQ तो बढ़ाता ही है, साथ ही उसे बेहतर तरीके से निखार कर सामने आने में भी मदद करता है। अच्छा स्वभाव उसे उसके जीवन में अच्छा इंसान बनने में भी मदद करता है। बात करते हैं हेल्दी फूड्स के विषय में। हेल्दी फूड्स का चुनाव करना ये भी एक बड़ा सब्जेक्ट है, यानी हेल्दी फूड्स सिलेक्शन टू टीच टू किड्स। माता पिता को अपने बच्चों को हमेशा हेल्दी फूड्स का विकल्प चुनना सिखाना चाहिए। जब बच्चों को हेल्दी फूड्स के बारे में पता होगा तो अपने जीवन में हेल्दी रहना वो सीख पाएंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल भी फॉलो करेंगे। हेल्दी फूड्स बच्चों के स्वास्थ्य को हेल्दी रखने की एक गारंटी है जिसे हर माता पिता को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। बात करते हैं सम्मान की। सम्मान हर कोई चाहता है, लेकिन अगर आप किसी को सम्मान देते हैं तो निश्चित तौर पर ये आपके सम्मान की बात है, यानी कि रेस्पेक्ट टू टीच टू किड्स। छोटे बड़ों का सम्मान करना हर किसी को आना चाहिए। ये एक ऐसा भाव है जो हर बच्चे में होना चाहिए, फिर चाहे वो बड़े हों या छोटे, सभी का आदर बहुत जरूरी है। एक अच्छा इंसान बनने के लिए बच्चों को शुरू से ही आदर सम्मान करने का भाव सिखाना बहुत जरूरी है। बात करते हैं टाइम की, यानी कि टाइम मैनेजमेंट की। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में बच्चों को समय का प्रबंधन सिखाना बहुत जरूरी है। बच्चों को ये पता होना चाहिए कि उन्हें अपना समय कब कहां खर्च करना है, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता और उस समय को बर्बाद करना आपके लिए और भी ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसलिए बच्चों को समय का प्रबंधन सिखाना बहुत जरूरी है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें, अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: क्या आपको पता है डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया जैसी बीमारी कैसे फैलती है? ये फैलती है मच्छरों के काटने से।
2: खुद को और अपने परिवार को डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया जैसी जानलेवा बीमारी से बचाने के लिए अपनाएं ये आसान उपाय।
1: हमेशा मच्छरदानी में ही सोएं।
2: दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं।
1: मच्छर अगरबत्ती जैसी मच्छर रोधी उपायों को जरूर अपनाएं।
2: पूरी बाह वाले कमीज, पैंट और मोजे पहनें।
1: और मच्छरों को पनपने से रोकने के लिए
2: पानी की टंकी को पूरी तरह ढक कर रखें।
1: घर के भीतर तथा आसपास कहीं भी पानी जमा न होने दें।
2: फ्रिज के पीछे नीचे की तरफ लगी हुई ट्रे, टायर और खुले में रखे कोई भी बर्तन में जमा पानी को नाली में बहा दें।
1: कूलर और गमले वगैरह को हर सप्ताह खाली करके सुखाएं।
2: और गड्ढों को मिट्टी से भर दें, जिससे उसमें पानी जमा ना हो।
1: याद रखना, बुखार में देरी
2: पड़ेगी भारी। संचारी रोग के बारे में अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर
1: 1800-180-5145 पर कॉल करें। यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
3: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here।
2: एक छोटी सी लापरवाही से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।
3: ऐसे ही जब आपकी जिंदगी भर की कमाई कोई साइबर फ्रॉडस्टर लूट ले तो तकलीफ तो होगी ही। हमेशा याद रखें, अपनी बैंक डिटेल्स किसी के साथ शेयर ना करें।
2: साइबर फ्रॉड में पैसों की ठगी होने पर तुरंत इसकी शिकायत नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर करें। इससे आपके पैसे रिकवर होने की संभावना बढ़ जाती है।
4: Hi, this is Shalmali Kholgade and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.

0: Sharda School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट. ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग.
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM. ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन. आर्जिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है. तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in. शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश.
2: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन.

0: हाय, मैं हूँ रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
1: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
0: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
1: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ,
0: मैं समझ गया प्रिया तुम क्या चाह,
1: फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ,
0: मैं समझ गया प्रिया तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
1: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
0: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
1: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
0: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
2: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
3: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुषा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
2: So, where are you? The world is here at Sharda University.
3: Sharda School of Media, Film and Entertainment, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
1: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
4: सुनो शारदा।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को, सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। सो

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
3: बिल्कुल सोचा है पापा।
2: क्या सोचा है?
3: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
2: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
3: जी पापा।
2: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
3: हाँ पापा बिल्कुल।
4: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
0: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी

0: आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
0: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
0: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
2: कम एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट व्हिच मेक्स यू इंडस्ट्री रेडी।
3: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशादा 90.8 एफएम कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
2: So, where are you? The world is here at Sharda University.
4: तुम्हारे लिए बैचलर सरप्राइज पार्टी अरेंज किए हैं।
5: सरप्राइज पार्टी?
4: हाँ।
5: हमें पता ही नहीं है।
4: अरे वो सब छोड़ो यार, तुम तो तैयार हो।

0: हाय, मैं हूँ रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है, और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
3: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
3: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
4: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
5: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर टीबी की मुफ्त जांच, मुफ्त इलाज और पोषण सहायता उपलब्ध है। मन में हो टीबी से जुड़ा सवाल तो करें टोल फ्री नंबर पर कॉल 1800-11-66-66। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
2: The world is here.

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। यदि आपको दो हफ्ते से ज्यादा खांसी, रात का पसीना, हल्का बुखार, वजन का कम होना या भूख में कमी महसूस हो तो जल्द से जल्द अपनी बलगम की जांच कराइए, क्योंकि ये टीबी के लक्षण हो सकते हैं। घबराइए नहीं, इसका 6 से 8 महीने का पूरा इलाज है और देश के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में इसकी जांच और इलाज के कोई पैसे नहीं लगेंगे। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1-800-11-66-66 पर संपर्क करें।
3: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना

0: हाय, मैं हूँ रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: अब तो तुम्हारी तबीयत काफी बेहतर लग रही है। टीबी का इलाज सही से हो रहा है ना?
2: बेहतर, बल्कि अब तो मैंने दवा खानी भी छोड़ दी है।
1: मतलब डॉट्स की दवा बीच में ही छोड़ दी है?
2: अबे, शेव कैसे बनती है वो भी सिखाना पड़ेगा। देखता नहीं दाढ़ी अधूरी छोड़ दी है।
1: शेव जैसी छोटी बात की तो बहुत परवाह है, लेकिन जिंदगी की परवाह नहीं है। सुना नहीं, रेडियो पर सारा दिन बताते हैं कि इलाज अधूरा छोड़ा तो टीबी लाइलाज हो जाएगी।
3: डॉट्स का इलाज अधूरा ना छोड़ें। ये इलाज 6 से 8 महीने लगातार चलता है। अधूरे इलाज से टीबी बिगड़ जाती है और इलाज कठिन हो जाता है। याद रखें, पूरा कोर्स तो पक्का इलाज।
1: कल ही डॉट सेंटर चला जा।
4: कल नहीं, अभी।
3: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।
5: हाय, नमस्कार, मैं हूँ RJ रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: Bingo on Malaysia ka the end. दिमागी बुखार का दी एंड। ये
1: तारा तुम कर क्या रही हो? तारा
0: तारा लड़ रही है अब्बा मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों से।
1: ओह।

0: दीदी, मच्छरों पे कैसे करना है बात, ये बताएंगे अगली बार।
1: तुम सब भी हो जाओ तारा की तरह तैयार। हो जाओ तैयार, आज मच्छरों पे होगा जम के वार।
0: हेलो, मैं हूँ रिपोर्टर तारा और आज हम बात करेंगे एक खास मेहमान से।
2: हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ मच्छर और मैं और मेरी सेना पिलाते हैं डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और दिमागी बुखार। मुझको पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है।
0: वो तो देखा जाएगा मिस मच्छर, पर सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुम हमें काटती क्यों हो?
2: क्योंकि हमें अंडे देने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है और वो हमें मिलता है तुम्हारे खून से।
0: ये बात तो रिपोर्टर तारा को पता ही नहीं थी।
2: तुम्हें तो ये भी पता नहीं होगा कि हम एक बार में 100 से 400 अंडे तक देते हैं। हम अपनी पूरी सेना बना लेते हैं और तुम बच्चों और गर्भवती महिलाओं को हमसे सबसे ज्यादा खतरा है।
0: ये बात है, तो हम बच्चे भी मच्छरों से भुशुम भुशुम लड़ने के लिए तैयार हैं।
2: क्या कहा तुमने?
0: Kids want to know, मिस मच्छर, कि अब तुम्हारा क्या प्लान है?
2: अब तुम्हारे घर और बाहर या आसपास जहाँ भी ठहरा हुआ पानी होगा, मैं वहाँ अपना घर बना लूंगी और बहुत सारे अंडे दूंगी, बहुत सारे अंडे दूंगी।
0: आहा, मिस मच्छर को नहीं पता कि तारा ने पानी जमा होने वाली हर जगह को पहले से ही साफ कर दिया है।

0: पानी होगा जमा, आऊंगी मैं वहाँ वहाँ।
1: चलो दोस्तों, बन जाओ टीम तारा, जहाँ भी जमाओ पानी, कर दो उसकी सफाई, फिर मच्छर और बीमारियों को बाय बाय।
2: टीम तारा है भैया।
3: अगली बार हम सीखेंगे मच्छरों से बचने के और उपाय।
1: फिलहाल रिपोर्टर तारा और अप्पा की ओर से
2: गुड बाय।

0: बात नहीं, अब मैं जाऊंगी उनके पास जो नहीं है तारा की तरह तैयार।
1: टीम तारा, मच्छर आ रहे हैं, क्या तुम सब हो तैयार?

0: Goodbye, Miss Machet.
1: अगली बार हम सीखेंगे कि क्या करना है अगर आ जाए बुखार।
0: तब तक रहो तारा की तरह तैयार।
1: Bye bye.
2: हेलो मेरी प्यारी दोस्त तारा।
0: अरे क्या हुआ टिंकू, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो?
2: ओ, मुझे बुखार हो गया है।
0: अप्पा, टिंकू को बुखार हो गया है? तो डॉक्टर ने क्या कहा टिंकू, क्यों हुआ बुखार?
2: पता नहीं, मैंने तो डॉक्टर को दिखाया ही नहीं है।
0: ओ नो नो नो नो नो टिंकू, बुखार में तेरी पड़ेगी भारी। और तुम तो ऐसी जगह रहते हो जहाँ मच्छर भी बहुत है, हो सकता है मच्छर के काटने से तुम्हें बुखार हुआ हो।
2: ओ हाँ, और कुछ दिन पहले मुझे मच्छरों ने काटा था।

0: अब मैं क्या करूं तारा?
1: क्या हुआ तारा?
2: आ जल्दी आओ अप्पा। टिंकू तुम घबराओ नहीं, सबसे पहले पापा मम्मी से कहो कि तुम्हें जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाए।
1: और हाँ, किसी झोला छाप डॉक्टर के पास नहीं बेटा, अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाना और बिना डॉक्टर से पूछे कोई भी दवाई मत लेना। ओके? कोई भी बुखार दिमागी बुखार हो सकता है, जिससे अपंगता या मृत्यु भी हो सकती है।
0: ठीक है, मैं डॉक्टर को दिखाता हूँ। ओके अंकल, बाय बाय।
2: बाय टिंकू।
1: बाय बाय बेटा, टेक केयर।
2: तुम सब भी समझ गए ना?

0: जरूर जाना, जरूर जाना।
1: अगर नहीं समझे तो मैं आऊंगी करने बार, जैसे आई थी पिछली बार।
2: बिल्कुल नहीं, तारा है हमेशा तैयार और ये मेरा आखिरी वार।
1: तुम जीती मैं हारी, तारा तुम हमेशा रखती हो पूरी तैयारी।
2: दोस्तों अब मच्छरों को हराने की बारी तुम्हारी, तो क्या टीम तारा है मच्छरों से लड़ने को पूरी तरह तैयार?
3: टीम तारा है तैयार।

0: मरना नहीं मच्छरों से बचने के उपाय।
1: फिलहाल तारा अप्पा की ओर से बाय बाय।
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: मेरी फिल्मों में आपने देखा ही होगा कि अगर विलन को पीटते हुए आधे में छोड़ दिया जाए तो बाद में विलन बदला लेने जरूर आता है और हीरो के लिए बहुत सारी दिक्कतें खड़ी कर देता है। ठीक ऐसे ही अगर हम टीबी का इलाज अधूरा छोड़ दें तो आगे जाके ड्रग रेजिस्टेंट टीबी भी हो सकता है, जिसका उपचार लंबा और कठिन भी है।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही

0: के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें। इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: मेरा नाम दीपिका शर्मा है। मेरे लड़के को बुखार हुआ था तो हम लोग लेके गए प्राइवेट डॉक्टर के पास, तो वहाँ पर इलाज हुआ मगर बुखार उतर नहीं रहा था, तो डॉक्टर बोले कि हमारे बस का नहीं है, लेके जाओ घर पे।
2: नमस्ते दीदी।
1: तब आशा वाली दीदी आई तो बोली क्या हुआ है तुम्हारे बच्चे को, तो हम बोले कि बुखार हुआ है और शरीर सूजता चला जा रहा है, तो बोले कि लेके चलोगी सरकारी हॉस्पिटल पे, तो हम लोग बोले हाँ ले चलेंगे। तो हम लोग लेके गए वहाँ पे, तो हमारा वहाँ पे इलाज हुआ, तो वहाँ से डॉक्टर बोले कि इनको बुखार मस्तक जोर है। एक दिन हम लोग वहाँ पे थे, धीरे धीरे जब इलाज हुआ तो हम लोग को विश्वास होने लगा कि हमारा बच्चा यहाँ से ठीक हो रहा है।
3: ये दस्तक अभियान के तहत आशा जाती हैं हर घर में, उनको चार प्रश्न पूछना होता है कि कोई मरीज बुखार का है कि नहीं है, बुखार के साथ किसी के ILI या सर्दी जुकाम के लक्षण वाले मरीज होते हैं उसकी लिस्ट बनाती हैं और उसके विभाग की उसकी जांच करता है, उसकी कार्रवाई करता है। स्वास्थ्य के साथ साथ और भी विभाग है, जैसे पंचायती राज है जिसमें पानी इकट्ठा न हो इसके लिए व्यवस्था करते हैं। कई अंतर विभागी जो सहयोग कर रहे हैं उसमें पशुपालन विभाग का भी एक अहम सहयोग है कि पशु जो घर के पास रखते हैं लोग कोशिश करें कि उसको घर से बाहर रखें, तो इस काफ़ी प्रोग्राम में सहयोग हो रहा है। इसके अलावा हमारा जल निगम काम करता है इसमें, जो हम लोग ये प्रमोट करते हैं कि जो सैलो हैंडपम्प हैं उसका पानी लोग ना पिए, पानी से भी ये जल जनित बीमारियाँ हैं ये भी हमारे एक मस्तिष्क ज्वर का एक पार्ट होता है। इसके अलावा हमारा जो IC के माध्यम से हम प्रचार प्रसार करते हैं, लोगों की जागरूकता फैलाते हैं, तो इससे हम लोग काफ़ी इसमें क्रमशः सफलता पा रहे हैं। 3 साल से मस्तिष्क ज्वर इसमें संख्या थी उसे काफ़ी कम हुआ है और हम लोग इसमें आगे बढ़ रहे हैं हमेशा।
4: हाय, मैं हूँ विदिता बाघ और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।